सड़कों पे गाओ सीटी बजाओ कर दो कहीं भी सवेरा। वाह वाह वाह वाह हम तुम जिसे कहता है शादी लो है।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। परिस्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटारा की।
2: हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरणों की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है। सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना। हे दातिये,

0: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं दान की ईश्वरीय विधि। दान का अर्थ क्या होता है इस पे आज हम चर्चा करते हैं। दान अर्थात क्या होता है? देना। इससे सारी सृष्टि चल रही है। अगर सृष्टि का नियम देने की जगह लेना अगर कर दिया जाए तो सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। परमात्मा पिता ज्ञान गुण और शक्तियों के सागर हैं, परंतु जब वे इनका दान विश्व को देते हैं तभी वे रघुपाल पालनहार और भगवान कहलाते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? भगवान नाम से हम गाए जाते हैं। वो देने का अर्थ है सफल करना। देने का अर्थ क्या होता है? सफल करना। कोई भी वस्तु शक्ति सफल करने पर ही प्रतिफल देती है। किसान एक दाना बीज बोकर सफल करता है तो बदले में कई दाने पाता है। जो बीज सफल ना की जाए वह विफल ही सड़ जाती है। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति सोचकर काम ना करे कि इससे उसके पास ताकत जमा होकर वह हाथी जैसा बलशाली हो जाएगा तो यह भ्रम है। वास्तविकता यह है कि उसका शरीर और ही निष्क्रिय एवं आलसी हो जाएगा। यदि कोई बुद्धि को चिंतन और सीखने में प्रयोग ना करे तो यह कुंद हो जाएगी। संबंधों को परस्पर प्रेम व्यवहार से सफल न किया जाए तो उनमें मनमुटाव और निरस्ता पैदा हो जाएगी। धन को भी उपयोग प्रयोग और सहयोग करके सफल न किया जाए तो वह भी क्या होता है? अभिशप्त हो जाता है। वह संपन्नता की अनुभूति की जगह लोभ और तृष्णा का बोझ बन जाता है। उपयोग में निज काम में आता है, प्रयोग में कार्यों को सिद्ध करता है और सहयोग में क्या होता है? जगहित द्वारा पुण्य जमा करने का साधन बन जाता है। नहीं तो लोभी के प्राण उसके धन में बस जाते हैं। वही लोभ उससे अन्याय और शोषण कराता है। हाँ, किसी जमाने में लोभ के कारण लोग क्या करते थे? ना धन कहीं गाड़ कर छुपा देते थे। पुराने लोगों की ऐसी क्या होती थी? मान्यताएं रहती थी कि ऐसे गाड़े हुए धन पर नाग बैठे रहते हैं, तो उस धन को पाने वाले व्यक्ति को चैन से जीने नहीं देते। अब समझा जा सकता है कि गड़े हुए धन के ऊपर जमीन के अंदर, अगर जमीन के अंदर तो कोई नाग नहीं रह सकते। उसे लोभी की लोभ वृत्ति ही नकारात्मक ऊर्जा के रूप में नाग की तरह धन में बसी रहती थी। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हमारा आज का विषय है दान की ईश्वरीय विधि। तो बिना सोचे समझे किया गया दान कई बार बुराई के खाते में आ जाता है। विवेकशील जो व्यक्ति होते हैं अपना समय, संपत्ति और शक्ति सूझबूझ से शुभ कार्यों में सफल करता है। सरकार भी आज क्या जोर देती है कि अनावश्यक इच्छावृत्ति को बढ़ावा न दिया जाए। आपराधिक तत्वों द्वारा बलपूर्वक बच्चों या कमजोर लोगों द्वारा इच्छावृत्ति कराना, सक्षम होते हुए भी कुछ न करने की प्रवृत्ति के कारण निम्न बुद्धि वाले लोगों द्वारा अपने ही बच्चों को इच्छावृत्ति में लगा देने की प्रवृत्तियां आज क्या हो रही है समाज में बहुत बढ़ चुकी है। अच्छी भावना रखने के बाद भी बिना सोचे समझे किया गया दान कई बार पुण्य की जगह बुराई के खाते में ही चला जाता है। हालांकि कई बार समाज सेवी संगठन ऐसे पिछड़े और बेसहारा लोगों को शिक्षित करने, उन्हें भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी सेवाएं भी कर रही है, जिससे स्थितियों में काफी सुधार भी हो रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग ऐसे प्रयास क्या करते हैं, उनके जो ऐसे प्रयास होते हैं बुद्धिजीवी लोगों के, वे सराहनीय भी है। लेकिन ऐसा तब संभव है जब सभी अपनी इच्छा से और सोच समझकर कार्य करें। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को,

नमस्कार, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और हमारा आज का विषय है दान की ईश्वरीय विधि। एक सफल करने की भी विधि होती है। हाँ, सफल करने की सर्वश्रेष्ठ और अनोखी विधि है। समय की मांग देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा पिता हमें क्या करते हैं, सफल करने की सर्वश्रेष्ठ और अनोखी विधि सिखाते हैं, जिससे परिणाम भी सर्वश्रेष्ठ आते हैं और जीवन ही क्या होता है, जीवन ही पुण्यशील बन जाता है, आत्मा महान सौभाग्यशाली बन जाती है। हाँ, आत्मा क्या होते है, सौभाग्यशाली बन जाती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन काल भी 10,000 लोगों को भोजन कराता है। इसके लिए उसने काफी परिश्रम किया और लोगों की दुआएं भी ली। कोई भी व्यक्ति खुशी से भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाता। दुर्भाग्यवश उसे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। आत्मा अपने बुरे संस्कार और कर्मों के कारण अपनी पुण्य और शक्तियों की पूंजी गवाकर भाग्यहीन और लाचार होकर दूसरों पर निर्भर हो जाती है। परमात्मा हमें ऐसी सेवा करना सिखाते हैं जिससे मनुष्य का दुर्भाग्य, बुरे संस्कार व बुरे कर्म समाप्त हो जाएं। वे गुणों की धारणा कराकर जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। व्यसन, जुए, दुश्चरित्र आदि बुराइयों से में जो फंसा हुआ व्यक्ति है, परमात्मा का सत्य परिचय पाकर परमात्मा से संबंध जोड़कर अपनी सारी बुराइयों को त्यागने में सक्षम हो जाता है, एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर लेता है। उसके साथ उसका परिवार भी है। जीवन बदलने के बाद अब वो क्या होता है, मोहताज होकर उसे दो रोटियां नहीं जुटानी, बल्कि वह मेहनत से अपना और सारे परिवार का पेट भरता है। ऐसा जो होता है, ऐसी सेवा का पुण्य कितने भूखे लोगों को भोजन कराने के बराबर हो गया। पूरे परिवार को ही भूखे रहने और मांगने की दुर्गति से बचा लिया। साथ ही उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गया। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से, और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए, हाँ, आज का हमारा विषय है दान की ईश्वरीय विधि। कम समय में बिना स्थूल धन खर्च किए भी ज्ञान धन का दान देकर सहज ही कितना पुण्य अर्जित किया जा सकता है, इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। हाँ, जो मनुष्य आत्माएं पुण्य की यह श्रृंखला शुरू करके अपनी सेवाओं द्वारा इसका विस्तार करती जाती है, वे पदम पदम भाग्यशाली बनती जाती है। इससे दीप से दीप जलाते चलो की पंक्ति साकार हो रही है। हमारा सभी मनुष्य आत्माओं से निवेदन है कि वे इस अनोखे भाग्य के खजाने को जमा करने की विधि सीख ले, जिसका एक ही विधि है राजयोग। राजयोग विधि सीखने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अवश्य जाएं और वहां जाकर जरूर राजयोग की विधि सीखें। जो भी पुण्य कर्म और सामाजिक सेवाएं आप कर रहे हैं, उनके साथ साथ परमात्मा द्वारा दी गई श्रीमद् प्रमाण आध्यात्मिक सेवा से भी अपना जीवन सफल करें। बस याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम योग की अनमोल जो ये घड़ियां हैं, अब अपनी पूर्णता के चरण तक आ पहुंची है और समय बहुत थोड़ा है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का कार्यक्रम यही समाप्त करती हूँ, और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भेदभाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हम रिश्तों को देखते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट की बात में जब रिश्ते सामने आए, तो एक नए अंदाज से हमने देखने का प्रयत्न किया कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि हर रिश्ते में मुझे आपसे कुछ चाहिए, या वो रिश्ता मुझे क्या दे रहा है, व्हाट इज इट दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, नथिंग, दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग। मैं हर बार ये कहती हूँ कि इस रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर पिछली कड़ी को देखें तो कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि रिश्ते से मुझे कुछ नहीं लेना, बल्कि मुझे रिश्ते को क्या देना है, और जब मैं देना शुरू करूंगी तो सबसे पहले वो मुझे ही मिलेगा, यानी मैं खुद ही अपने आप को देने के कैपेबल हूँ। आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके कि ये संभव कैसे होगा। जब रिश्तों में सिचुएशंस आती हैं, तब कई बार ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से छूट रही हैं बातें। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, एक नई लहर पर तो आप ले गए हमें, अगर पिछली कड़ी को देखते हैं कि अभी तक ये था कि इस रिश्ते ने मुझे क्या दिया, ये रिश्ता मुझे क्या दे रहा है, या इस पे मुझे बहुत खुशी मिल रही है, आपके साथ होने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जन्नत में हूँ। लेकिन जब देखा, इस नज़र से देखा, स्पिरिचुअलिटी में हमें समझ में आया कि वो सब कुछ जो हो रहा है मेरे साथ, या मुझे अच्छा फील हो रहा है, बुरा भी फील हो रहा है, वो मुझसे होकर गुजर रहा है, मैं क्रिएट कर रही हूँ। सिचुएशन एक लेते हैं, मेरे हस्बैंड आए, ऑफिस से आए, और वो मेरे बारे में कोई भी बात थी, मुझे बुरा भला कहने लग गए। अब हो सकता है वो उनकी पेन, वो जो भी करके आए थे, लेकिन वो जो हर्ट मुझ तक आया, वो मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, कैसे मैं अपने आप को
1: प्रोटेक्ट करूं। हर्ट कहाँ से मुझ तक आया? लेट्स बी वेरी क्लियर, मुझ तक क्या आता है?
0: कमेंट आया,
1: वर्ड्स आए। हर्ट मुझ तक नहीं आया, वर्ड्स मुझ तक आए, डेफिनेटली वर्ड्स आए, एक्शन आया,
0: एनर्जी भी तो आई,
1: एनर्जी आई। लेकिन हर्ट किसने क्रिएट किया?
0: वो मैंने किया।
1: सी, इट्स लाइक इंग्रेडिएंट्स, ठीक है? वही इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई एक बहुत अच्छी डिश भी बना सकता है, और कोई बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ भी कुछ बहुत खास बना नहीं सकता। डिपेंड्स ऑन हाउ गुड द कुक आई एम। तो यस, ये इंग्रेडिएंट्स आए हैं, वर्ड्स आए हैं, एक्शंस भी आए हैं, एनर्जी भी आई है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन एक अच्छा कुक
0: उन्हीं में से कुछ बना देगा। ओह यस, वी कैन मेक अ गुड पकौड़ा।
1: वही इंग्रेडिएंट्स, दैट इज फंडामेंटल, कि वही इंग्रेडिएंट्स से अलग अलग लोग अलग अलग डिश बनाने वाले हैं, राइट? ये याद रखें कि हाँ, अब मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स तो आ गए हैं, लेकिन अब मुझे क्या क्रिएट करना है, उसका पावर फिर भी किसके पास है? मेरे पास है। जब हम दो लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो जो सबसे पहली चीज जो इंटरैक्ट करती है, वो है एनर्जी फील्ड। वर्ड्स बाद में करते हैं, कई बार एनर्जी कुछ और होती है, वर्ड्स तो कुछ और ही निकल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो यू नो, लाइक वी नो दैट एवरीवन कैरीज एन ऑरा, एक एनर्जी फील्ड है। तो सपोज यू एंड मी मीट टू पीपल, दोनों का एक एनर्जी फील्ड है। अब कई बार हम कहते हैं इनके साथ तो मेरी बहुत अच्छी
0: है,
1: और इनके साथ इतना अच्छा नहीं है। सो वॉट इज हैपनिंग, जिनके संपर्क में मैं आई, दे कैरी अ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फील्ड। किसी की एनर्जी फील्ड बहुत प्योर हो सकती है, बहुत पॉजिटिव, किसी की दूसरी क्वालिटी की तरफ भी जा सकती है। जैसे ही मैं इनके कॉन्टैक्ट में आती हूँ, अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो है, तो क्या होगा, इनकी एनर्जी फील्ड मेरे ऊपर ओवर पावर कर देती, एंड देन आई से मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही मैं इनसे मिली तो मेरा मूड भी खराब हो गया, या मुझे भी गुस्सा आ गया, या मैं भी उदास हो गई। दैट्स लाइक सेइंग कि मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इनकी बीमारी को मैंने पकड़ लिया। लेकिन मैंने इनकी बीमारी को एक्चुअली इसलिए पकड़ लिया क्योंकि मैं कमजोर हूँ। बिल्कुल ठीक जो होगा वो बीमारी को कैच नहीं करेगा। हाँ, अभी मैं बीमार नहीं थी, लेकिन मेरा इम्यूनिटी सिस्टम तो वीक था ना, इसलिए उनकी एनर्जी फील्ड ने मेरे ऊपर ओवर पावर किया। जब मैं अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करती हूँ, अपनी इमोशनल हेल्थ पर, जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते, तो जैसे ही मैं अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करती हूँ, मेरा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता जाता और एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है कि औरों का एनर्जी फील्ड मुझे ओवर पावर नहीं कर पाता। आई एम एबल टू रिमेन इन माई स्टेबिलिटी, मे बी नॉट वेरी पॉजिटिव, बट डेफिनेटली डोंट गो डाउन। So basically, I'm just able to take care of myself.
0: लेकिन अगर हम देखें सर शिवानी, तब तक मेरा एनर्जी फील ठीक रहता है. अगर रिलेशनशिप में रियली देखते हैं, अगर मेरे सपोज हस्बैंड आए या मेरे फादर आए, जब तक वो पर्सनल नहीं होता, तो वो जब वो होना शुरू होता है देन इट स्टार्ट्स गोइंग इन, और तब मुझे वो दिखना बिकना सब बंद हो जाता है. देन ऑल ऑफ माय यू नो सारी जो फैकल्टीज हैं वो काम करनी बंद कर देती है जब वो मेरे साथ पर्सनल मुझ पर अटैक होने लगता है. सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट एक रिश्ते में जब हम देखते हैं कि जब तक उनका किसी और के प्रति नाराजगी थी, किसी और से गुस्सा कर रहे थे, मुझे बुरा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि वो नेगेटिविटी हो रही है, लेकिन आई वॉज एबल टू टेक इट एंड आई वॉज एबल टू हेल्प हिम आउट ऑल्सो कि ठीक है आप कोई बात नहीं, इतना गुस्सा मत करो, पानी पी लो, ये करो. लेकिन जब वो मेरी तरफ टारगेट हुआ और वो मुझे ही पर्सनली हिट करने लगे, वो पुरानी पुरानी बातें जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि उन्होंने याद रखी होंगी, अपने साथ रखी होंगी. सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये मुझे डाइजेस्ट कर पाना इतना आसान नहीं हो पाता. So either I react, and if I don't react, I go into so much of deep hurt.
1: Now, when we say reaction, तो reaction पहले कहाँ होता है? ठीक है ना? आपने जो कहना है वो आप कह रहे हैं. कई बार ये होता है कि मैं चुप रह जाती हूँ, मैं बोलती नहीं, तो मुझे लगता है मैंने react नहीं किया. मैं कहती हूँ मैंने चुप करके सुन लिया, मैंने चुप करके सुन लिया. लेकिन कितनी बार भी चुप करके सुनो, इनका तो चलता ही रहता है, ये बार बार ये सब बोलते रहते हैं. एंड देन वी से हम कब तक फिर ऐसे चुप
0: एक बार तो मैं चुप रह ली, अगली बार मैं नहीं रहूंगी चुप. अगली बार
1: ये लेकिन हमें अपने आप से ये पूछना होगा क्या सचमुच में मैं चुप रही. चुप मींस नो क्रिएटिंग ऑफ नेगेटिविटी. थॉट्स तो आएंगे बट नो क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी, तब हम कह सकते हैं. अभी क्या हो रहा है, हमें रिजल्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा हम, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद कई लोग कहते हैं आप लोगों ने कहा कि दूसरा अगर गुस्सा करे आप चुप रहोगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा. नाउ दे टेक हाफ द फॉर्मूला, टेक द फुल फॉर्मूला.
0: एंड दे से कि चेंज नहीं हो सकता.
1: एंड देन दे से मैं तो चुप रही लेकिन वो चेंज तो हुआ ही नहीं. फंडामेंटल बात, पहली बात, हम चुप रहते हैं उनको चेंज करने के लिए नहीं. अगेन द थॉट इज नॉट कि मैं चुप रहूं ताकि वो चेंज हो जाए. मैं चुप रहूं पहले ताकि मैं चेंज हो जाऊं, मैं प्रोटेक्टेड रहूं. एंड चुप रहना मतलब क्या, यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना. कि हाँ वहां से एंगर आ रहा है, वहां से दर्द आ रहा है, लेकिन पहले मुझे अपना ध्यान रखना है. क्योंकि जो रिएक्शन क्रिएट होता है वो यहाँ नहीं क्रिएट होता, पहले यहाँ क्रिएट होता है. जैसे आपने अभी कहा कि इतनी पुरानी बातें कई बार किसी को याद आ जाती है, वो कहेंगे पिछली बार भी आपने ये कहा, एक साल पहले आपने ये किया था. ये क्या हो रहा है, यू कैन एक्चुअली मेक आउट कि जो कबर्ड है
0: वो खुल गया.
1: और सारा कुछ जो उसके अंदर स्टफ किया हुआ था वो सारा बाहर निकल रहा है.
0: अभी मैं भी अपना कबर खोल देती हूँ कई बार तो.
1: और सडनली वो जो एक्सचेंज होता है, तो इसका मतलब कि हमने बहुत समय से वो बहुत कुछ सोच कर अपने कबर के अंदर दबा कर बंद रखा होता है. आप देखो कभी हम किसी के घर जाते हैं तो घर बाहर से बहुत सुंदर होता है, सब नीट एंड क्लीन, लेकिन कबर अगर खोलो
0: सब कुछ ऊपर गिरेगा आपके.
1: ऐसे ही कई बार हमारे रिलेशनशिप्स में हो जाता है कि बाहर से तो बहुत साफ दिख रहा है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा बोलना, लेकिन कबर्ड में शायद बहुत सारा ऐसा कुछ रखा है. और जैसे ही ऐसी सिचुएशन आती तो वो कबर्ड एकदम खुल जाता. और जैसे घर का भी कबर्ड होता है, आप जैसे खोलो यू हैव नो कंट्रोल आफ्टर दैट कि वो क्या क्या क्या क्या एक के बाद एक निकल कर गिरता जाएगा. फिर आप उसको रोकने की भी कोशिश करो तो वो रुकता नहीं है. संभाल कब करनी थी कि रखते टाइम ही क्या रख रहे थे और किस तरह से रख रहे थे. इसी तरह जब हम बोलना शुरू करते हैं, इस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमारे मुख से क्या निकल रहा होता है कई बार बाद में खुद को हैरानी होती है क्या बोला मैंने.
0: वेरी ट्रू.
1: व्हाट वाज आई सेइंग टू दैट अदर पर्सन. एंड देन इमीडिएटली आई से आई एम सॉरी आई डोंट मीन टू से दैट. अब व्हाट आर वी ट्राइंग टू से कि मेरा एक्चुअली कहने का भाव नहीं था लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गए. इन्होंने ऐसा किया और उस टाइम हम दर्द में गए होंगे जब वो सिचुएशन हुई होगी और हमने उस दर्द का जिम्मेवार आपको समझा है और इसलिए हमने उस बात को पकड़ कर रखा है. और अब आप फिर से जब ट्रिगर करोगे मुझे तो मैं वो सारी बातें बाहर निकालूंगी. तो ये जो रिएक्शंस होते हैं इसमें क्या हो जाता है, सिचुएशन तो इतनी थी लेकिन वो सारे कहीं की कहीं यू नो बढ़ जाती है. तो द नीड ऑफ द आवर इज आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ ताकि सिचुएशन डजंट गो out of control. Lekin how do I protect myself? Ab aapne ek bahut sundar example diya. I don't know whether you realized what you were saying. You said ki agar wo office ke bare mein gussa kar rahe hain, idhar udhar ke logon ke bare mein gussa kar rahe hain,

0: हमने उसका ध्यान रखना, हमें तो
1: करें
0: अपना ही नहीं
1: शुरू।
0: ध्यान रखना आता उस टाइम, तो आपका ध्यान मैं क्या रखूंगी? और तब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि ये जो वायरस आ रहा है ना मेरी तरफ, ये वायरस आना बंद हो जाए, तब मैं ठीक हो जाऊंगी। बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू हील माई सेल्फ एंड आई डोंट नो हाउ टू हील यू। तो जैसे हमने कहा कि अगर वो कोई और बात पर गुस्सा कर रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिमिलरली अगर वो मुझे भी कुछ कह रहे हैं, यू नो पर्सनली आई एम गेटिंग अफेक्टेड, लेकिन अगर वो मुझे भी कुछ कह रहे हैं, मेरे बारे में भी कुछ कह रहे हैं, कैन आई गिव माई सेल्फ अ थॉट कि एक्चुअली वो मुझे नहीं, अभी भी वो अपना दर्द ही बाहर निकाल रहे हैं, कारण कुछ और होगा, फ्रस्ट्रेशन उनकी अपनी है, इमोशनल चोट उनकी अपनी है, टॉपिक तो कुछ भी हो सकता है, दे कैन शाउट अबाउट द चिल्ड्रन, ही कैन शाउट अबाउट मी, ही कैन शाउट, बिकॉज वेन आई गो इन टू अ रिएक्टिव मोड, लॉजिक,
1: Doesn't hold,
0: यू नो
1: yes.
0: समटाइम्स वी टेल ईच अदर क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना इलॉजिकल कैसे बात कर रहा है ये व्यक्ति, लेकिन वी हैव टू रिमेम्बर कि एंगर कब से लॉजिकल होने लगा, रिएक्शन लॉजिकल कब होता है, उस समय तो हम टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो जब हमें ये पता है कि इस समय ये व्यक्ति दर्द में है, अंदर से हर्ट है, तो इसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, रिएक्टिव ही होगा। उस समय उससे लॉजिक एक्सपेक्ट करना डोंट, उस समय एक्सपेक्ट करना कि वो राइट और रॉन्ग का डिफरेंस समझे डोंट। तो उस समय तो सिर्फ मुझे किसका ध्यान रखना होगा, अपना ध्यान रखना होगा कि ये मुझे नहीं कह रहे हैं, और अगर कह भी रहे हैं तो ये उनका पर्सपेक्टिव है। मुझे पहले किसका ध्यान रखना है, मुझे अपना ध्यान रखना है कि मुझे हर्ट नहीं होना है, क्योंकि हर्ट अपने आप को मैं करती हूँ, वो नहीं कर रहे। हाँ वो कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं वो इतना कुछ कह रहे हैं, हाँ वो इतना कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप को जो कहना है वो चॉइस किसके पास है।
1: But it goes deep in me, you know, like वो जो वो sentences होते हैं, they stay and then they'll always bombard you, पूरा time आपके कानों में वो गूंजते रहते
0: तो
1: हैं।
0: हमारा नुकसान पहले ज्यादा कौन कर रहा,
1: हाँ, हम खुद,
0: हम
1: yes.
0: खुद कर रहे हैं, हम दूसरे को तो ब्लेम कर रहे हैं कि आपने मुझे ऐसा कहा, आपने मुझे ऐसा कहा, हम अपने आप को क्या कहते हैं सारा दिन। उन्होंने अगर एक सेंटेंस कहा भी तो एक बार कहा, हम अपने आप को कितनी बार कहते हैं वो सेंटेंस, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, कितनी बार कह सकते हैं, 5, 10, 20, 50 बार भी अपने आप को बोल सकते हैं, ज्यादा नुकसान कौन कर रहा। दिस इज कॉल्ड टॉर्चरिंग योर सेल्फ, अपने आप को तकलीफ देना, अपने आप को चोट पहुंचाना, अपने आप को दर्द देना, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन, अपने आप को अब्यूज कर रहे हैं हम इमोशनली। एक है फिजिकल अब्यूज, लेकिन एक है इमोशनल अब्यूज। दूसरे ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जो कहना था, जो बोलना था, वो अपना फेंका बाहर, लेकिन अपना दर्द मैंने क्रिएट किया। एट दैट टाइम डू आई हैव द पावर टू जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ कि अभी भी चॉइस मेरे पास है।
1: आई डोंट हैव अ चॉइस जो है वो लाइन
0: आई हैव अ चॉइस कि मुझे कैसा फील करना है, लेकिन वो अवेयरनेस तब क्रिएट होगी, वो पॉजिटिव थॉट तब क्रिएट हो पाएगा अगर वो सारा दिन में क्रिएट किया होगा, नहीं तो मुझे सिर्फ उन्हीं की थॉट्स सही लगेंगे। वो कह रहे हैं मैं अच्छी नहीं हूं, मतलब मैं अच्छी नहीं हूं, वो कह रहे हैं कि मैं अपना काम ठीक से नहीं करती, मतलब मैं अपना काम ठीक से नहीं करती। तो इट्स नॉट अबाउट वो मुझसे नफरत करते हैं, इट्स अबाउट मैं
1: मैं
0: अपने आप से करने लग जाती
1: कि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, मैं ऐसी हूं, क्या मैं ऐसी हूं? अच्छा, देन आई लास्ट 10 पीपल, यू नो व्हाट ही सेड, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी हूं?
0: हूँ। आई नीड अ वेरिफिकेशन
1: हाँ,
0: सर्टिफिकेट।
1: नो, बट वी डू इट विद सो मेनी पीपल, यू नो द हर्ट गोज सो डीप एंड देन वील कॉल 10 पीपल, यू नो व्हाट शी सेड या व्हाट ही सेड, और आपको लगता है क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसे करती हूँ, क्या मैं
0: देखो ना
1: ऐसे?
0: वो कैसे हैं, वो ऐसे बोलते हैं। आई नीड एन अश्योरेंस फ्रॉम पीपल, व्हाई? बिकॉज आई डोंट नो माई सेल्फ। व्हाई डोंट आई नो माई सेल्फ? बिकॉज आई डोंट हैव अ रिलेशनशिप विद मी। मेरा अपने आप के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है,
1: मैं दूसरों की नजरों से अपने आप को देख रही हूँ एक्चुअली।
0: तो मैं आपकी हर बात को सच मानकर अपने ऊपर वो लेबल लगाना शुरू कर देती हूँ। तो अगर आप मुझे आकर कहते हैं आप बुरे हैं, मैं सच मानती हूँ। अगर आप कहते हैं आप कोई काम के नहीं, आपसे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं सच मानती हूँ। अगर आप आकर कहते हैं आपका कुछ नहीं होगा आगे भी जाकर, मैं सच मानती हूँ।
1: हाँ, इतना हर्ट और
0: तो
1: डर,
0: मैं
1: मतलब
0: आपकी हर बात को लेती हूँ, उसको स्वीकार कर लेती हूँ, सच भी मानती जाती हूँ, और अपने आप को बार बार वो रिपीट भी करती जाती हूँ। सो हुज क्रिएटिंग द पेन? एंड देन वी से उनकी वजह से दर्द।
1: ओ

0: doing so bad to myself.
1: It's to myself. So jab bhi aisi situation ho, and this has to be experimented with. Let's say it happens today evening or tomorrow, immediately first thought, kyunki tufaan dekho aata hua dikhai to deta hai. It's like
0: ab to dikhne lag gaya, ab to dikhta hai.
1: Storm dikhai to de raha hai, koi bhi storm aise hi nahi aa jata, thoda thoda build up ho raha hai, wo dikhai deta hai. Jaise hi aapko storm build up dikhai de raha hai, turant apne aap ko bolo, okay, ready. You have to first take care of yourself. Then we will take care of other people. Abhi hame turant lagta hai, let me take care of them. Unko chup kara do, unko theek kara do. अपने आप को चुप करा दो इधर.
0: हाँ, कितनी बार हमें लगता है जब वो कोई चिल्ला रहा होता है कि वो सिचुएशन खराब हो जाएगी, ही शुड नॉट शाउट, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए. बट आई थिंक समवेयर जो मेरे अंदर की आवाज है, जो मेरे अंदर जो चल रहा है, और इसमें सचिवानी वो जो 1 hour के बाद 1 minute है,
1: राइट, that makes all the difference. Yes. Because 1 hour ke baad 1 minute stop karke positive thought create karna, matlab apne mind ko ek practice de dena positive thinking karne ki. Hum kyun kehte hain har ek ghante ke baad 1 minute? Kyunki har ek ghante mein hum bahut sari situations mein, to hamara man yahan wahan bahut sari baaton ke bare mein soch raha hai. To it's like a car which is driving in the fourth or the fifth gear, and then suddenly 1 minute. तो हम 1 minute मतलब हम चेक करते हैं कि गाड़ी की ब्रेक कैसी है. अगर वो 1 minute भी वो परिस्थिति और लोगों के बारे में सोचने में चला गया, इसका मतलब आपने ब्रेक लगाई तो थी लेकिन ब्रेक लगी नहीं. दैट मीन्स द कंट्रोल सिस्टम इज नॉट वेरी गुड. इसको प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ, गाड़ी की ब्रेक को ठीक करते रहना. अब क्या होगा, जैसे ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं, सडनली stop and a positive thought. Not stop thinking, but stop all those ordinary thoughts and a positive thought. I am a powerful being. Ye practice hai sara
0: din. Actually, it gives you a lot of power, you know.
1: Now, this is practice jab koi tufaan nahi. This is practice jab koi tufaan nahi chal raha. Ab aaya tufaan. Aaye yahan se log ya koi situation aur kisi ne kuch keh diya. Mujhe practice ho gayi hai. Dekho, hum gaadi ki brake kab check karte hain? Jab road par कोई नहीं है, हम फास्ट चलाते चलाते तुरंत ब्रेक करते हैं ताकि हमें पता है कि ब्रेक ठीक चलती है. चेकिंग की हुई है तो जब एक्सीडेंट के टाइम पर पहुंचे तो तुरंत ब्रेक लगाई, बच गए. लेकिन अगर ब्रेक पहले नहीं चेक की हुई है तो फिर उस टाइम तो लगाने की भी कोशिश की तो कहां की कहां गाड़ी पहुंच जाएगी.
0: अच्छा, जिसको ब्रेक लगानी आती है वही लगाएगा, नहीं तो एक्सीलेटर पर पैर दब जाता है. आई रिमेम्बर somebody जो गाड़ी सीख रहे थे और उन्होंने ब्रेक लगानी थी लेकिन गलती से एक्सीलेटर पे लगा और बहुत तेज चली गई.
1: दैट इज अ वेरी गुड वन. तो जब सिचुएशन आती है तो यहाँ स्टॉप करने के बजाय हमारा भी तो एक्सीलेटर ही चल जाता है और नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स. सो दिस प्रैक्टिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अब जब यहाँ से सिचुएशन आती है ना, आई हैव प्रैक्टिस्ड, I am a positive being. I am a powerful being. This only will come if we have practiced many, many times. And agar hamara focus right hai, ki mujhe pehle apna dhyan rakhna hai. This is not being selfish. Kai baar log kehte hain, bahut selfish nahi hai.
0: And why it is important? I think somewhere we really need to know that why it is important that I remain.
1: Kyunki jaise aapne kaha abhi, ki jab wo auron ke baare mein chilla rahe the, तब मैं उनकी मदद कर रही थी. क्यों? क्योंकि तब मैं ठीक थी. इसी तरह अगर वो मेरे बारे में भी शोर मचा रहे होंगे, अगर मैं ठीक होंगे तो मैं क्या कर सकूंगी, उनकी मदद कर सकूंगी.
0: आई कांट बिलीव दैट कि कोई मेरे बारे में इतना नेगेटिव कह रहा है या इतना कहता जा रहा है, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ. बट यस, इफ यू आर सेइंग,
1: मदद करना मीन्स क्या करना?
0: उनकी हेल्प करना.
1: किस तरह से उनकी हेल्प? फर्स्ट चीज तो ये होगी कि मैं स्टेबल रहूंगी. क्योंकि जैसे ही मैं स्टेबल रही, नॉट हियर हियर, जैसे ही मैं यहाँ स्टेबल रही, इट्स ओके, इट्स ओके. वो कोई दर्द में है, आई एम नॉट कंज्यूमिंग द पेन, आई एम ओके, वो भी ठीक हो जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जैसे हम अपना ध्यान रखते तो कौन सी एनर्जी वहां फ्लो होगी.
0: एक्चुअली मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा. जहां मैं स्टेबल हो गई, जहां उन्होंने देखा कि मैंने रिएक्ट नहीं किया. सी ही विल से 5 sentences और शी विल से 5 sentences. उसके बाद व्हेन ही रियलाइजेस कि इन्होंने तो रिएक्ट ही नहीं किया, द काइंड ऑफ रिएक्शन ही मस्ट बी एक्सपेक्टिंग, ही विल आल्सो टेक अ पॉज.
1: अभी क्या होता है, यहां से सिचुएशन आई, मैं भी अपसेट हुई, फिर मैं ये इनके लिए सिचुएशन बन जाती है, फिर ये अपसेट होते हैं, फिर ये मेरे लिए सिचुएशन बन जाते हैं, एंड द गेम जस्ट गोज ऑन.
0: वही तो मैं कह रही हूँ, उनका क्लोजेट खुला, साथ साथ मेरा भी तो खुलता है उसी वक्त. मेरे पास भी तो उतना लंबा वो बॉक्स होता है.
1: इट जस्ट नीड्स वन पर्सन. सिर्फ ये है कि कई बार हम कहते हैं व्हाई डू आई हैव टू बी दैट वन पर्सन, दैट्स द क्वेश्चन, कि वो हर टाइम बोलते रहे आई हैव टू बी दैट पर्सन. यस, यू हैव टू बी दैट पर्सन इफ यू लव योरसेल्फ एंड यू हैव टू बी दैट पर्सन इफ यू लव द अदर पर्सन. क्यों हम क्लेम करते हैं ना, वी लव ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, बट फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, देन यू विल बी एबल टू टेक केयर of the other people.
0: Very important actually. अगर हम reality में देखें तो कहीं ना कहीं हम कहाँ पर खड़े हैं ये बहुत important हो जाता है.
1: So it's very important that I need to first take care of myself. जैसे आपने बहुत बार देखा होगा when we travel by air, तो you know the safety regulations जो बताए जाते हैं सबको, उसमें एक बहुत specific होता है कि if there is a turbulence and air pressure कम होगा, the oxygen mask will fall down.
0: Yes, yeah. We all and we'll,
1: you know, हम देखते हैं कि the oxygen mask just comes down. लेकिन उसके बाद एक बहुत important instruction होता है कि oxygen mask सबसे पहले अपने को लगाना है. बच्चों का ध्यान या आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका ध्यान बाद में रखना है, पहले अपने ऊपर लगाना है. अब जैसे ही हम ये सुनते हैं विल बी से इजंट दैट बीइंग सेल्फिश, पहले ध्यान अपना रखना है. नो, बट इट्स लॉजिकल कि जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे आप दूसरे का ध्यान कैसे रख
0: पाएंगे? आप एक्चुअली खुद तो ब्रेथलेस है और दूसरे को मास्क कैसे लगा पाएंगे?
1: See, it's because physically हम उसको बहुत easily देख सकते हैं कि अगर I am not breathing properly, you know, I just have to create that scene in front of me कि if I am not breathing properly, I am getting suffocated, will I be able to put the oxygen mask? मेरा हाथ ही हिल जाएगा. In the process दोनों का नुकसान हो जाएगा. इसलिए तुरंत सबसे पहले अपना ध्यान रखें. आप कितने औरों का ध्यान रख पाएंगे उसके बाद, यही चीज हमें उस टाइम करनी है कि जैसे ही तूफान आएगा, आता है तूफान, मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क किसको लगाना है? अपने आप को लगाना है, बिकॉज आई कैन कैच द स्टॉर्म. यस, टर्बुलेंस हो रही है, सब आसपास एनर्जी हिल रही है, मुझे अपना ध्यान रखना है. एंड जैसे मैं अपना ध्यान रखा, मतलब आई एम एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, मैं अंदर सफोकेट नहीं हो रही, फिर मेरे पास मार्जिन है आपका ध्यान रखना. फिर रिलेशनशिप्स कैसे हो जाएंगे? लेट्स क्रिएट दिस सीन. आप अपने सामने एक सीन लेकर आए जब लास्ट आपके साथ किसी के साथ ऐसा झगड़ा हुआ या व्हाटएवर आर्ग्यूमेंट हुई, rewind that scene and look at yourself responding in another way. Not जो आपने कल respond किया था
0: बच्चे के साथ ही. अगर हम देखते हैं कि बच्चे ने ये कुछ खाना है जिसको हम कह रहे हैं कि नहीं खाना है ये, और हम ये जो नो नो नो करते जाते हैं because we're doing it for that child only. लेकिन वो जहाँ हमने किया कि नहीं, हम क्या कहें फिर, यहाँ खा लो.
1: No, it's not कि आप उसको, अगर आपको लगता है कि something is not good for him, कि आप करने दो. लेकिन you know the energy, I think everyone should be able to understand कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, that is the energy that gets created at that time. It doesn't mean आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, आपको टीवी देखना है आप टीवी देखो. No, we're not saying that. Because बच्चे को right direction में लेकर जाना, ये भी हमारी
0: actually हम एक बार firm हो जाए ना कि नहीं खाना है, लेकिन हम उसके साथ क्रिएट जो है, हम एक्चुअली गुस्सा भी हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, पांच चीजें और साथ में जोड़ते हैं. तुम हमेशा यही कहते हो, तुम हर बार यही करते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम वो नहीं करना चाहिए, उसके साथ हम चार पांच चीजें और जोड़ देते हैं.
1: तो एनर्जी क्या हो जाती है उस टाइम एक, क्योंकि हर सीन की एक एनर्जी होती है. बिकॉज वी सेड दिस इज ड्रामा, we are actors and there is an energy flow. तो एक होता है dialogue, लेकिन एक होता है energy of the scene. तो dialogue तो हमें जो हमें उस scene के लिए right लगता कि no you have to study or you don't have to go down to play or whatever. लेकिन energy turbulence की जरूरत तो नहीं है ना हर scene के अंदर, क्योंकि scene तो हर थोड़ी देर के बाद scene आने वाली है.
0: अच्छा, और वो तो करेगा ही. हम क्या कहते हैं कि वो फिर हमारे साथ नाराज हो जाता है या वो हमारे साथ गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो तो करेगा ही, वो उसका perspective.
1: Yeah, लेकिन उसका वो perspective भी change करने के instrument कौन बन सकता है?
0: हम बन सकते.
1: You know, because you're in pain. Suppose you're the child and I am telling you कि नहीं, but आप फिर भी react. अब हम क्या expect कर रहे हैं कि मैंने अगर एक बार प्यार से बोला आप तुरंत उसी एक बार में ठीक हो जाओ? It's not going to happen like that. आप दर्द में हैं, मेरे एक बार ठीक बोलने से नहीं आप change हो जाएंगे. Go on and on and on. Keep on giving the right energy. क्योंकि the soul जो सामने है आपके वो दर्द में है. आपका जो role है सिर्फ उसको खाना खिलाना पढ़ाना वो रोल नहीं है, आपका रोल है उस आत्मा को एम्पावर करना. ये है फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. खाना तो खिला ही देंगे, पढ़ा तो देंगे, लेकिन उस आत्मा को दर्द से निकाल कर एम्पावर करना, ये किसकी जिम्मेवारी है?
0: या तो हम उसे बिगाड़ देते हैं या हम उसको दर्द में ले जाते हैं. वेरी ट्रू.
1: तो अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, चलो ठीक है, बट मैं अगर आपके ऊपर इतना जोर जोर से चलाए तो आप तो और दर्द में चले जाएंगे. फिर आप भी रिएक्ट करें, फिर मैं भी करूँ. सो व्हाट इज हैपनिंग, बोथ ऑफ अस गोइंग इन पेन. तो माय फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक केयर ऑफ माई सेल्फ हियर एंड टेक केयर ऑफ यू फर्स्ट हियर. मेरी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड रिलेशनशिप टू एम्पावर द सोल. आप आत्मा को एम्पावर कर दो, वो राइट डिसीजंस तो अपने आप ही ले लेंगे. अपने आप ले लेंगे, या एटलीस्ट वो सक्षम होंगे हमारी बात सुनकर उसको यू नो फॉलो करने के लिए. लेकिन अगर वो ऐसे डिप्लीट होते जाते हैं तब उनको हमारी कोई भी बात कैसे अच्छी लगेगी?
0: एक्चुअली यही हो रहा था, हमें पता भी तो नहीं चल रहा था कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं. तो वेरी ट्रू सिस्टर शिवानी, जिस तरह से आज हमारे सामने बात आई है, खासकर जब भी कोई सिचुएशन आती है. लेकिन अभी कुछ ऐसी भी बातें हैं रिश्तों में जहाँ सिचुएशंस नहीं है, जहाँ सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी एक वैक्यूम, एक खालीपन, ऐसा लगता है कि देयर इज नो कनेक्टिविटी, बनती नहीं है हमारी, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है. सो वो क्या है, क्या उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है? हम एक्सप्लोर करते रहेंगे आने वाली कड़ियों में. लेकिन आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. हो सकता है कोई बात आपके मन में हो आज के इस एपिसोड से जुड़ी हुई, या अदरवाइज जो हम सीरीज कर रहे हैं, या जीवन से जुड़ी हुई, आपका हम स्वागत करते हैं. आपसे हर बार की तरह यही कहना चाहेंगे कि पूरी श्रृंखला, पूरा प्रोग्राम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी एक ऐसा मंच है जो आप ही के लिए है. हम आप साथ मिलकर ही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जिंदगी को किस नजरिए से देखना है. तो आप हमें फोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 09993446 09873666555 09997445. हमारा ईमेल आईडी है om shanti studio@pkmail.org.

अब एक्टिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें हम एक्सप्लोर करेंगे, रिश्ते को नए नजरिए से देखेंगे। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: अला अला अला
3: ओहो काय आहे?

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप साथ साथ चल रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर याद हो पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो गुजर गया, जो बीत गया, उसे छोड़ना जरूरी है अपनी हीलिंग के लिए, अपनी खुशी के लिए, और माफ करना जरूरी है। जिस दिन मैं माफ करना सीख जाऊंगी, क्योंकि जब हमने बात की थी तो समझ में आया था कि हम क्यों नहीं माफ करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन अपने आप को कितना दर्द दे रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये समझे तो माफ करना आसान हुआ। आगे बढ़ते हैं, मुझे किसी से माफी मांगनी है तब क्या करो। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, माफ करना तो मेरे हाथ में था, मैंने कर दिया, लेकिन मुझे किसी से माफी मांगनी है। अब जब इतने अवेयर हो गए, इतने सजग हो गए, लगा कि मुझसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं गलत था या थी, और बहुत वक्त भी गुजर गया है, लेकिन वो साथ साथ चल रहा है, तब क्या करें?
1: तो बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट रेज किया है कि जब हम माफी नहीं मांगते हैं तो उस बोझ को लेकर के घूम रहे, और वो बोझ हमें तकलीफ देता है, शरीर पर भी इफेक्ट होती है, मन पर भी इफेक्ट होती है। अब प्रश्न यह है कि अगर नहीं मांग सके माफी, तो ये समझना चाहिए कि अगर मेरे पर बोझ है, रियलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है, फिर भी मैं माफी नहीं मांग सकता हूं, तो ये मेरा ईगो है। बस ये समझ ले कि ये मेरा अहंकार है कि मैं माफी नहीं मांग पा रहा हूं, और उस अहंकार को मुझे खत्म कर देना।
0: Why do I feel guilty? See, उस वक्त जब मैंने किया था मैं सही थी, और उसके बाद क्योंकि मैं अपने आप को गलत नहीं मानना चाहती, मैं अपने आप को बहुत सारे वो देती जाती हूँ लॉजिक कि मैंने इसलिए किया था, ये हुआ इसलिए हुआ था, इसलिए मैंने ऐसे बिहेव किया था, इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया था, उस वक्त रिएक्ट करना जरूरी था या ये जरूरी था ऐसा। लेकिन अब जब अवेयर हो रहे हैं तो समझ में भी आ रहा है कि यही वो चीज है शायद कि जो मैंने क्रिएट की, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। अब ये गिल्ट है, कैसे जाऊं मैं, नहीं जा पा रहे।
2: देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। कुछ एक परिस्थितियां ऐसी होती है जहां मुझे उस समय लगता है कि जो मैंने किया वो सही है। इनफैक्ट हमेशा ही हमें लगता कि जो हमने किया वो सही है, लेकिन थोड़े समय के बाद हमें लगता कि नहीं, मेरा वो कर्म, मेरा वो एक्शन सही नहीं था। दैट इज वन प्लेस वेर आई कुड फील गिल्टी एंड मैं सॉरी कहता हूँ। लेकिन कुछ एक सिचुएशंस ऐसी भी होती है जहां मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। ओके, अभी भी, उस दिन भी, आज भी, और शायद हमेशा मेरा वो बहुत एक्यूरेट बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, जो मैंने किया वो सही था। लेकिन कई बार मेरा कुछ सही भी उस बात की वजह से किसी और के अंदर दर्द चल रहा है। भले हमें ये समझ में आ रहा है कि उनका हर्ट वो खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वन थिंग आई अंडरस्टूड इज दैट आई एम नॉट क्रिएटिंग समबडी एल्सेस हर्ट, नो वन कैन हर्ट मी, आई कांट हर्ट समवन, लेकिन समवन कैन यूज व्हाट आई हैव डन टू हर्ट देमसेल्व्स। तो भी कहीं ना कहीं मेरा कर्म स्टिमुलस तो बना ना, वो कर्म मेरे लिए सही था। सपोज मैंने आपको कुछ कह दिया, ऐसा मेरे हिसाब से मैंने सही कहा, लेकिन आप उस बात को लेकर अगर हर्ट हो रहे हैं, तो जितनी देर आप हर्ट हैं, वो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी किसकी तरह ट्रैवल होगी? मेरी तरफ ट्रैवल होगी। अब मैं सही हूं, फिर भी क्या मैं सॉरी कह सकती हूँ? और क्या मुझे सॉरी कहना चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सही हूँ, जो मैंने कहा वो सही है, क्या मुझे सॉरी कहना चाहिए? दिस इज वेरी
0: इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी से कि मैं तो सही हूँ।
2: अब क्या होगा अगर हम नहीं सॉरी कहते हैं? एंड सिर्फ कहने की बात नहीं है, जो एनर्जी हम एक्सचेंज करते हैं उनसे कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी हमें मिलती जाएगी, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम गलत थे, हम सोचते हैं कि हम सही हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, और ये सॉरी अपॉलोजी इसीलिए अटक जाती है बीच में, बात कौन सही है कौन गलत है, सॉरी कहूँ या नहीं कहूँ, सॉरी कहूँ तो वो ऊपर से कैसे रिएक्ट करेंगे, सॉरी कहूँ तो क्या वो मुझे कमजोर तो नहीं फील करेंगे, सॉरी कहूँ तो क्या वो फॉरगिव करेंगे। कईयों के अंदर ये बहुत डर है, चलो मैं तो सॉरी कह दूँ लेकिन क्या वो फॉरगिव करेंगे, मैं उन्हें सॉरी कहने जाऊं वो वापस मुझसे कैसे बात करेंगे। तो ये सारे डाउट्स जब मन में चलते हैं, देन वी स्टॉप अवरसेल्फ फ्रॉम फिनिशिंग दैट नेगेटिव कार्मिक अकाउंट। ये एक नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज है, ब्लॉकेज है जिसको हमें स्मूथ करना है. नीड टू थिंक अबाउट दिस. बट
0: अगर ये नहीं हुआ, अगर सॉरी नहीं हुआ, चाहे मैं गलत हूं या नहीं हूं, ये रियलाइजेशन है मुझे दोनों बातों में, अगर मैं सही हूं तब तो मैं कई बार कहता हूं कि सवाल ही नहीं उठता कि मैं सॉरी कहूंगा. लेकिन अगर मैं गलत हूं तब भी मैं सॉरी नहीं कह पा रहा, इसी कारण से कि वो मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे, या उनका अपर हैंड हो जाएगा, यू नो, वो मुझे दबा पाएंगे. तो ये जो गिल्ट है या ये जो है, ये मेरे को क्या तंग कर रहा है?
1: ये बात भी जो शिवानी बहन ने कही वो अच्छे से समझनी चाहिए कि चाहे मैं ये समझ रहा हूं कि मैं सही हूं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हुआ है, तो मैं समझ लू उनको हर्ट तो हुआ, मैं सही सिर्फ मेरे नजरिए से था, उसके नजरिए से तो मैं गलत था. तो अगर मैं वहां पर I put my foot in his shoes and then see कि भी कहां हर्ट हो रहा है, तब मुझे रियलाइज होगा कि भी हर्ट तो हो रहा है, और मुझे माफी मांगने से अगर वो हर्ट दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. और दूसरी बात कि अगर मैं नहीं मांगता हूं तो उनसे नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे कंटिन्यूअस मिल रहे हैं, वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, और इससे भी मुझे हार्म होगी अल्टीमेटली, क्योंकि वो ऑरा मेरे तक पहुंचता है और मुझे उसका नुकसान होगा, इसलिए भी मुझे माफी मांगनी है. और ये छोटी सी बात है वास्तव में तो.
0: लेकिन मैं गलत ही नहीं,
2: जब आपको अपोलोजाइज करना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कर दूं, ये नहीं है, दिस इज नो चीटिंग ईच अदर. मैं किस बात के लिए अपोलोजाइज कर रही हूँ? मैं अपोलोजाइज जो मैंने किया उसके लिए नहीं कर रही हूँ. मैं अपोलोजाइज इस बात के लिए कर रही हूँ कि आप हर्ट हैं. टू थिंग्स आर डिफरेंट. आप दर्द में हैं, उस बात के लिए मैं आपको सॉरी कहती हूँ. नॉट जो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ किया, ये कांच टूट गया इतना बड़ा, ये टेबल आपके लिए बहुत वैल्यूएबल थी, लेकिन मेरी गलती से टूटी, आई डिडंट डू इट डेलिबरेटली, सो बट यू आर नाउ सो मच इन पेन, सो आई अंडरस्टैंड दिस कि मेरे किसी एक्शन ने आपके अंदर ये दर्द क्रिएट किया. तो आई एम सॉरी नॉट फॉर ब्रेकिंग द टेबल, बट आई एम सॉरी फॉर हैविंग बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर यू टू एक्सपीरियंस सो मच पेन. वो तो सत्य है ना, वो तो झूठ नहीं है ना. हाँ, ये ठीक है, ये मेरी गलती नहीं थी, ये हो गया, या मेरे को लगता है ये सही था, व्हाटएवर, लेकिन आप दर्द में हैं, इज दिस अ फैक्ट, सो आई एम सॉरी फॉर यू हैविंग टू गो थ्रू सो मच पेन. दिस कैन बी से सॉरी टू ईच अदर. भले आई वॉज राइट, बट यू हैव इन, यू आर इन पेन, आई एम सॉरी फॉर दैट.
0: लेकिन वहां से फिर रिजल्ट नहीं आता है.
1: नहीं, रिजल्ट आएगा. देखो, कभी करके देखिए, जब हम सॉरी कहते हैं तब आप देखेंगे कि जो वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे. सबसे पहले तो कई बार ये होता है, सामने वाला व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं आपकी तो गलती थी नहीं, तो सारी चीज रिजॉल्व हो गई, आप ही उस बोझ को लेकर के घूम रहे थे. दूसरी बात कि वो व्यक्ति रोने लगेगा, तो भी ये हुआ कि उन्होंने माफ कर दिया, हो सकता है कि अभी हंसने भी लगे. और चलो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, आप कहेंगे कि भाई उसने माफ नहीं किया, लेकिन आपने तो माफी मांग ली, आप तो हल्के हो गए, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है.
0: अगर नहीं मांगी माफी, अगर गिल्ट में हूं मैं, या ये सब कुछ चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, व्हाई आई नीड टू डू दिस,
1: तो अंदर तो आपके वो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं ना. सूक्ष्म में वो इफेक्ट हो रही है, जिससे टॉक्सिक इमोशंस का काबल उससे थोड़ी कम, परंतु वो इफेक्ट हो रही है, और वो इफेक्ट सारे बॉडी ऑर्गन्स पर हो सकती है, क्योंकि अंदर में आप बोझ को लेकर के घूम रहे हैं, खुशी का अनुभव नहीं करेंगे.
0: डॉक्टर, अभी आपने कहा कि आप उस कर्म के लिए सॉरी नहीं हो अगर, लेकिन उस इमोशन को आपके अंदर क्रिएट करने का जो इंस्ट्रूमेंट आप बने हैं, उसके लिए सॉरी हो सकते हैं. तो जो जैसे मैं माफी मांग रही हूँ, वो तो उम्मीद करता है कि अब उस कर्म के लिए आई शुड फील सॉरी.
2: लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग. अपने आप को थोड़े समय पहले देखते हैं, जब हमें ये नहीं समझ में आया था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, तब हम ये फील करते थे कि उन्होंने जो कहा उससे मेरा हर्ट क्रिएट हुआ. नेक्स्ट प्रोग्रामिंग ये हुआ करती थी कि वो सॉरी कहेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा. होता था ना, इसी प्रोग्रामिंग के साथ हम चल रहे थे कि मैं बुरा भी तब फील करता हूँ जब कोई कुछ कहता है, अच्छा भी तब फील करता हूँ जब कोई उसको चेंज करता है. दैट्स द पावर ऑफ सॉरी. पीपल आर एक्चुअली वेटिंग टू हियर दैट सॉरी. उनकी कोडिंग अंदर ये हुई हुई है कि जैसे ही ये सॉरी कहेंगे आई विल फील फाइन. ये बहुत डेफिनेट है, डेफिनेट कोडिंग हमारी हुई हुई है. वो ये नहीं रियलाइज कर रहे कि पहले उनके सेंटेंस को मैंने लिया हर्ट क्रिएट करने के लिए, अब उनके सॉरी को मैं लेता हूँ अपने आप को बेटर फील कराने के लिए. सॉरी इज वर्क्स एज अ स्टिम्युलेंट, प्रोवाइडेड यू आर नॉट जस्ट सेइंग इट ऊपर से, यू आर रियली फीलिंग इट. कई बार आप कुछ लोगों के साथ देखेंगे, आप उनको सॉरी कहें, वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं लगता आपने रियलाइज किया है. आप कहेंगे रियली आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड. नो आई डोंट थिंक, मेरे को लगता है आप ऊपर ऊपर से कह रहे हैं. यू नो व्हाई? अभी उनका दर्द नहीं गया. जब तक उनका दर्द नहीं जाएगा आपका सॉरी सच्चा नहीं था. आप चार बार, पांच बार, दो महीने के बाद फिर से, छह महीने के बाद फिर से कहो, द डे दे आर हील्ड दे विल से नाउ यू हैव रियलाइज्ड बिकॉज नाउ आई एम हील्ड.
0: अच्छा, इट डजंट मैटर कि सामने वाला
2: शायद छह महीने पहले ही रियलाइज कर चुका था कि वो सॉरी है, लेकिन मेरी हीलिंग नम जब तक नहीं होती ना, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है. इतना डीप मेरी प्रोग्रामिंग ये है कि जिस दिन वो रियलाइज कर लेगा मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, बिकॉज मैंने ये कभी नहीं समझा था कि मेरा दर्द मैं खुद ठीक करती हूँ. वी कीप ऑन, देयर आर टाइम्स व्हेन वी कीप ऑन डिमांडिंग सॉरीज फ्रॉम पीपल. सॉरी बोलो फॉर व्हाट यू हैव डन. व्हाई? आप सॉरी बोलेंगे आई विल फील बेटर. दिस इज अ वेरी सटल वे कि जिससे हम अपने आप को ठीक कर पाते हैं. अब वो अपने को कैसे ठीक कर रहे हैं, वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड. वी नीड टू अंडरस्टैंड हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने को भी फ्री करने में और सामने वाले को भी फ्री करने में.
0: नो, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेट करते हैं. हम भी तो वेट कर रहे होते हैं.
2: हम तो वेट
0: कि वो सॉरी कहे.
2: यस.
0: और एक्चुअली हम कई बार वेट करते हैं कि उसको रियलाइजेशन भी तो हो.
2: हाँ, तो रियलाइजेशन कब? जिस दिन मेरा दर्द खत्म हो गया उस दिन आपको रियलाइजेशन हो गया. दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज गोइंग. हाउ डू आई कम टू नो कि आपके अंदर रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं? कैसे पता चलेगा मुझे?
0: सी, वंस यू रियलाइज, अगेन सॉरी कोई ऐसे नहीं कह देता. मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया, तो देन आई विल कम एंड हैव अ टॉक विद यू मे बी कि व्हाई आई डिड दिस, और या ऐसे मैंने किया था तो ये सही नहीं था, आई शुडंट हैव डन दिस.
2: नेक्स्ट मंथ यू माइट डू इट अगेन. आपने रियलाइज किया? नहीं. आप फील कर रहे हो कि हाँ आई एम सॉरी. नेक्स्ट मंथ यू माइट रिपीट द सेम थिंग एब्सोल्युटली ऑल ओवर अगेन, क्योंकि आपके हिसाब से वो गलत था ही नहीं. वो आपके हिसाब से गलत नहीं था, या वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, वो आपके संस्कार बना हुआ है. रियलाइजेशन मीन्स स्टॉप, चेक, चेंज, गॉन. कितनी चीजें हम इतनी जल्दी चेंज कर पाते हैं? नहीं, हम रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं किया इट्स नॉट अ रियलाइजेशन. लेकिन आपका वो एक सॉरी मुझे हेल्प कर देता है टू फ्री माई सेल्फ ऑफ अ लॉट ऑफ पेन.
0: एंड इज इट देन यूजुअली वी आर सेइंग सॉरी जस्ट बिकॉज, सॉरी फॉर क्रिएटिंग हर्ट टू यू, नॉट बिकॉज आई एम रॉन्ग?
2: या मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड फील, बट वी आर नॉट अवेयर कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. आप एक बच्चे को देखो, बच्चे ने कोई गलती कर दी, मदर गुस्सा होकर बैठ गई या मदर रोने लग गई, बच्चे अपने गलती के लिए नहीं सॉरी कह रहा होता, बच्चा अपनी मदर को ऐसे देख रहा होता है ना कि मेरी मदर, मेरी ये बात की वजह से मेरी मदर रो रही है. वो अपनी मदर को चुप कराना चाहता है. बच्चा कई बार रो रहा होता है, मदर चाहती है कि बच्चा चुप कर जाए. मदर बच्चे को कहती है, बच्चे आई एम सॉरी मैंने तुमको ऐसा. व्हाई? शी वॉन्ट्स दैट द चाइल्ड शुड गेट हील्ड. द चाइल्ड वॉन्ट्स दैट द मदर शुड गेट हील्ड. सो वॉट इज इट, वॉट आर वी डूइंग विद ईच अदर? हम एक दूसरे को दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं. कर्म के बारे में तो एक्चुअली हम बहुत ज्यादा सोच भी नहीं रहे होते.
0: नहीं, लेकिन अगली बार हमारे सामने वो कर्म आता है, हम दो बार सोचते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू हर्ट माई मॉम.
2: या बिकॉज इट्स गोइंग टू हर्ट माई मॉम, नॉट बिकॉज द कर्म इज राइट और रॉन्ग. सी, दैट इज द थिंग. आप अपने बच्चे को कुछ एक चीज, उसको सपोज आपने अपने बच्चे को कहा कि स्कूल बंक करके नहीं जाना चाहिए, ही माइट स्टिल लाइक दैट थिंग. उसको अभी भी अच्छा लग रहा है वो आइडिया, लेकिन इट माइट हर्ट माई मॉम, दैट इज वाई आई विल नॉट डू इट. इक्वेशन इज वेरी डिफरेंट. आई हैव नॉट रियलाइज दैट द एक्शन इज रॉन्ग. मेरा उस पे नहीं है रियलाइजेशन. अभी मेरे को सिर्फ टेम्पररी, क्योंकि कुछ एक दिन पहले ही ये हुआ था, थोड़े दिन के बाद जब मुझे वो हर्ट वाला सीन भूल जाएगा, आई विल स्टिल थिंक ऑफ बंकिंग स्कूल एंड गोइंग. तो मेरी रियलाइजेशन एक्शन के बारे में नहीं, मेरी रियलाइजेशन कि आपको दर्द हुआ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती इसलिए सॉरी. दो बातों में काफी फर्क है.
1: पहली बात अगर हो जाए, मुझे रियलाइज हो कि मेरी एक्शन गलत थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, तो सुपीरियर है. तो सदा के लिए खत्म हो जाएगा.
2: देन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ना. देन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन हम जो रो देते हैं एक दूसरे को इमोशनली, गिल्ट में फील, बच्चे ने गलती की, पेरेंट्स क्या करते हैं? बात करना बंद कर देंगे. दिस इज अ वे ऑफ पनिशिंग द चाइल्ड कि मैं नहीं बात करूंगा. बच्चे के लिए पेरेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, यू नो स्पेशली जब बहुत छोटे, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति मेरे से नाराज है. वो गोल गोल गोल गोल घूमता रहेगा सॉरी सॉरी सॉरी कहते हुए. व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी ट्राइंग टू टीच हिम अ लेसन, बट दिस इज नॉट द वे. वी आर टीचिंग हिम द रॉन्ग इक्वेशंस इन लाइफ. एक्चुअली उसको उस एक्शन के प्रति लेके जाने की बजाय उस कर्म में क्या गलती हुई, उसका क्या रीजन था, वी जस्ट शोड हिम आई एम हर्ट एंड यू हैव टू से सॉरी. आपका सॉरी बोलने से आई विल बिकम बेटर, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इवन आफ्टर वी ग्रो अप. द इक्वेशंस जस्ट गो ऑन डूइंग द सेम थिंग. हम एक दूसरे को हर्ट देखते हैं, फटाफट सॉरी बोलते हैं ताकि आपका मूड ठीक हो जाए. भले मैं गलत था या नहीं था, मैं सॉरी बोल दिया ताकि आप ठीक हो जाओ, मतलब आप अपसेट नहीं हो इतना. That's all that we're doing. But we need to understand that this does make a difference to other people. And most important, mere liye bahut useful hai wo, provided I'm feeling it from inside. Feel karke kare. Aajkal kai baar hum sirf aise hi sorry bol dete hain taaki aap theek ho jao. Then it won't work.
0: Nahi to feel karke hum kya karam pe kaam karenge fir bhi?
2: Dono baatein hai na. Agar karam aapko laga ke galat hai to aap karam pe kaam karenge, ya ye aapko laga ki kaun sa karam se kisko dard create hota hai to aap us baat par kaam karenge, lekin kuch to kaam karenge na. Kahin to attention rakh kar apne andar parivartan lenge. Sorry ko sirf ek shabd ki tarah use karke rishton mein exploit to nahi karenge na. You will really work on what you are saying to each other. That's very important. Kai bhai behne aise milte hain, they are guilty कि उन्होंने कोई अपने पेरेंट के साथ या कोई भाई बहन के साथ कुछ ऐसा किया था एंड देव लेफ्ट द बॉडी. कहते कुछ ऐसा करवा दो जिससे हम एक बार उनको सॉरी कह सके. यू नो इतना गिल्ट दे कैन कैरी एंड उससे उनकी पूरी प्रेजेंट एंड फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है जस्ट बिकॉज टाइम रहते हमने वो सॉरी नहीं कहा था. वो गिल्ट इतना बर्डन आपके साथ चल सकता है. सो इट कैन बी वेरी डैमेजिंग टू द एंटायर पर्सनैलिटी.
0: वही पूछना चाह रहे हैं कि जो अब ये जो सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, चाहे वो गिल्ट की है, हर्ट की है, ये अगर हम कैरी करते जाते हैं, अगर लेट को नहीं किया है, सो वेयर डज इट लीड फिजिकली आल्सो?
1: फिजिकली आल्सो इट विल हैव द सिमिलर. जो भी ऑर्गन वीक है उस पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी, या स्पेसिफिक जो ऑर्गन पर उसकी इफेक्ट होनी है वो स्पेसिफिक ऑर्गन पर भी होगी. जैसे गिल्ट की जो फीलिंग है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर हो सकती है. इवन नो गिल्ट कैन अफेक्ट योर एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल, क्योंकि उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो उस प्रकार की बीमारियां आपको होगी.
0: सप्रेस्ड फीलिंग्स या गिल्ट जो है, ये एक जो हम चुप हो जाते हैं, यू नो हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि, और ये जो एक डर कि मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, तब हम शायद चुप रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं. उसको उसको कैसे ओवरकम करें?
1: लेकिन हमने तो बोल दिया, एटलीस्ट हम तो हल्के हो गए. अगर वो व्यक्ति माफ नहीं करता है फिर भी भले हमें नेगेटिव इफेक्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आएगी, परंतु हमारी ओर से तो हम हल्के हो गए. एटलीस्ट 50% बेनिफिट हुआ. अब 50% उस व्यक्ति की गलती है, नहीं कर रहा है बोले फिर से भी कहो.
0: पश्चाताप की जो बात है सर शिवाजी, पश्चाताप में जो रोना और पश्चाताप में जो हम अपने आप को वन गिल्ट में रख के बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, वो भी बहुत डैमेजिंग कई बार होता है, क्योंकि उसमें हम बहुत अपना लो सेल्फ एस्टीम में भी जाते हैं.
2: दो बार गलती हो रही है ना, एक बार जब मैंने वो किया तब गलत एनर्जी क्रिएट की. सपोज मैंने आपको गुस्सा कर दिया, बहुत जोर से अभी आपको कुछ कह दिया, तो अभी गलती हो गई. अब उसके बारे में मैं 4 दिन गिल्ट में रहूं, हाँ मैंने इस तरह से बात कर दी, मैंने उस तरह से बात कर दी, तो वो गलती एक बार नहीं हुई, कितनी बार हो गई. सो गिल्ट इज वेरी वेरी डैमेजिंग. और आज हम बहुत सारी बातों की वजह से गिल्ट में हैं. गिल्ट इज नॉट द सोल्यूशन, पश्चाताप इज नॉट द सोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज द सोल्यूशन. हाँ मैंने पिछली बार ऐसे बात की, ये गलत थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन. मेजोरिटी टाइम वी सी कि सपोज मैंने आज आपसे गुस्सा किया, जोर से किया, कई दिनों तक मैं गिल्ट में भी रही, बुरा भी लगा, लेकिन अगली बार मेरे मुख से फिर उस तरह से बात निकल जाती है. क्यों? क्योंकि जितनी देर मैं पश्चाताप में भी रही, मैं एनर्जी कौन सी क्रिएट कर रही थी? नेगेटिव. तो आत्मा की शक्ति और भी कम होती जा रही थी. जैसे ही स्टिम्यूलस फिर से आया, मुझे फिर गुस्सा आ गया, फिर मैं अगले कुछ दिन फिर पश्चाताप में रही. आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कहते हैं, जैसे हस्बैंड का वाइफ पर हाथ उठ जाता है, सकते हम नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। बहन आपको नहीं पता जब हम करते हैं हमें इतना बुरा लगता है, हम पक्का करते हैं हमने, फिर अगली बार फिर वही होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। नेक्स्ट टाइम वो नहीं हो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ताकत चाहिए। ये सारी नेगेटिव थिंकिंग तो मेरी ताकत को और भी कम कर देती है, मेरी गलती बार बार रिपीट हो रही है। पश्चाताप मीन्स जो गलती मैंने की उसको मैंने अब रिपीट नहीं करना है, फुल स्टॉप। उसके बारे में सोचना सोचना सोचना इज एक्चुअली उस गलती को बार बार रिपीट करना। जितनी बार मैं उसके बारे में सोचूंगी, मैं वही नेगेटिव एनर्जी खुद को भी और आपको भी भेज रही हूँ। सो इट्स जस्ट वन थॉट कि आई विल नॉट डू इट अगेन, चेंज माय थिंकिंग, फिर आप स्टिमुलस चाहे कुछ भी दो।
0: बट वी ऑलवेज से विल नॉट डू इट अगेन, नॉट टू इवन अदर्स,
2: नॉट टू योर सेल्फ, टू योर
0: सेल्फ। आपको भी कहते हैं कि हम नहीं करेंगे।
1: पश्चाताप करना अच्छा है, लेकिन एक ही बार करो और टोटल चेंज,
2: मतलब इट हैज टू फिनिश।
0: वो कैसे करें? नहीं हो पाता ना,
2: क्योंकि हमने अपने थॉट को नहीं चेंज किया।
0: क्योंकि वही बात है ना कि कर्म को चेंज करना तो चाहा हमने कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम गंदा नहीं बोलेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, हो नहीं पाता।
2: कहीं ना कहीं हम अभी तक जस्टिफाइड है अपने उस कर्म के लिए। सी दैट्स व्हाई इट्स कमिंग डाउन अगेन टू द सेम थिंग। मैं चाहती हूँ ये रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन उस समय जब मुझे गुस्सा आया था, मेरे अंदर एक और थॉट है जो कहता है लेकिन मुझे गुस्सा तो इसलिए आया था ना क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था, तो एक्चुअली तो मेरा गुस्सा जस्टिफाइड था। तो मैंने अपने बिलीफ को नहीं बदला, थॉट नहीं बदली, मैंने सिर्फ अपने आप को कहा अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन बिलीफ सिस्टम, थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन नहीं बदला, वो एक्शन में फिर से आ जाएगा।
1: स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन नहीं किया।
2: बिलीफ सिस्टम ये कि उन्होंने भले कहा, गुस्सा मैंने किया था, आई हैव अ चॉइस कि आई कैन चेंज माई रिस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन।
0: ये गुस्सा करना मेरे लिए अच्छा नहीं है।
2: नहीं, बट माई चॉइस ऑफ क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स इज टोटली इन माई हैंड, इंडिपेंडेंट ऑफ द सिचुएशन। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मेरा रिस्पॉन्स मैं क्रिएट करती हूँ। ये प्रोग्रामिंग मुझे बार बार अगर मैं करूँ, नेक्स्ट टाइम मेरा रिस्पॉन्स मेरे कंट्रोल में होगा, तब मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ ये बात अब फिर से नहीं होगी।
1: उन्होंने गलती की लेकिन मैं गुस्सा करके दूसरी गलती कर रहा हूँ ना,
0: क्योंकि मैं क्रिएट कर रहा हूँ।
1: हाँ, मैंने क्रिएट भी किया और दूसरी गलती, एटलीस्ट मुझे तो गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए भी मुझे गुस्सा नहीं करना, इसलिए मैं सही बात को चूज करूँ।
0: डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि हमने खुद ये रिस्पॉन्स क्रिएट किया, अगर हम चाहते हैं तो उस बिलीफ सिस्टम पर जाना पड़ेगा। और कौन सी ऐसी इमोशंस है जो हमारे को आगे बढ़ने में रोकती है?
1: वास्तव में तो जो भी आज हम है, हम सब में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, उन सब को अगर हम देखें तो उसके रूट में कुछ बिलीफ सिस्टम होती, एक भी हो सकती है, शायद दो तीन भी हो सकती है। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अगर सभी करें तो हम टोटली रूट को अच्छे से समझ सकते हैं कि एक झाड़ का चित्र बनाए और फिर आज हमारे में जो भी चीजें हैं कि कुछ अच्छाई है, जैसे भी मेरे में नम्रता है, एकाग्रता अच्छी है, मैं हार्डवर्किंग हूं, ये अच्छी बातें। कुछ बुराइयां भी हो सकती कि मेरे में आलस है, गुस्सा है, गिल्ट फीलिंग है, वो पूरी लिखे और फिर ये ढूंढे कि इन सब के रूट में एक या दो कोई बातें हैं। देखो, एक दो उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करता हूँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनको डिप्रेशन लगता था

0: उनकी दवाइयां भी चल रही थी, छूट गई 3-4 महीने। तो ऐसे एक बार वो रूट को अगर हम समझ ले तो सब कुछ दूर हो सकता है।
1: इमोशनल ब्लॉक्स,
0: जैसे
1: हार्ट में ब्लॉक्स, वैसे इमोशन ब्लॉक्स है।
2: तो इमोशन ब्लॉक्स को समझा अगर, देखा, तो फिर उसको ठीक भी अपने आप कर पाएंगे क्या?
0: हाँ बिल्कुल, फिर से आत्मा के साथ ही काम करना है।
2: हाँ, अपने आप को पॉजिटिव दिखाना है,
1: डिटैच होकर जैसे औरों को बताते हैं अपने को बताना है। अगर ये किसी के साथ भी और होता, कोई भी व्यक्ति उनको ये बता सकता, देखो आपकी वाइफ कितने चाहिए, यू हैव टू जस्ट बी एबल टू से इट टू योरसेल्फ। लेकिन उसके लिए अपने दर्द से डिटैच होना पड़ता है, दैट इज व्हाई सोल कॉन्शियसनेस हेल्प्स। ये सारी चीजें हम बहुत इजीली कर पाएंगे जब हम अपनी परिस्थितियों से डिटैच हो पाएंगे। हमें परिस्थिति ऐसे दिखाई देगी जैसे वो किसी और की परिस्थिति है, वील बी एबल टू गिव द राइट थॉट्स टू आवर सेल्फ। लेकिन इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है वी स्पेंड सम टाइम विद आवर सेल्फ। हमारा क्या हो रहा है, दर्द है, ब्लॉकेज है, नुकसान हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, चलते जाओ, बहुत हम लगता है ये नेचुरल है मुझे, मैं ऐसा ही हूं करके। वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट इट डाउन, फाइंड योर ब्लॉक, क्लीन योर ब्लॉक, दोनों काम हमें ही करने हैं।
2: रिजॉल्व करने की जो बात है कि जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आ पाएगी।
0: कि आपको समझ में आ जाए तो भी वो रिमूव हो जाए।
2: तो ये रियलाइजेशन हमें अपने आप ही अपने आप को देखते देखते होगा। देखने की आदत तो होती जा रही है, समझ भी रहे हैं तरीका। सिर्फ ये नहीं पता था कि ये ब्लॉक्स जो हैं, ना सिर्फ जीवन के हर सुख से, अगर शरीर के सुख देखें उससे भी हमें दूर कर रहे थे। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच। कोई बात मन में है आप हमें ईमेल या फोन पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999334666, 9999334666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद प्रमा कुमार इसमें आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यान पिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपला पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं. इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं. हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना. तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें. ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा. नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन. आप सुन रहे हैं ज्ञान चिंतन. हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं. आज का विषय है अहंकार से आत्मज्ञान की यात्रा तक. यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर, शोर से शांति की ओर और मैं क्या हूं से मैं कौन की ओर ले जाने वाली यात्रा है. हम सभी के जीवन में मैं शब्द बहुत प्रबल होता है. मैं सही हूं, मैं बड़ा हूं, मेरी उपलब्धियां, मेरा अपमान, मेरी पहचान. यही मैं जब शरीर, पद, धन, रिश्तों या ज्ञान से जुड़ जाता है तब उसे हम अहंकार कहते हैं. अहंकार स्वयं को बड़ा दिखाने की नहीं बल्कि स्वयं को सीमित कर लेने की स्थिति है. क्योंकि जब मैं अपने को केवल शरीर, नाम या भूमिका मान लेता हूं तब मैं अपनी असीम शक्ति को भूल जाता हूं. अहंकार का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि वह हमें तुलना में ले जाता है, कभी किसी से ऊपर तो कभी किसी से नीचे. ऊपर होने पर घमंड, नीचे होने पर हीन भावना, और दोनों ही स्थितियों में शांति का अभाव होता है. आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष, इन सब का मूल कारण यही अहंकार है. तो प्रश्न उठता है, क्या अहंकार बुरा है? अहंकार का एक पक्ष हमें पहचान देता है, समाज में भूमिका निभाने में सहायक होता है, पर जब यही अहंकार हमारे निर्णयों, संबंधों और व्यवहार को नियंत्रित करने लगे तब यह बाधा बन जाता है. यहीं से शुरू होती है आत्मज्ञान की आवश्यकता. आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना. मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं पद या परिस्थिति नहीं हूं. मैं एक चेतन आत्मा हूं, शांत, पवित्र, प्रेम स्वरूप और शक्तिशाली. जब यह समझ जीवन में उतरती है तब सोच बदलती है, दृष्टि बदलती है और व्यवहार स्वतः बदलने लगता है. अहंकार से आत्मज्ञान की यात्रा कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है. सबसे पहला कदम है स्वनिरीक्षण. दिन में कुछ पल रुककर स्वयं से पूछें, मेरी यह प्रतिक्रिया अहंकार से आई या समझ से? मैं सामने वाले को बदलना चाहता हूं या स्वयं को? दूसरा कदम है स्वीकृति. जब मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझ में भी कमजोरियां हैं तब अहंकार ढीला पड़ता है. स्वीकृति कमजोरी नहीं बल्कि आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है. तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है मौन और साधना. जब हम रोज कुछ समय अपने भीतर उतरते हैं, विचारों को देखते हैं और स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं तब धीरे धीरे अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है. ध्यान हमें याद दिलाता है कि मेरी वास्तविक पहचान बाहर नहीं, भीतर है. आत्मा का सबसे सुंदर परिणाम है विनम्रता. विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा करना नहीं बल्कि दूसरों को भी उतना ही मूल्यवान मानना है. आत्मज्ञानी व्यक्ति में सहज आत्मसम्मान होता है, इसलिए उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती. जब अहंकार कम होता है तो रिश्तों में मधुरता आती है, निर्णयों में स्पष्टता आती है और जीवन में संतुलन आता है. हम परिस्थितियों के दास नहीं रहते बल्कि उन्हें समझदारी से संभालने लगते हैं. प्रिय श्रोताओं, अहंकार से आत्मज्ञान की यह यात्रा वास्तव में दुख से मुक्ति की यात्रा है. यह यात्रा हमें दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से जोड़ती है. जब मैं सही हूं की जगह मैं शांत हूं आ जाता है तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है. इसी विचार के साथ मैं विवेक जैन आपसे विदा लेता हूँ। अपने भीतर झांकिए, स्वयं को जानिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहे इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। खुश रहें, खुशियां बांटें। नमस्कार।

पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
1: ओम शांति।
0: मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा पहले।
1: श्योर।
0: एक बहुत सुंदर लाइन मिली मुझे, मेक एंगर सो एक्सपेंसिव दैट नो वन कैन अफोर्ड इट एंड योर हैप्पीनेस सो चीप दैट पीपल कैन गेट इट फॉर फ्री।
1: हाउ ब्यूटिफुल।
0: आप ब्यूटीफुल कह रही हैं, मैंने भी यही कहा, लेकिन ये सब मुझे लगता है सब किताबों में और ये क्या कहते हैं इंटरनेट में और लिखी हुई बातों में ठीक है। प्रैक्टिकली मैंने ट्राई किया कि मुझे पता मेरे मन ने क्या बोला। मुझे कहा कि देखो भैया, तुम एंग्री तो हो, एंगर कर रहे हो, लेकिन किस लिए कर रहे हो? भलाई के लिए, काम के लिए, बच्चों से करते तो उनके प्यार के लिए, तो आप इंटेंशन तो आप अपना देखो, आप एंगर एंगर क्यों कर रहे हो? एंगर के बिना होता भी नहीं, सुनते भी नहीं।
1: सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हम कर रहे हैं उसके फायदे कितने, नुकसान कितने। तो गुस्से के तो हमने पहले भी देखा कि मन पर असर, राइट, शरीर के हेल्थ पर असर, रिश्तों पर असर, एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है, हमारी जो एनर्जी है प्यार की, वो ब्लॉक्ड हो जाती है।
0: मतलब
1: एक टाइम पे हमें ये मालूम है कि हम बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं, 25-30 थॉट्स पर मिनट हमने देखा, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही थॉट ना, एक टाइम पे एक थॉट,
0: हम एक समय पर
1: एक ही थॉट क्रिएट कर सकता है। इवन इफ इट इज के हर सेकंड थॉट बदल रहा है सपोज, लेकिन एक सेकंड में एक ही थॉट, एंड विच मीन्स एक सेकंड में एक क्वालिटी ऑफ थॉट, राइट। एक सेकंड में दो क्वालिटी ऑफ थॉट नहीं हो सकता।

0: टाइम वन थॉट, राइट। अब गुस्सा जब आता है तो कम से कम 5-10-15 मिनट चलेगा, राइट। बाहर चाहे 2 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, लेकिन अंदर उसका इम्पैक्ट कम से कम 15-20 मिनट चलेगा। अब 15-20 मिनट में हम कितने थॉट्स क्रिएट कर लेंगे? जितनी देर हम गुस्सा करते हैं, हमारी एनर्जी ऑफ लव, ऑफ केयर, ऑफ कंपैशन, ये ब्लॉक्ड हो जाएगी।
1: अच्छा, मैं थोड़ा क्लियर होना चाहूंगा। जब मैं कोई भी थॉट देता हूँ तो वो थॉट के साथ वो एनर्जी जाती है,
0: थॉट ही एनर्जी है ना। थॉट
1: अच्छा,
0: के
1: तो
0: साथ एनर्जी नहीं जाती।
1: अच्छा, अलग अलग नहीं है?
0: नहीं, थॉट मीन्स जो हमने पहले भी देखा, इट्स द एरो। थॉट वो तीर है जो हम,
1: मैं क्या समझ रहा था, एनर्जी अलग है, थॉट अलग है?
0: नहीं, आत्मा सोल पावर एक थॉट क्रिएट करती है। थॉट की एक क्वालिटी है, राइट। अभी मैं आपके बारे में जो सोचूंगी वो मैं सोचूंगी, फील करूंगी। दिस हैज वाइब्रेशन, यानी एनर्जी हैज वाइब्रेशन। आपको वहां बैठे एक फीलिंग आएगी, या तो वो एक अच्छी फीलिंग होगी, या कई बार हम कई लोगों से मिलते हैं या जब उनका मूड अच्छा नहीं होता तो कहते हैं नॉट गेटिंग अ वेरी नाइस वाइब्रेशन, अच्छी फील नहीं आ रही है। मीन्स जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो एक फीलिंग क्रिएट कर रही है, एंड वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी रेडिएट करती है। जिस क्षण जिन लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर हम उनके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी आदतें, उनकी बातें, उनका व्यवहार, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो जो हमें पर्सनालिटी या जो व्यक्ति मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर हमें अच्छे लगते हैं, मतलब उनकी मोस्ट ऑफ द बातें, आदतें, संस्कार हमें अच्छी लगते हैं, ऐसे आई लव बींग विद दिस पर्सन, ये मुझे अच्छे लगते हैं। अब इसमें अगर हम एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में देखें, एक स्ट्रांग अटैचमेंट है, बचपन से ही एक बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है, एंड वी लाइक एवरीथिंग अबाउट द चाइल्ड, इज आई लव माई चाइल्ड। लेकिन जिस क्षण गुस्सा आया तो बच्चे ने कुछ किया है, कोई गलती की है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, या हम उसको बार बार कुछ कह रहे हैं वो कहना नहीं मानता, या वो हमें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसका उसके जीवन पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो करियर में है, चाहे कभी शादी का डिसीशन है, बिजनेस में है, एनीथिंग। अब ये देख देख कर हम थॉट्स क्रिएट करेंगे, वो स्टिम्युलस है, ये रिस्पॉन्स है। जब बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जिसको हम कहेंगे गलत, या जिसमें हमें लग रहा है कि उसका अपना ही नुकसान हो रहा है, आपने कहा इंटेंशन प्यार की है, राइट। क्योंकि हमारी इंटेंशन होती है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके साथ कभी कुछ गलत
1: ना हो,
0: होना ही नहीं चाहिए, उनको कभी दुख ना हो, उनका कभी कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, दिस इज द हाईएस्ट प्योरेस्ट इंटेंशन। लेकिन उस टाइम वो 2-3 मिनट 5 मिनट हम उनके बारे में जो थॉट्स क्रिएट करते हैं वो कैसी वाली थॉट्स होती है? जिस क्षण एंगर है, गुस्सा है, उस समय थॉट्स जो होंगे वो किस टाइप की थॉट्स होंगे? फॉर एग्जांपल, क्या सोचेंगे हम उनके लिए?
1: कितना बेकार है, सुनता नहीं है, सब कुछ देते हुए भी, इंटेलिजेंस रखते हुए भी पढ़ता नहीं है, खेलता रहता है, स्कूल में जो है सब लोग आगे बढ़ते हैं और ये पीछे रह जाता है, इतना सब मैं इसके लिए करता हूँ फिर भी नहीं सुनता है,
0: राइट।
1: कितना सताता है मुझे,
0: इसका
1: दुख
0: क्या
1: देता है मुझे।
0: अब ये हो गई कोई बड़ी बात। अगर कोई छोटी बात है कि हाथ से कुछ गिर गया, कोई नुकसान कर दिया, या कुछ आता था फिर भी गलत बोल दिया, उसका बात करने का तरीका ठीक नहीं लग रहा है, तो भी हम कैसे थॉट्स क्रिएट करेंगे? अब ये जब हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, एक एक थॉट, और ये बहुत फास्ट क्रिएट होंगे ना, इतनी जल्दी जल्दी जल्दी हम उसके बारे में क्रिएट, सपोज दिस इज ओनली एंगर इनसाइड, अभी तो शब्दों में भी नहीं आया, लेकिन जितनी देर ये थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं हमारी क्वालिटी ऑफ एनर्जी।
1: आपसे बात करते करते मुझे लग रहा है कि मैं प्यार नहीं कर रहा हूँ, आई एम बीइंग क्रिटिकल, इज दिस लव और क्रिटिसिज्म?
0: सी, इंटेंशन पेरेंट फॉर चाइल्ड इज लव, राइट। लेकिन सिर्फ उस क्षण, जितनी देर, ऐसा नहीं है कि नहीं देन मेरा प्यार खत्म हो गया या कम हो गया, सिर्फ उतनी देर के लिए, चाहे वो 2 मिनट 5 मिनट, कई बार 15 मिनट, कई बार पूरा दिन नाराज है, तो उतनी देर जो थॉट क्रिएट हो रही है,

0: वॉट क्या कह रही थी, इट वॉज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. अब जिस क्षण ये वाली थॉट्स हैं, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये अप्रिसिएशन नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये केयर नहीं है, ये कंप्लीटली एक ऑपोजिट पैकेज है. इवन अगर हम कहें कि इंटेंशन अच्छी है, तो जितनी देर अपनाओ दिस, आई हैव टू चेक कि मैं ऐसी वाली थॉट्स अपने बच्चे के लिए, देन वी कैन अप्लाई द सेम रूल, हर एक के लिए सेम रूल हो जाएगा.
1: पति पत्नी, पत्नी पति के साथ भी करते हैं. आप ऊंचा बोल रहे हो, आप कम बोलिए, आप ज्यादा बोल रहे हो, आप मत बोलिए, आप दिल की बात मत बोलो, आप घर की बात मत बोलो, बाहर वाले हैं, आप कैसे कपड़े पहने हो, क्या हो, नॉन स्टॉप ये रहता है ना एक दूसरे का. ये क्या प्यार है, कंसर्न है?
0: आप ऊंचा बोल रहे हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है, कैन बी वन थॉट.
1: लोग क्या कहेंगे,
0: ये भी कैन बी वन थॉट. लेकिन एक है, आप हर टाइम ही ऐसे बात करते हो, आपको पता ही नहीं है कैसे
1: बोल. लोगों के सामने बात करना आता ही नहीं आप.
0: टू थिंग्स आर डिफरेंट. सी दैट इज वाई वी हैव टू सी द क्वालिटी ऑफ द थॉट. कौन सी थॉट केयर की एनर्जी है और कौन सी थॉट एंगर की एनर्जी, मतलब कौन सी थॉट एक पॉजिटिव थॉट है, कौन
1: जगह सिस्टर प्यार है.
0: एक है सपोज आप अभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और करते करते वो गलत हो गया, कुछ पे काम गलत हो गया. अभी आप जो छोटा बात, बड़ा नहीं, छोटी बात है, कुछ कर रहे हैं वो गलत हो गया. एक है आपको ये कहना कि आपने ये जो अभी किया, ये जो किया वो ठीक नहीं हुआ, ये गलत हो गया. एंड दूसरा है आप गलत है. दो चीजों में कोई फर्क?
1: और थोड़ा ऊंचा बोले तो हमेशा आप ये गलत करते ही रहते हैं, और ऊंचा जाने तो मैंने आपको कितनी बार बोला, और मैं कई बार सोच रही थी या सोच रहा था ये कहने के लिए आपसे कि आप हमेशा यही करते रहते हैं. मैंने सोचा कि आप सीख जाओगे, लेकिन अपने गलती से आपने सीखा नहीं, तो मुझे मजबूरन आपको बोलना पड़ रहा है, मतलब पूरी हिस्ट्री.
0: एंड कितनी बार बोला भी है तो भी आपको समझ ही नहीं आता.
1: कितनी बार आपसे ये गलती हो चुकी है.
0: एंड आप ये बार बार जब ये करते हैं तो मुझे कितना दुख होता है, हमारे पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है. आप करते ही जाते हैं इस तरह से. वो जो गलती थी वो अलग, जो गलती हुई वो तो गलती हुई. एंड जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनका रोल भी है ना, क्योंकि इंटेंशन बहुत अच्छा है कि ये जो गलती हुई ये नहीं होनी चाहिए थी, ये ठीक होना चाहिए था. लेकिन अभी जो हमने सारी बातें की वो उस गलती के बारे में नहीं थी, वो उस व्यक्ति के बारे में थी जो इस समय गलत लग रहा है. दोनों बातों में हम कहेंगे एक ही बात है, ये एक ही बात नहीं है. सपोज ये कंप्यूटर ही आपके हाथ से अभी गिर जाए, कंप्यूटर गिर गया, कंप्यूटर उठाएं, उसको ठीक करें. लेकिन एक है आपसे पकड़ा ही नहीं जाता ठीक से, मतलब जब देखो आपके हाथ से चीज ही गिर जाती है. आप ऐसे ही करते हैं, महंगी महंगी चीज हर टाइम टूट जाती है आपसे, आपके हाथ में ही नहीं देना आगे से कुछ पे. दिस इज डिफरेंस, एंड ये बहुत बड़ा डिफरेंस है.
1: बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो फिर ये श्योर है कि ये प्यार नहीं है फिर.
0: उस क्षण प्यार नहीं है, क्योंकि उस क्षण
1: मेरे अंदर नहीं होता. हाँ. अगर प्यार नहीं है तो क्या है फिर?
0: सी दैट्स व्हाट वी सेड, जिस क्षण गुस्सा
1: है तो इसका मतलब मेरा प्यार नहीं है, एंगर है.
0: नहीं, उस क्षण सिर्फ, उतनी देर वही हमने कहा, उतनी देर वो प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाएगी. इट्स नॉट दैट ऑलवेज, सिर्फ उतनी देर, क्योंकि प्यार है मतलब मेरी थॉट्स आपके लिए बहुत एक अलग क्वालिटी की चलेंगी. लेकिन जितनी देर गुस्सा आया है तो मेरी थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाती है. अब मेरी थॉट्स, एक होता है गुड विशेस, ब्लेसिंग्स. जैसे सपोज फिर से ये कंप्यूटर गिरा, तो एक है ये कंप्यूटर गिर गया, आपको तो नहीं चोट लगी ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा. ये है गुड विशेस, ये है क्लीन थॉट. अभी भी कंप्यूटर गिरा है, टूटा भी है, जो हुआ वो गलत भी हुआ, लेकिन आपके प्रति क्रिटिकल नहीं. गलती आपकी नहीं, गलत जो आपने किया, मींस द एक्ट एंड द पर्सन, द एक्ट दैट यू परफॉर्म्ड वॉज रॉन्ग, but not that you are a wrong person.
1: How can you call an accident an act I performed?
0: Okay, let's say it's not an accident, it's an intentional act.
1: Okay.
0: That also. Suppose आपने झूठ बोला, जान पूछ कर सोच समझ कर झूठ बोला, ठीक है, बच्चे ने झूठ बोला, किसी ने भी झूठ बोला. Now we have to teach the child. Intention भी बहुत अच्छी है कि इसका झूठ बोलने की आदत ना पड़ जाए. एक्ट जो है।

0: कर्म जो है कि झूठ बोला, एंड दूसरा है व्यक्ति जिसने वो कर्म किया, दोनों को सेपरेट करना होगा। ये एक्ट चाहे गलती से हुआ एक्सीडेंट, चाहे एक इंटेंशनल एक्ट है, दोनों अलग है ना। लेकिन आपने जो किया, आपने जो बोला, और एक है आप द पर्सन। जब गुस्सा आता है हम एक्ट के बारे में कम बात करते हैं, हम व्यक्ति पर अटैक करते हैं, एंड फिर हम व्यक्ति पर सिर्फ उस एक्ट के लिए अटैक नहीं करते हैं, फिर तो हम बहुत सारी पास्ट की बातें भी निकाल देते हैं एंड बहुत सारे बैक रेफरेंसेस कर देते हैं। एंड इट्स मोस्टली यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दिस, यू आर नो गुड, यू कांट डू इट, हाउ मच शुड आई एक्सप्लेन टू यू। तुम्हारी वजह से घर में कितनी प्रॉब्लम है, तुम्हारी वजह से घर में सब परेशान है।
1: You're the cause of all.
0: You. It's not what you did, it is you. And जब when I hit on the you, not on what you did, अगर जो आपने किया उस पर अटैक करे तो आप पर नहीं अटैक हो रहा,
1: तो फिर प्यार कहाँ हुआ बेस?
0: जबकि if you attack the person ना, उस क्षण तो प्यार नहीं है,
1: पहले था, आप कहाँ गायब हो गए?
0: See, every thought, थॉट की क्वालिटी चेंज, एनर्जी चेंज।
1: बेसिकली मतलब आपके अंदर प्यार है और नहीं भी फिर?
0: एब्सोल्युटली। अब इसकी परसेंटेज को हमें बढ़ाते जाना होगा ना, अब इसको हर थॉट में लेकिन चेक करना होगा, हर थॉट में चेकिंग है। कई बार पेरेंट्स भी बच्चे के साथ ये कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आई, रियलाइजेशन आई कि नहीं अब क्रिटिकल नहीं होना है, एक्सेप्ट करना है, भले वो जो भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट, कीप क्वाइट एंड से ओके, आशीर्वाद, कोई बात नहीं,
1: अंदर से भले रोते रहो, चिढ़ते
0: रहो। चेकिंग यहाँ है, चेकिंग यहाँ नहीं है, चेकिंग यहाँ नहीं है, चेकिंग यहाँ है कि क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, एंड इम्पोर्टेंट है जब गुस्सा आ रहा है, माय एनर्जी ऑफ लव इज गेटिंग ब्लॉक्ड, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। अब जो एनर्जी ब्लॉक हो रही है मेरी, वो उन तक तो नहीं पहुंच रही ऑब्वियसली, मतलब उनको प्यार नहीं मिल रहा है इस क्षण, माई एनर्जी ऑफ लव इज ब्लॉक्ड, लेकिन इम्पोर्टेंट इज माई एनर्जी इज गेटिंग ब्लॉक्ड। नुकसान उनका कम, मेरा ज्यादा होने वाला है। इट्स लाइक द फ्लो ऑफ ब्लड, नेचुरल, एक नेचुरल है प्यार फ्लो करना हमारे से, लेकिन कुछ क्षणों के लिए माय फ्लो ऑफ ब्लड गेट्स ब्लॉक्ड, सपोज सप्लाई टू द हार्ट गेट्स ब्लॉक्ड,
1: सांस रुक जाए।
0: हाँ, उस तरह से क्यों आज हम अनकंफर्टेबल है, हम कहते हैं ना सब कुछ होते हुए हम खुश क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लॉकेज ये बढ़ती जा रही है।
1: बहुत अच्छी बात
0: है ना, जैसे पूरा दिन में अगर एक बार गुस्सा आया सपोज, लेकिन सारा दिन नेचुरल है, नेचुरल एनर्जी फ्लोइंग है, काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल, सोल की जो नेचुरल एनर्जी है वो है प्यार, हैप्पीनेस, शांति। जितनी देर वो इस नेचुरल एनर्जी में होगा, वील फील कंफर्टेबल, और जितनी देर हम नेचुरल से हटेंगे, वी आर गोइंग टू फील अनकंफर्टेबल। जब हमारी नेचुरल एनर्जी ब्लॉक होती है, उतनी देर हमें अच्छा नहीं लगेगा, मन को भी नहीं, शरीर को भी नहीं। जैसे जैसे ये फुट है, पैर है, लेकिन वो ब्लड सप्लाई रुक जाए, उसको गया ही नहीं, तो हम कहते मेरा पैर सो गया, सुन्न हो गया, नंब हो गया। नंब हो गया मीन्स द नेचुरल फ्लो इज नॉट देयर। अब वो है, लेकिन वो अपना नेचुरल काम नहीं कर सकता जब तक हम वो सप्लाई को फिर से नहीं ठीक करें। हम हैं, रिश्ते हैं, करियर है, सब कुछ है, बिजनेस है, लेकिन जब नेचुरल सप्लाई जो एनर्जी का है वो जब ब्लॉक होने लगता है, तो सारी चीजें होते हुए भी ठीक वर्क नहीं कर रहे हैं। अब इसको हमने कहा कि नहीं, ये तो नेचुरल है, गुस्सा तो आता ही है, ये तो करता ही है, लेकिन जितनी देर हम ये कर रहे थे, हम अपनी नेचुरल सप्लाई को ब्लॉक कर रहे थे। अब अगर ये दिन में एक आधी बार हो तो भी इट्स ओके, लेट्स से मेरा पैर दिन में एक आधी बार सो जाता है, नंब हो जाता है पूरा, तो एक दिन में 5 मिनट के लिए नंब हो जाए, तो मैं बैठू, उसको ठीक करू, ऐसे करो। अब 1 घंटे में एक बार होने लग जाए, तो थिंग्स विल गेट लिटिल डिफिकल्ट। अब हर आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए ये ऐसे होने लग जाए, इट्स गोइंग टू गेट टफर, क्योंकि उतनी देर अगर सप्लाई ब्लॉक होती गई, और फिर धीरे धीरे वो 5 मिनट के लिए नंब होता है, लेकिन क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट होता है, हर आधे घंटे बाद होता है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी सिस्टम की डाउन हो रही है, तो वो 5 मिनट का इफेक्ट भी थोड़ी ज्यादा देर चलता है। एंड धीरे धीरे हम कहते हैं ये मेरा मूड था, लेकिन धीरे धीरे वो मूड काफी लंबा चलता है, उतनी देर में कोई और परिस्थिति आती है, फिर वो नंब हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे हम कहते हैं ये मूड ही ऐसा रहता है अब इनका। जब ऐसे होने लगता है, जैसे कई लोगों का मूड अशांत रहने का रहता है, कई परेशान, मतलब परेशान होंगे तो ऐसे ही परेशान रहेंगे, कोई भी मैटर नहीं मिलेगा परेशान होने के लिए, तो पास्ट की कोई बात निकाल कर कोई
1: टीवी देख के ही शुरू हो जाते हैं, देखो इन्होंने क्या कर दिया, देखो उन्होंने क्या कर दिया, मतलब न्यूज देख देख के टेंशन लेते हैं,
0: परेशान, ये परेशान, गुस्सा,
1: देश का क्या होगा।
0: अच्छा कोई उदास तो उदास, उदास है बस कोई ना कोई बात लेकर, दुखी तो दुखी। अब जितनी देर ये लंबा चलेगा, एक मिनट के लिए आए गया तो भी इट्स ओके, 2 मिनट आया गया ओके, लेकिन जब ये लंबा चलता जाएगा, ज्यादा देर चलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, लेट अस अंडरस्टैंड उतनी देर मेरा नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी ब्लॉक हो रहा है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो अब अगर हमें अपने गुस्से को कम करना है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो नेचुरल फ्लो है वो ब्लॉक ना हो। जितना नेचुरल फ्लो रहेगा ये दूसरा संस्कार जो अनकंफर्टेबल है ये कम हो जाएगा। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये, और ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है करना, कि जब भी कोई बात आने वाली है, चाहे वो छोटी सी गलती है, चाहे वो कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ा डिसीशन है, फोकस, अपने मन का फोकस उस एक्ट पर रखिएगा, व्यक्ति पर नहीं। और ये हर एक के साथ करना है, सेपरेट द एक्ट फ्रॉम द पर्सन। ये कर सकते हैं?
1: कर सकते हैं, लेकिन जैसे अभी मेरे घर में कांच का दरवाजा बिटवीन किचन एंड खाने का हमारा, वो टूट गया।
0: ओके
1: एक शब्द मैंने नहीं बोला, आया और मैंने कहा चलो लकड़ी का लगवा देते,
0: ठीक है।
1: बड़े बड़े प्रॉब्लम में मुझे कुछ नहीं होता है, ये छुट पुट बर्तन गिरा रहे हैं, बात कर रहे हैं फोन पे, मैं खाना खा रहा हूँ तो किचन में चींची चींची चल रहा है, जब किचन के बाहर हम आते कितनी देर है खाने के लिए, आधा घंटा लंच, उस आधे घंटे में अगर स्टाफ डिसिप्लिन नहीं रहेगा वहाँ चिड़चिड़ होती है।
0: लेकिन
1: तोड़ दिया परवाह नहीं,
0: लेकिन उसमें भी जो वो कर रहे हैं कि वो आवाज कर रहे हैं,
1: वो कर नहीं रहे हैं, वो है ही ऐसे,
0: ये
1: क्योंकि 10 बार बोला है, 100 बार बोला है, जिस चीज के लिए आप पैसे लेते हो आप वो नहीं करते हो तो मतलब क्या है?
0: और अपने आपको, एक मिनट, अपने आपको 10 बार 100 बार बोला है कि गुस्सा नहीं करना, खुशी जा रही है,
1: मेरा प्रोफेशन नहीं है वो, मैं उसके लिए पैसे नहीं ले
0: रहा, मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरी हेल्थ है, मेरे रिश्ते हैं, उस चीज के लिए भी मैं अपने को नहीं बदल सकता, उनका तो सिर्फ प्रोफेशन है, मेरे तो वो जीवन का पर्पस है, कितना फर्क है।
1: अगर आपको इतना ही बोला गया है कि हम लोग खाना खा रहे हैं तब आप शांत करो, फोन भी, ठिक भी, लड़ाई
0: क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनका संस्कार है। उनका संस्कार है ना ऐसा,
1: हाँ, वो संस्कार है या वैसे ही, एक ही तो बात हुई,
0: हाँ वही, तो वो उनका संस्कार है, हम बार बार उनको उस संस्कार को चेंज करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम एनर्जी किसके प्रति क्रिएट कर रहे हैं,
1: उस आदमी के,
0: वो ऐसे हैं, अब वो नहीं चेंज हो रहे, क्या हमने कभी अपने आप को देखा कि हम क्या कर रहे हैं? इट्स सो इजी टू से 10 बार बोला 100 बार बोला तो भी नहीं समझ में आता, अपने आप को 10 बार बोला 100 बार बोला दिन में 10 बार बोला तो भी नहीं हमें समझ में आ रहा, ये है एम्पथी, ये है कंपैशन, कि हाँ संस्कार चेंज करना इतना इजी नहीं होता है कि बोला और हो जाएगा, उनका भी संस्कार चेंज करना इतना इजी नहीं होने वाला है, बोला और हो जाएगा।
1: सपोज़ यहाँ पर हम शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्टाफ, ये 3 कैमरा लगे हुए हैं, ये लोग को मालूम है कि हम शूटिंग कर रहे हैं तब बात नहीं करना है, तो नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए शूटिंग हो रही है ना, अगर एक दूसरे से करने लग जाए तो ये संस्कार का क्या, ये तो डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। जब उनको बोला गया हम खाना खाते हैं तब आप चिल्लाएंगे नहीं, तब आप बर्तन नहीं धोएंगे, आप खड़फड़ नहीं करेंगे, फोन पे बात नहीं करेंगे, हम 10 मिनट खाना खा के चले जाएंगे, आप जो करना है करो, तो फिर ये तो डिसिप्लिन है,
0: ये डिसिप्लिन,
1: बिकॉज यू आर बीइंग पेड फॉर इट, आई डोंट एग्री कि इसमें
0: मेरी, ये डिसिप्लिन है
1: और मैं आपको इसी शर्त पे रखा हूँ,
0: ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, लेकिन हर टाइम मेंटेन होगा इज नॉट नेसेसरी,
1: और हर टाइम नहीं मेंटेन होगा वो नेसेसरी है?
0: नहीं, वी आर नॉट सेइंग कि जो वो कर रहे हैं वो राइट है, बट कैन आई अफोर्ड टू गेट डिस्टर्ब एवरी टाइम? यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि उनको कैसे चेंज करना है, नहीं, मुझे अपने संस्कार को कैसे चेंज करना है व्हेन दे आर इनडिसिप्लिन्ड। अगर फिर मैंने जस्टिफिकेशन ही दे दी तो फिर तो मेरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा ना।
1: ये तो
0: मेरा प्रोसेस रुक गया ना, फिर मेरा प्रोसेस रुक गया। नो, इट्स नॉट इजियर फॉर मी टू चेंज, इट इज आई वॉन्ट टू एंड आई हैव टू चेंज। आज एक स्टाफ है, कल दूसरा होगा, परसों ड्राइवर होगा, उसके अगले दिन बेटा होगा, उसके अगले दिन बहू होगी, उसके अगले दिन ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उसके बाद स्टाफ होगा। कितने लोग मेरे आसपास मेरी तरह से चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे?
1: तो बर्दाश्त करता रहूं?
0: बर्दाश्त नहीं, इम्पोर्टेंट है मैं अपने ऊपर अटेंशन रख रहा हूँ, उनके ऊपर नहीं। लोग, वी हैव टू रिमेम्बर दिस, वी आर डीलिंग विद पीपल, वी आर नॉट डीलिंग विद मशीन्स। मशीन भी हमेशा उसी तरह नहीं चलती है। ऑन किया ऑन, ऑफ किया ऑफ, रखा तो रखा, उठा तो उठा, ये मशीन्स होती है।
1: हाँ, कंप्यूटर को भी मैं देखता हूँ ना, ऑफ करने के बाद वो पूरा टाइम लेता है।
0: हाँ, आज तो हम मशीन के साथ भी इरिटेट हो जाते हैं, इतना स्लो क्यों है, इंटरनेट क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है, इंटरनेट मेरे को स्पीड कनेक्टिविटी वो क्यों नहीं।
1: मैं कभी कभी कंप्यूटर से भी चिढ़ जाता हूँ, मैं जब बंद करना चाहता हूँ वो बोलते अपडेट कर रहा हूँ।
0: व्हाट इज द संस्कार? मोबाइल लगा रहे हैं, क्यों नहीं लग रहा है? नेटवर्क कैच क्यों नहीं कर रहा है? विच मीन्स जो मुझे चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है? हर टाइम जो लाइन है, अंडरलाइन है, वो ये कंप्यूटर टू फास्ट, ये कंप्यूटर टू स्लो। कैसी स्पीड चाहिए? जो मुझे ठीक लगते हैं। ये व्यक्ति गाड़ी बहुत फास्ट चलाता है, कितने पे चला रहा है? 120, टू फास्ट। दिस पर्सन कितना स्लो गाड़ी चलाता है, कितने पे चला रहा है? 80। आपको कितनी चाहिए? राइट स्पीड कौन सी होती है? 100। किसने डिसाइड किया? मी।
1: तुम इतना धीरे बोलते कुछ सुनाई नहीं देता है। हाँ। तुम इतना जोर से बोलते
0: कान फट जाता है। दिस इज इट। हम चाहते हैं कि हर एक हमारे आसपास, यहाँ तक कि मशीनरी भी।
1: इसका मतलब है मैं ही नहीं जानता मुझे क्या चाहिए?
0: नहीं, हम जानते हैं हमें क्या चाहिए।
1: फिर?
0: हमें चाहिए वो जो एग्जैक्ट 100 पर गाड़ी चलाए।
1: तो कैसे रीड करेगा?
0: हमें चाहिए वो, अगर वो रीड भी कर लिया, आपने कहा आई हैव पेड देम एंड आई हैव टोल्ड देम कि उन्हें ये करना है, लेकिन वो ह्यूमन बींग है।
1: अगर ये भी तो ह्यूमन बीइंग है, मेरे कैमरा डिपार्टमेंट में रख रो, ये आपका यहाँ जो बैठे
0: हैं, इसका
1: बात
0: मतलब
1: नहीं कर रहे हैं।
0: हाँ, तो कुछ लोग कभी कभी मेरी बात मानेंगे।
1: मेरी बात नहीं, इनका प्रोफेशन है।
0: हाँ, तो प्रोफेशन है ना, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाएगा, जो डिसिप्लिन की डेफिनेशन आप क्रिएट करेंगे, वो कुछ लोग कभी कभी मानेंगे, सब लोग भी कभी कभी मानेंगे, लेकिन सब लोग हर टाइम हर बार मेरी हर बात मानेंगे?
1: मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी पायलट है तो पायलट प्लेन चलाएगा ही ना।
0: गुस्सा हमें तब आता है जब चीज मेरे अनुसार सही नहीं होती है।
1: मैं मेरे अनुसार नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसके प्रोफेशन के अनुसार उसको सही करना है।
0: आप देखो, वो लोग किचन में हैं, आप बाहर खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पर, वो आपस में बात कर रहे हैं, ये ही बात आपकी फैमिली में किसी और को उतनी तकलीफ नहीं देगी। कहेंगे तो क्या हुआ, लोग है ना, किचन में खाना बना रहे हैं, थोड़ी बातें की आपस में तो क्या होगा। अच्छा, उसको भी अगर उन्हें करेक्ट करना है तो कहेंगे थोड़ा धीरे बोलेंगे आपस, या आप ऐसा करेंगे 15 मिनट के बाद बात कीजिएगा आप।
1: लेकिन डेली बोलते हैं, पहले उठ के एक रूल बना लेते हैं, उनको लिख के दे देते हैं। आप
0: रूल बना के भी लिख कर दे देंगे, नॉट नेसेसरी इट विल बी फॉलोड। This is a way of living. हम हर बात के लिए अपनी एनर्जी को ब्लॉक
1: नहीं कर सकते हैं.
0: We are not justifying anything कि वो लोग सही हैं या नहीं हैं, discipline है या नहीं है, right है या wrong है। मैं अपनी एनर्जी को नहीं ब्लॉक कर सकता ना, मेरा सप्लाई रुक रहा है। अब अगर मेरा सप्लाई इतनी छोटी छोटी चीजों में रुकेगा,
1: तो वही जैसे आपने कहा था, बाउंस हो गया
0: हर छोटी बात में,
1: हर 15 मिनट में, हर पर, फिर तो पांव ही बंद हो जाएगा चलना। मतलब जैसे बॉडी को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा,
0: थोड़ी देर भी बंद हो जाता है अगर ऑक्सीजन।
1: एक घंटे में 1 सेकंड, फिर बाद में 1 घंटे में 10 सेकंड, फिर एक घंटे में मिनट हर मिनट में एक सेकंड, तो फिर तो हाथ
0: और जैसे ही थोड़ा ज्यादा देर अगर ब्लॉक हो गया ऑक्सीजन, देन आई हैव टिप्ड ऑफ। जब ये एनर्जी ब्लॉकेज ज्यादा ज्यादा ज्यादा होने लग जाता है, तब जाके वो डिप्रेशन की एक्सट्रीम स्टेज, क्रॉनिक बीमारी, और तब वो ब्लॉकेज सिर्फ यहां ना रहकर जब वो ब्लॉकेज यहां भी मैनिफेस्ट होता है। किसी का भी शरीर में ब्लॉकेज पहले नहीं होता है, जिनके मन में ब्लॉकेज नहीं है उसके शरीर में ब्लॉकेज नहीं हो सकता
1: है। Wonderful, sister. That was a lovely line. कि मन में ब्लॉकेज है तो शरीर में है, और फिर एनर्जी में भी है, थॉट में भी है, बिहेवियर में भी है, तो इस ब्लॉकेज को हम रोकते हैं और फिर अगले एपिसोड में और आपसे पूछेंगे कि इस ब्लॉकेज को कैसे दूर किया जाए।
0: थैंक यू,
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: व्हेन वी क्रिएट अ थॉट, इट इज फॉलोड बाय अ फीलिंग। दिस एनर्जी इज एक्सपीरियंस्ड बाय अस एंड ऑल्सो रेडिएट्स टू द पर्सन for whom it is created. Love means acceptance. When we get critical or angry, we create negative energy of rejection. There is no appreciation, motivation, or respect in those moments. Our intention for family and friends are good, but in moments of anger, our positive energy of love gets blocked and we radiate negative energy. Frequent blocking of our natural feelings affects our emotional and physical health and our relationships. When someone makes a mistake, talk about the mistake. Don't criticize the person. Separate the act from the person. Do not make past references about the person. Discuss only what needs to be done in the future.
3: Puneri Awaaz 107.8 FM World Renewal Spiritual Trust ka samudayik radio station. Khush raho, khushiyan baato.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

अब वो आ ही जाए, ढलते जाए शाम के साए।

0: अहो ऐकलत का, हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी।
1: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: खाबों का सफर आरजी सनी के साथ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से जब बातें होती हैं और आप लोगों के मैसेजेस हमारे उत्साह को बढ़ा देता है। तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं, एक पूजा और दूसरा हमारे दोस्त अक्षय जी है, जो भी गाना गा के आप सभी से रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अक्षय से बात करते हैं। अक्षय, स्वागत है आपका खाबो का सफर इस कार्यक्रम में।
1: सर, मैं अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ और सिंगिंग मेरा पैशन बचपन से ही रहा है, तो मैं सिंगिंग जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं सिंगिंग करते रहता हूँ, गाना गुनगुनाते रहता हूँ।
0: अच्छा, और क्या बनना है आपको?
1: मुझे ऐसे तो पेबैक सिंगर बनने की बहुत ख्वाहिश है और इसमें उसमें उस फील्ड में मैं आगे मेहनत भी करूंगा, बहुत सिंगिंग के क्लास वास लगाऊंगा।
0: चलिए अक्षय, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका मोटिवेशन देख के, और मैं चाहूंगा कि आप प्लेबैक सिंगर बने और अच्छा नाम करें, ऐसी शुभकामना करते हैं। खाबो के सफर इस कार्यक्रम का एक थीम हम लोग लेके प्रोग्राम करते हैं, पुराने 1960s और 50s के गाने सुनाते हैं, और इसमें भी एपिसोड के अंदर खास एक अल्फाबेट के साथ हम लोग शुरू करते हैं और उसी अल्फाबेट से जुड़ी हुई सब गाने पूरे शो के दरमियान चलाते हैं। तो आज हमने अल्फाबेट सिलेक्ट किया है सी। सी से जो भी 1950s एंड 60s में जो गाने बने हुए हैं उन सारे गानों को हम लोग सुनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए, स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा कि जो एक फिल्म आई थी आहा 1953 में, मुकेश जी ने गाया था इस गाने को और शैलेंद्र साहब ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत से संपन्न ये गीत था। तो शायद मुझे लगता है कि आपको पता हो तो थोड़ा सा बताइए कौन सा ये गीत, की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ।
1: जी सर, ये गाना जो है बहुत ही सुंदर गाना है और इस पर से मुझे एक शायरी याद आती है।
0: जी सुनाइए।
1: तो मुकेश साहब ने जो इतने सुंदर तरीके से इसे गाया उसमें उन्होंने बताया कि जिंदगी चाहे एक दिन की हो या चार दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं जिंदगी को तुम मिले हो। उसमें जिंदगी कैसे जीते है कम समय में उसके लिए वो बहुत अच्छी तरीके से बताया मुकेश जी ने अपने गायकी में।
0: जी। तो अक्षय, बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि इस गाने की तरफ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, मुकेश साहब का गाया हुआ ये खूबसूरत गाना को हम लोग सुनाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अक्षय से ही सुनते हैं ये गाना कौन सा है। थोड़ा सा स्थाई गा के आप सुनाइए हमारे श्रोताओं के लिए।
1: जी सर जी।

ओके अक्षय, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गीत हमें जो है जीवन जीने की प्रेरणा देता है, और जितनी हम लोग इन गीतों के माध्यम से अपनी जिंदगी को एक अलग मोड़ पे ले जा

जाते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, हमारी भावनाएं बदलते हैं, अगर हम अच्छी तरह से इन चीजों को समझ ले। तो चलिए कहते हैं, छूले आसमां जमी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। आइए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गाना जो है अभी आपने अक्षय से सुना, इसी गीत का आनंद उठाते हैं, उसके बाद फिर बनते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खावो खा सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं इस प्रोग्राम को। आइए इस प्रोग्राम में जिस तरह से हम बातें करते हैं, जिस तरह से गीत आपको लेकर सुनाते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड कलेक्टिव सॉन्ग्स आपको सुनाते हैं, आशा करता हूं आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और आज के शो को सजाने के लिए हमारे पास दो खास मेहमान युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय को हमने सुना और अक्षय का इंट्रोडक्शन भी आपने सुना। अब हम पूजा की तरफ चलते हैं। पूजा को आप पहले भी सुन चुके हैं, अब भी सुनेंगे। तो पूजा, आपका फिर से एक बार स्वागत है खाबो का सफर इस कार्यक्रम में।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार पूजा, अपने बारे में बताइए।
1: जी सर, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सिंगिंग मेरे लिए बहुत ही जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए ये मेरे लिए सबसे अच्छा रास्ता है।
0: ओके, चलिए, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं पूजा आप। और आप भी प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हैं और इसके लिए आप जो है क्लासिकल संगीत भी आप सीख रहे हैं, तो अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हम लोग जिस तरह से गानों के बारे में बात करते हैं या गाना सीखने की बात आती है, संगीत की बात आती है, तो बहुत सारी बातें हमारे जहन में आती है। तो मैं चाहूंगा कि अब एक और गीत की तरफ हमारे श्रोताओं को मैं ले चलूंगा। चंपा कली करके एक फिल्म आई थी 1957 में, शायद आपको याद हो। तो इसका संगीत जो है इस फिल्म का हेमंत कुमार ने दिया था, और हेमंत कुमार जो है संगीत बहुत ही अच्छी तरह से देते थे, और बहुत सारे गीत भी उन्होंने गाए और संगीत भी उन्होंने काफी जो गाने हैं उसके लिए कंपोज किया था। तो राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ एक गीत है जिसे लता मंगेशकर ने गाया था और हेमंत कुमार ने उसे संगीत से संवारा था। चंपा कली जो 1957 में फिल्म आई थी उसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना था। तो पूजा, शायद आपको याद हो या याद आ रहा हो, तो थोड़ा सा उस गाने के बारे में, उसकी फीलिंग के बारे में बताइए।
1: हाँ जी सर, ये गाने को लेके मुझे एक शायरी याद आ रही है, तो थोड़ी सी। हर शख्स को दीवाना बना देता है इश्क, जन्नत की सैर करा देता है इश्क। दिल की मजीर हो तो कर लो मोहब्बत, हर दिल को धड़कना सिखा देता है इश्क।
0: प्यारा सा जो शायरी आपने सुनाया है। और जिस तरह से हम लोग एक गीत की तरफ मैं इशारा कर रहा था, 1957 का ये गीत है, तो इसका जो भाव है क्या है, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, इस तरह से जो लाइन है।
1: सर, ये गाने को मैं गा के आपको बताना चाहूंगी कि इसकी फीलिंग क्या है।

ओके पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को पता ही चल रहा होगा, जब प्यार हो जाता है तो प्यार की जो कुमारी है अलग अलग रंग से जो है गायक कहो या फिर लिखने वाले ने अलग अलग ढंग से उसे लिखकर प्रेजेंट किया है। तो इस गाने के अंदर भी 1957 में चंपाकली जो फिल्म आई थी इसमें भी ये प्यार वाला गीत है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो आइए इस गाने का आनंद उठाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर, मैं वो आपका हम सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खाबो का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। चलिए खाबो के सफर को और सुंदर बनाते हैं, और आपके लिए अभी हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो है, द्वीप वाला जो गीत है वो हम सुनाने जा रहे हैं, और इसे पूजा एंड अक्षय जो है दोनों साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। और मैं वो गीत जो है, खास करके ये 1969 में एक फिल्म आई थी जो राजेश खन्ना पर पिक्चराइज किया गया था, मैं उस गीत की तरफ इशारा करता हूँ हमारे साथियों को। और मैं चाहूंगा कि ये जो गीत है जिसे आनंद बख्शी साहब ने लिखा था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये संगीत से सजा गीत, छुप गए सारे नजारे वह क्या बात। तो पूजा एंड अक्षय
1: जी सर,
0: चलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा स्थाई आप गा के सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: ओके ओके सर। छुप

के बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। इस जो गीत है राजेश खन्ना और मुमताज पर पिक्चराइज किया गया था उस जमाने में, उस समय बहुत हिट था और लोग इस गाने को बहुत अच्छी तरह से सुना करते थे। और उस समय जो आकाशवाणी से जो रेडियो होता था उसमें ये गाना जब लगता था तो जिस भी गली से आप गुजरते हैं इस गाने को बार बार आप सुन पाते हैं। तो पहले बहुत कम लोग टेलीविजन को देखते थे, उस समय रेडियो का चलन था तो रेडियो को लोग सुनते थे, तो हर घर में जो है रेडियो सेट होता था। तो अगर आप रास्ते से जाते हैं तो गाना अगर वहां आपके घर में शुरू हो गया और आप घर से निकल गए बाजार की तरफ, तो शायद जाते जाते जो है आप पूरा गाने का अंदाज जो है एक फीलिंग जो है गाने का जो है साथ लेके चलते थे, और मार्केट वगैरह करके वापस आने तक आप जो है रेडियो का आनंद उठा सकते थे, क्योंकि हर जगह से जो है कुछ ना कुछ आपको सुनाई देता था रेडियो के माध्यम से। शायद अब ऐसा नहीं होता है लेकिन उस समय ऐसा होता था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 1969 का ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का दो रास्ते फिल्म से ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों का सफर इस कार्यक्रम में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है अल्फाबेट सी से जो गाने पुराने बने हुए हैं 50s एंड 60s के, उस कलेक्शन को आपको सुना रहे हैं। और आशा करता हूं आप सभी लोग इस गानों का आनंद उठा रहे होंगे, 50s एंड 60s का, वो भी खास सिलेक्टेड गानों का। कहते हैं न किसी का फेंका हुआ मिले, न किसी से छीना हुआ मिले, मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले। न मिले ये भी तो कोई गम नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। जी हाँ, इंसान हमेशा मेहनत करता है और मेहनत से जीता है, और उसका मेहनत का फल उसे अंदर से चाहत होती है कि मुझे उस मेहनत का ही मिले, तो ये एक ईमानदार व्यक्ति का लक्षण है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और हम सभी लोग इन चीजों को जानते भी है, समझते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कुछ परिवेश में हमारी जो भावनाएं बदल गई है लोभ लालच के कारण, शायद हम लोग इन चीजों को कभी कभी देख अनदेखा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि आखिर कहते हैं कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए हमेशा हमें सत्य पर अडिग रहना है, अपनी मेहनत के लिए जरूर मेहनत करते हुए ही हमें फल प्राप्त करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अक्षय, कैसे हैं आप?
2: जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे। मैंने जितने भी अभी तक स्टेज शो किए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सिंगर के साथ साथ गिटारिस्ट भी हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और आप मुझे एक्सपीरियंस दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
1: ओके अक्षय, जैसे कि अभी हम लोग एक और गीत आपसे सुनना चाहेंगे। अशोक कुमार और सुचित्रा सेन पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना 1966 में। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ममता। ममता ये जो नाम है बहुत ही पॉपुलर ये फिल्म उस समय रहा 1966 में। अशोक कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी बनी और ये फिल्म जो है उसमें दोनों को हमने देखा। तो ये फिल्म में एक गीत है मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने इसे गाया है और रोशन साहब ने इसे संगीत से संवारा है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो गीत है इसकी एक लाइन मैं बताता हूँ आपको, छुपा लो यो दिल में प्यार मेरा। तो बहुत ही खूबसूरत गाना है और इसे शायद नाइट मोड पे जब आप लोग सुनेंगे या कोई भी व्यक्ति इस गाने को रात में या शाम के 9 या 10 के बीच में जब ये गाना सुनता है तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप थोड़ा सा गुनगुनाइए अपने वॉइस में।
2: ओके सर।

ओके अक्षय, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा लग रहा है। और लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया हुआ ये खूबसूरत कॉम्बिनेशन कंपोजिशन जो है अभी हम लोग सुनेंगे 1966 का। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। खुश रहिए, खुशियां बांटिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे साथ पूजा और अक्षय दोनों जुड़े हुए हैं। दोनों भी संगीत की दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं, काफी चीजें कर भी रहे हैं ये लोग और सीख भी रहे हैं। और पूजा, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, पूजा जब संगीत सीखते हैं या किस गाने को तैयार करते हैं तो किस तरह की बातें हमें ध्यान रखनी होती है?
1: हम जो लाइन गाते हैं वो लाइन में हमें कहाँ पे रुकना है, कितना ऊपर गाना है, कितना नीचे गाना है, वो सब हमें ध्यान रखना पड़ता है।
0: स्केल का ध्यान रखना पड़ता है।
1: स्केल का तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है उसमें गाना गाते रहते तो बीच में स्केल चली जाती है।
0: हाँ।
1: तो वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है स्केल का।
0: अच्छा अच्छा चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। जब हम लोग गाना प्रिपेयर करते हैं या कंपोजिशन करते हैं या किस गाने को गाते भी हैं तो ये चीजें जो बहुत मायने रखता है, ये टेक्निकल शब्द है कि स्केल देखना पड़ता है, हाई पिच पे है कि लो पिच पे है, क्या मध्य पिच पे है, तो ये चीजें जो है शायद हमारे संगीत से जुड़े हुए लोग इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, गीत गाने की शुरुआत करते हैं, तो काफी चीजें जो है एक मेहनत लगती है, ब्रेन स्ट्रोमिंग होता है, दिमाग का एक्सरसाइज होता है कि उसको सही स्केल पे कैसे गाएं, है ना। अच्छा, कोई गाना आपने जब पहली बार प्रेजेंट किया हो तो उसके स्केल के लिए आपको कितना मेहनत करनी पड़ी, कौन सा गाना आपने ठीक ढंग से गाने के लिए मेहनत किया उसके बारे में बताइए थोड़ा सा।
1: जो मैंने पहला गाना गाया था उसमें मेरी स्केल चली गई थी।
0: अच्छा अच्छा
1: वो भी स्टेज पे सॉन्ग था और स्केल चला गया था तो बहुत बुरा लग रहा था फिर बाद में।
0: अच्छा अच्छा, ओके पूजा, कोई बात नहीं, हम लोग हार और जीत के बीच में नहीं लेकिन हार और सीख के साथ हम चलने वाले हैं। प्रैक्टिस में एक द मैन परफेक्ट है। हर बार जब स्केल नीचे चला गया या स्केल नहीं पकड़ पाया ये हमें समझ में आना भी हमारी एक लर्निंग है, तो हम जब दूसरी बार प्रेजेंट करते हैं तो उन चीजों को ध्यान में रखें और उसी अनुसार गाएंगे। तो चलिए पूजा, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और अक्षय से भी बात करके। कहते हैं कि इस कदर हम उनकी मोहब्बत में खो गए कि एक नजर देखा और बस उन्हीं के हम हो गए। आंख खुली तो अंधेरा था, देखा एक सपना था, आंख बंद की और उन्हीं सपनों में फिर सो गए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग 50s एंड 60s के सी अल्फाबेट से गाने आपको सुना रहे हैं, सी अक्षर वाले। तो मैं चाहूंगा कि पूजा एक गाना जो सी अक्षर से 1950s या 60s का जो आपको याद आ रहा है उसका एक स्थाई एंड अंतरा गाइए।
1: हाँ जी सर,

चलिए पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने 1957 का शायद ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, लता एंड मोहम्मद रफी साहब ने गाया है और इसे चित्रगुप्त ने डायरेक्ट किया था और ये म्यूजिक भी उनका ही कंपोजिशन है, राजेंद्र कृष्ण साहब ने शायद इसे लिखा था। तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही अच्छा गीत की तरफ जो है पूजा ने इशारा किया है और इस गीत का आनंद उठाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं खाबों के सफर इस कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, खाबो का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। 50s एंड 60s के जो मेलोडीज हैं आप सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके दिल को हर गीत जो है अलग फ्लेवर दे रहा है, और आप इस गाने में खोते जा रहे हैं, ऐसा मैं फील करता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं खाबो के इस सफर में, और हमारे साथ पूजा और अक्षय साथ में है। तो मैं चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग पुराने गाने और अभी के गाने में क्या डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं, अक्षय थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप स्टेज परफॉर्म करते हैं, काफी लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होता है, तो मैं चाहूंगा कि पुराने एंड नए गानों में क्या डिफरेंस आप बताएंगे, अपने हिसाब से बताएं।
1: जी सर, पुराने गाने जो होते थे और पुराने सिंगर्स भी जो होते थे वो दिल से गाना गाते थे। हालांकि आज के सिंगर भी अच्छा ही गाते, लेकिन पुराने गाने अच्छे तो होते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ उसमें इंस्पिरेशन भी हमको बहुत मिलता था, सीखने को भी बहुत मिलता था। अभी अगर देखा जाए तो सारे गाने प्यार के मोहब्बत के आते हैं। तो पहले तो मुकेश जी, रफी जी, लता जी, इन सबके गाने इंस्पिरेशन वाले आते थे कि लोगों को कुछ सीखने मिले, और दिल से गाते थे वो लोग, तो उनका आवाज सुन के ना दिल पे लगती थी, सुकून मिलता था।
0: आपका कहने का भाव यह है कि पहले और अभी में कुछ अंतर है जो हम लोग बहुत ही क्लियर समझ पाते हैं, क्योंकि पहले मुझे लगता है कि जो चीजें, जो गाने बने हैं वो कहीं ना कहीं समाज से मैसेज देता है, समाज को एक और व्यक्ति को भी मैसेज देता है, और अभी जो गाने ज्यादा बनते हैं वो प्यार मोहब्बत के बनते हैं, थोड़ा सा वो डिफरेंस आपने बताया। और इसके साथ मुझे लगता है कि पहले जो है म्यूजिक भी जो बनता था, शायद मुझे लगता है कि सभी लोग लाइव परफॉर्म करते थे, और आज जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई हैं, है ना।
1: हाँ हाँ हाँ जी सर, पहले ऐसा होता था कि गाने का अगर टेक शुरू किया तो पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो लोग रुकते थे। अभी ऐसा नहीं होता, अभी अगर गलती हो गई तो फिर से ले लेते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था।
0: तो ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एंटर कर गई हमारे इस गानों के बीच में, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा गैप जो है, एक जो लंबा गैप जिसको कह सकते हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को मुश्किल में, या जो गाने बन रहे हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए काम नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है।
1: जी सर, और पहले मेहनत भी बहुत लगती थी गाने बनाने।
0: हाँ, वो कहीं ना कहीं हम लोग स्मार्ट बन गए।
2: गाने में ज्यादा मेहनत लगती है।
0: जी जी जी, ओके। पूजा एंड अक्षय, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करते हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि एक और खूबसूरत गीत जो है, मैं चाहूंगा अक्षय से, अक्षय एंड पूजा आप दोनों, 1963 का कोई गीत जो एक बहुत ही पॉपुलर फेमस फिल्म आई थी, जो बहुत ही नामचिन्ह जो फिल्म कह सकते हैं, वो है पारसमणि। पारसमणि नाम शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा, और ये उस समय का बहुत ही पॉपुलर फिल्म था, तो इसका एक गीत जो है सी अक्षर से शुरू होता है, तो मैं चाहूंगा कि वो गाना आप दोनों मिलके गाएं।
2: चोरी चोरी जो तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे, चोरी चोरी जो तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे,
3: अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे।
0: ओके अक्षय, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया। पारसमणि 1963 में ये फिल्म आई थी, और बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी, और इसे फारूक कैसर ने लिखा था, लता मंगेशकर और मुकेश जी ने इस गाने को गाया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत ही खूबसूरत संगीत इसमें हम लोगों को सुनने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खाबों का सफर इस कार्यक्रम में। ये खूबसूरत नगमा, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। ख्वाबों का सफर में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, वक्त का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और एक चार लाइनें मुझे याद आ रहा है कि उलझी शाम को पाने की जिद न कर, जो ना हो अपना उसे अपनाने की जिद न करो। इस समुन्द्र में तूफान बहुत आते हैं, इसके साहिल पर घर बनाने की जिद न करो। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। कई बार हमारे जीवन में कई मुश्किलें आती है और मुश्किलों का जो कारण है हम लोग सोचते हैं कि दूसरे हैं, लेकिन एक्चुअली में सही मायने में जब हम लोग देखते हैं उन चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे तो कारण हम खुद ही होते हैं। हमको बदलना होता है, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं होती है। जब हम बदलेंगे तो दुनिया अपने आप बदलेंगी। तो ये जरूरत है कि जो भी मुश्किलें हमारे बीच में आ रही है उसमें कहीं ना कहीं हमें फिर से एक बार अपने अंदर को झांकने की जरूरत है। अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, ये अपने आप से पूछना होता है। हम लोग दूसरों की तरफ अगर इशारा करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो वही रहेगा और वो सुलझते नहीं उलझते जाएंगे। इसलिए अगर प्रॉब्लम्स को सुलझाना है तो अपने आप पर ध्यान देना है। और ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं ख्वाबों का इस सफर में, कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अक्षय पूजा हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं। अक्षय फिर से एक बार स्वागत है। एंड पूजा
2: सर, थैंक यू सर।
3: थैंक यू सर।
1: मैं चाहूंगा कि एक और फिल्म आई थी, ये 1955 में एक फिल्म आई थी जिसका नंबर था बहुत ही अलग टाइप का, ये पिक्चर का नाम था हाउस नंबर 44। तो ये इंग्लिश नाम जो दिया गया था उस समय 1955 में रिलीज हुई थी। तो मैं चाहूंगा कि इसमें भी एक गाना है जो सी अक्षर से शुरू होता है, तो आप दोनों में से किसी को याद आता हो तो मुझे बताइए।
2: हाँ सर, अच्छे को आता है ना।
3: जी सर, जी सर, मैं गाता हूँ। जी सर, मैं इस गाने पे एक शायरी करना चाहता हूँ।
1: जी, स्वागत है।
3: अर्ज किया है, जब कोई ख्याल दिल से टकराता है, दिल न चाहकर भी खामोश रह जाता है। कोई सब कुछ कहकर प्यार जताता है, कोई कुछ न कहकर भी सब बोल जाता है। ये गाना मतलब जो अभी मैंने शायरी बोली उसी से रिलेटेड है। उसमें जो हीरो है वो हीरोइन के लिए शायद ये गाना गाता है साइलेंटली, और अकेले में ही वो गाना गाता है। तो गाना बहुत ही पेनफुल और बहुत ही मस्त।
1: अच्छा अच्छा, एक लाइन सुनाइए आप।
3: जी सर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम में। और अभी जो गाना आपने सुना, साई लुधियानवी साहब ने इसे लिखा था, हेमंत दा ने इसे गाया था और संगीत था सचिन देव बर्मन का। और फिल्म का नाम तो हमने बता ही दिया आपका, हाउस नंबर 44 1955 का। आइए आगे बढ़ते हैं ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में। और पूजा एंड अक्षय हमारे साथ में है, जिनसे हमारी बातें हो रही है और बहुत ही अच्छा कलेक्शन वो आप लोगों के लिए तैयार करके लेकर आए हैं, जिन चीजों को हम लोग एक के बाद एक सुनते जा रहे हैं। तो काफी चीजें हैं हमारे जीवन में जिस तरह की बातें आती हैं, और कभी कभी खुश मिजाज रहने के लिए हम लोगों को इन सारी चीजों को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। अच्छी चीजों का कलेक्शन आपके पास हो तो आप हमेशा खुश मिजाज रह सकते हैं। खुशी की बातें आप याद रखिए, मेमोरी को आप ताजा करिए। आपके जीवन में हो सकता है कि बहुत सारी मुश्किलें हो, लेकिन ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से, खुदा की तरफ से कहीं ना कहीं दो पल आपके खुशियों का बड़ा जीवन भी बिता होगा। तो उन दो पलों को जरूर याद कीजिए। देखिए आपका एक दो घंटा जो है आराम से उस खुशनुमा पलों के साथ ऐसे बीतेगा जैसे आपके जीवन में बहुत बड़ा खुशी आपको मिली हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गाने की तरफ मैं आप सभी को ले चलना चाहूंगा ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम में। 1963 में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी जिसका नाम था दिल ही तो है। दिल ही तो है इस फिल्म के अंदर भी एक बहुत ही खूबसूरत गाना है। मैं अक्षय आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो गाना है दिल ही तो है 1963 में जब रिलीज हुई थी तो बहुत ही पॉपुलर इसके गाने रहे, सभी हिट गाने रहे। तो एक गाना जो है सी अक्षर से शुरू होता है,
1: ये दिल ही तो है मैं चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना। जी सर, ये बहुत ही प्यारा गाना है और मुकेश जी ने बहुत ही अलग और अच्छे अंदाज में इसे गुनगुनाया है।
0: एक्चुअली मुकेश जी उस समय जो भी गाने गाते थे वो दर्द भरे नगमे बोला जाता था उनको। खास जो भी दर्द वाले गाने होते तो मुकेश जी की आवाज में बहुत ही सूट होता था। तो ये थोड़ा सा दर्द भरा है कि ये अलग फ्लेवर है, कैसा है?
1: उनके सारे गानों से थोड़ा अलग है क्योंकि ये सैड भी है और हैप्पी भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के सुनना है तो बहुत ही मजा आता है खाने में।
0: दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा?
1: हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन सैड है।
0: ओके चलिए अक्षय, मैं चाहूंगा कि इस गीत का हम आनंद उठाते हैं और मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको गुनगुना दीजिए।
1: जी सर।

0: थैंक यू सर।
1: बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया, आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा। ये बहुत ही जो अलग मोड है, हमारे मुकेश जी ने जो इस गीत को गाया था, उनके हर गाने में दर्द भरा होता है, तो ये दर्द एंड हैप्पी दोनों चीजों को मिला जुला एक अलग फ्लेवर वाला गाना है। राज कपूर और नूतन पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना, और दिल ही तो है 1963 का ये एल्बम है, और इस गाने को साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा था, और बहुत ही अच्छा एक गीत है जिसे अक्षय ने थोड़ा सा गुनगुनाया है। तो आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं कहूंगा आपसे सलाम नमस्ते खम्मा गनीसा, खुश रहो खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हाँ तो
0: मैं कुछ कह रहा था,
1: बोलो ना, भूल गए?
0: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।
2: नमस्कार, मैं मोनाली सावागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: हाय शशि भैया.
4: हेलो सजस.
3: आपको पता है भैया आज स्कूल में क्या हुआ?
4: हाँ बताओ क्या हुआ.
3: आज सर ने मेरी बहुत तारीफ की.
4: क्या तारीफ की है आपकी?
3: ऐसा हुआ कुछ दिनों पहले हमारे स्कूल में एडिकॉम कुछ तरह से खराब हो गया, उसका स्पीकर खराब हो गया, तो मैंने सर की हेल्प की थी. इस कारण सर ने मेरे को इंचार्ज बना दिया उसका. तो साथ साथ फिर क्या हुआ कि आज लास्ट पीरियड में बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, तो एक तरफ से मैं मॉनिटर भी हूँ और इंचार्ज भी हूँ उसका, एडिकॉम का इंचार्ज भी हूँ.
4: अच्छी बात है.
3: तो फिर तो सर इतने परेशान हो गए कि एकदम चिल्लाने लगे कि इतना शोर मचा रहे हैं, यहाँ हेल्प कर रहे हैं, एक तरफ मॉनिटर भी है, एक तरफ से यहाँ पे भी देखा कि कैसे ही चलेगा, बात करें बट लेकिन थोड़ा स्लो से करें ना. तो फिर मतलब परेशान हो गए बहुत. इस कारण फिर वो एकदम तारीफ करने लगे कुछ मॉनिटर्स की. मतलब मैं तो अभी जैसे असिस्टेंट्स होते हैं वैसे टाइप का हूँ, बट लेकिन जो मॉनिटर है वो हमारा दूसरा है. तो तीन जने हैं, उनमें से एक मैं हूँ. तो वो फिर कुछ ना कुछ बोलने लगे, तो उनमें से मेरी भी तारीफ की उन्होंने बहुत.
4: अच्छी बात आपकी तारीफ की सर ने. क्या तारीफ की आपकी?
3: मेरे बारे में मतलब ऐसे बोल रहे थे कि जैसे मॉनिटर है तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ देखा ही होगा, उसमें कोई गुण देखा ही होगा, मैम ने कोई गुण देखा ही होगा मॉनिटर बनाने से पहले. हाँ. जो मॉनिटर बना दिया.
4: सही बात.
5: हेलो बच्चों.
6: हाय
5: दीदी. क्या बात हो रही है आज? कुछ गुण गुण वैल्यूज के बारे में मुझे अभी भी सुनाई दिया.
3: हाँ दीदी.
6: जी दीदी.
5: तो दृष्टि क्या बात कर रहे थे ये लोग अभी?
6: यश बता रहा था कि उसके साथ स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ है जिससे उसको मॉनिटर भी बनाया गया और इंचार्ज भी बनाया गया है.
5: और वो इसलिए कि सर ने जरूर कोई ऐसी वैल्यूज, कोई ऐसी चीजें देखी होंगी, है ना, कि हाँ. उसके लिए चूज किया.
6: हाँ,
5: क्योंकि बच्चों लाइफ में वैल्यूज बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना.
6: हाँ जी, मॉरल वैल्यूज.
5: तो एक काम करते हैं, चलो आज हम लाइफ की वैल्यूज के बारे में बात करते हैं.
6: यानी कि मॉरल वैल्यूज.
5: बिल्कुल. मॉरल वैल्यूज की बुक्स तो आप सब पढ़ते होंगे.
6: हाँ, हमारे स्कूल में तो एक्स्ट्रा पीरियड लगता है मॉरल वैल्यूज का, और मैम कहती है कि बड़े होकर मॉरल वैल्यूज इतने काम आएंगे, लेकिन पढ़ाई भी उतनी काम नहीं आएगी जितनी मॉरल वैल्यूज काम आएंगे. अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं.
5: बिल्कुल बच्चों, देखो हम पढ़ते तो हैं, लेकिन जब हम लाइफ में वो वैल्यूज अपनाते हैं तो रिजल्ट हमें अपने आप नजर आते हैं. तो चलो हम बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो हमें पसंद है या हमें अपनानी चाहिए. तो सबसे पहले यश बताओ, आपको कौन सी वैल्यूज अच्छी लगती है?
3: मैं अपना काम समय पे करता हूँ. दूसरी कि मैं हेल्पिंग नेचर वाला हूँ, और मैं अपने में कुछ ना कुछ नए नए बदलाव करते ही रहता हूँ, जो अगर गलत हो तो उनको सही करने में मेहनत करता हूँ.
5: ओके, मेहनत भी एक वैल्यू है और टाइम पे सब कुछ करना भी एक वैल्यू है. तो और आगे अब कौन बताएगा मुझे?
6: मैं.
5: बताओ दृष्टि.
6: मैं हमेशा सबसे प्यार से बात करती हूँ, किसी को रूडली नहीं बोलती हूँ.
5: ओके, लव एक बहुत अच्छी वैल्यू है.
6: और मैं भी अपना सारा काम टाइम पे करती हूँ, अच्छे से समय को यूज करती हूँ. जैसे स्कूल में कोई फ्री पीरियड होता है और मेरे पास बहुत सारा काम होता है, तो मैं बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करती. जैसे ही वो पीरियड मुझे मिलता है मैं फटाफट अपना काम कम्प्लीट कर लेती हूँ. फिर घर आके फ्री होती हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज कर लेती हूँ.
5: बिल्कुल, ये भी बहुत एक अच्छी बात है. आप सांडी, आप बताओ.
4: दीदी मैं जहाँ तक सच बोलता हूँ.
5: ट्रूथ. बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही अभी आपने. गांधी जयंती अभी भी थोड़े दिन पहले हो के गई है और गांधी जी ने भी हमें सच बोलना सिखाया है।
6: हाँ जी।
5: और शशि आप बताओ।
4: मुझे हेल्प करना बहुत पसंद है।
5: हेल्प करना पसंद है,
4: दूसरे के प्रति हेल्प करना,
5: मतलब कोई जरूरत में हो तो उसकी मदद करना।
6: हाँ जी। दीदी आप कौन सी मॉरल वैल्यूज फॉलो करते हो?
5: मैं कौन सी मॉरल वैल्यूज फॉलो करती हूँ? एक्चुअली मैं फॉलो करती हूँ रिस्पेक्ट की वैल्यू, लव की वैल्यू, और सबसे बड़ी बात ट्रूथ की वैल्यू।
3: अरे वाह,
4: जो कि मैं करता हूँ।
5: बिल्कुल, क्योंकि जब हम सच बोलते हैं ना तो हमें कभी लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होता और कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसमें हम आंखें नीचे करके खड़े हो अपनी लाइफ में।
3: जी दीदी, जैसे झूठ बोले तो और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं ना।
5: बिल्कुल,
6: झूठ बोले करवा काटे।
5: हाँ, और सबसे ज्यादा पता है क्या बाइट करता है?
6: क्या?
5: हमारा कॉन्शियस।
3: हाँ दीदी,
6: हमारा
3: हमारे मन में वो बात चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है।
4: मैंने बोला आप आगे क्या होगा।
5: अब ये सब चीजों से बचने के लिए क्यों ना हम एक ऐसी वैल्यू अपनाएं कि हमें कभी इन चीजों का सामना करना ही नहीं पड़े।
6: और वो है सच की वैल्यू।
5: वो है सच की वैल्यू। अच्छा, तो हमारे पास वैल्यूज तो बहुत अच्छी अच्छी हैं जिन पे हम बात भी कर रहे हैं और हम फॉलो भी करते हैं।
6: हाँ जी।
5: तो मुझे ये बताओ, ये जो वैल्यूज आप लोगों ने बताई ये आपने सीखी कैसे या किसने आपको बताई?
3: दीदी मेरे को तो बचपन से जैसे घर पे कुछ सिखाया गया, कुछ वैल्यूज घर से, मैनर्स वो सब घर से सिखाया, और कुछ स्कूल में जाके भी पता चलता है। जैसे टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर बाहर से अंदर आ रहे क्लास में तो मैम से पहले पूछते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले मैम से परमिशन लेना जरूरी होता है। वैसे
5: मतलब मम्मी ने सिखाया और टीचर्स ने सिखाया।
3: हाँ जी।
6: हाँ जी।
3: तो इसमें मेन रोल घर और टीचर्स का और स्कूल का, तीनों में ही है।
5: बिल्कुल। और दृष्टि आपने कहाँ से सीखी वैल्यूज?
6: मैंने मम्मी पापा से और मेरे भाई से भी बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज सीखी है। मेरे फ्रेंड से भी बहुत वैल्यूज सीखी है मैंने, कि कैसे एक दूसरे की मदद करना। पता है पहले मैं मदद नहीं करती थी।
5: ओके।
6: तो अब फिर ना मेरी फ्रेंड्स को मैं देखती थी कि अरे ये तो बड़े अच्छे से मदद कर रहे हैं, फिर मुझे लगता था मैं भी मदद करूंगी, तो मैं भी मदद करने लग गई।
5: बिल्कुल दृष्टि, पता है आपने कितनी बड़ी बात बोली, ये कि वैल्यूज कभी कभी हम नहीं अपनाते तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम ऐसे नहीं, बल्कि हम सीख भी सकते हैं। हम उन्हें सीख कर अपना सकते हैं और उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बना सकते हैं अपनी लाइफ का।
6: जी दीदी।
5: और इसीलिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दृष्टि ने दिया। चलो दृष्टि के लिए एक बार तालियां हो जाए, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं ना ये तो इसका काम है, चलो ठीक है हमारे अंदर ये नहीं है तो हमारा तो नेचर ही ऐसा है, हमारे अंदर ये वैल्यू नहीं है तो क्या करें। लेकिन जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करके अगर हम उसे अपनाते हैं तो बहुत फायदा होता है, जैसे कि दृष्टि ने किया।
4: हाँ दीदी।
5: सैंडी आप बताओ, आपने कहाँ कहाँ सीखी वैल्यूज?
4: मैंने मेरे पापा से, मम्मी से, भाई से, दीदी से, फिर स्कूल और टीचर्स सबसे सीखा मैंने, और पंकज से,
5: आपके बेस्ट फ्रेंड। ये भी अच्छी बात है सैंडी ने बोली, हम हर किसी से कोई ना कोई वैल्यू सीखते हैं।
4: अभी भी सीखता रहता हूँ।
5: तो आपकी फेवरेट वैल्यू है ट्रुथ। ट्रुथ आपने किससे सीखा बोलना?
4: ट्रुथ तो ज्यादातर पापा से मैंने, पापा ने मुझे हमेशा कहा कोई भी बात हो अगर तुम गलती करते भी हो तो घर पे आके बता दो कि हाँ पापा आज मुझसे ये गलती हो गई, क्योंकि अगर तुम नहीं बताते हो और बाद में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें तो बात मालूम ही नहीं है ना, तो फिर हम उसको कहाँ से फेस करेंगे। अगर तुम मुझे पहले ही बता दे दो कि हाँ मुझे गलती हो गई या मैंने आज ये गलती कर दी तो हाँ जो लोग ठीक है तुम्हारी गलती तो सुधारेंगे, पर तुमने बताया वो सबसे बड़ी बात है। तो कोई भी अगर दिन में कुछ भी अगर हम गलत करते हैं या कुछ अच्छा भी करते तो घर बताना चाहिए, और मैं ये ज्यादा करता हूँ।
5: संडी ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम जब घर पे बताते हैं तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन ही निकलते हैं, सच बोलने के फायदे। और शशि आप बताओ।
4: मैंने तो मतलब वैल्यू सीखा है अपने माँ बाप से, बड़े बुजुर्गों से, इनसे सीखा है जो हेल्प करना, हेल्प दूसरों के प्रति हेल्प जो करते हैं तो हमको उसका फल अच्छा मिलता है।
5: तो ये आपने अपने बड़ों से सीखा।
4: बड़ों से सीखा।
5: अच्छा, तो अब ये बताओ आप लोगों ने ये चीजें सीखी तो अपने आसपास बड़ों से, घर से, स्कूल से, क्या इसका कोई फायदा आपको कभी मिला? ये वैल्यू आपने यूज की हो और आपको कोई फायदा मिला हो, कोई ऐसा इंसिडेंट आप लोगों को याद है?
3: यस दीदी मेरे को है।
5: हाँ यश बताओ। वेरी गुड, सबको याद है। तो यश बताओ।
3: मैं एक बार मेरे सेकंड या थर्ड की बात है, मेरे साथ मेरे वो नया आया था, मेरा एक बहुत बेस्ट फ्रेंड बन गया था। उसका स्कूल में दिल ही नहीं लगता था कभी। वो बेचारा हर समय पूछता था टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, कब घर जाएंगे। तो मतलब बेचारा इतना परेशान रहता था, एक तो नया है ऊपर से ना कोई दोस्त है। तो जब वो मतलब ऐसे टाइम पूछते पूछते हमारी दोस्ती हुई। उसका नाम तन्मय है, वो हमेरे साथ बॉम्बे में ही रहता था, अब तो हम यहाँ आ गए हैं। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी जो क्लास टीचर थी वो बहुत रूढ़ थी, कुछ

0: कर लिया जैसे जैसे मैं अपने बता रहे थे, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। वो बेचारा बहुत थैंकफुल था, हम दोनों आसपास ही बैठे थे, बड़ा परेशान था, मैंने उसकी हेल्प कर दी। उसके बाद उसके अगले दिन ही आंटी ने मेरे लिए एक बहुत बड़ी डायरी मिनट ला कर दी सिर्फ थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि नो बेचारा होता अभी भी इतना डरता है ना, जैसी मैम का नाम लेगा वैसे ही डर जाएगा कि ऐसी क्लास उसे कभी ना मिले इस कारण।
1: यश, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम उसका दिल भी जीत लेते हैं, और साथ ही उसे सिर्फ एक वो छोटी सी मदद नहीं होती, उसकी कितनी और चीजों में हम मदद कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। जैसे आपकी छोटी सी मदद उसको स्कूल में अच्छा फील कराने के लिए मदद की है ना।
2: हाँ दीदी।
1: तो अब कौन मुझे बताएगा?
3: मैं।
1: सैंडी बताओ।
2: दीदी मैं 9th क्लास में था तो हमारी इंग्लिश की पीरियड चल रहा था, तो मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनाई थी। फिर मैम ने डेली बोलते थे होमवर्क करके रखना होमवर्क ना, फिर मैं सोचता कि हाँ चलेगा चलेगा। फिर एक दिन मैम ने बोला तुम अपनी कॉपी दिखाओ, तो मैंने सोचा कि अगर मैं झूठ बोलूंगा कि हाँ मैम कॉपी घर पे ऐसा वैसा तो एक दिन तो पकड़ा जाऊंगा। मैंने बोल दिया मैम मैंने कॉपी बनाई नहीं। मैम ने बोला सच्ची? बोले हाँ। बोले तुझे बता कितनी प्रॉब्लम होगी अगर तूने नहीं बनाई तो। मैंने मैम मैंने सच बता दिया नहीं बनाया। तो मैम बोला पक्का? बोला हाँ मैम देख लो नहीं बनाई तो नहीं बनाई, हाँ पर इतना प्रॉमिस करता हूँ कि 2-3 दिन मुझे समय दे दो मैं कंप्लीट करके दे दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हमने मुझे बैठा दिया, फिर मैंने 2-3 दिन पंकज की हेल्प से खुद की हेल्प से होमवर्क करके दे दिया। तो मैम ने फिर एक दिन और मैम कॉपी चेक करी थी, फिर मैंने बोला मैम मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर मैम ने एक लड़के को बोला, मैम को उसने बोला था कि नहीं मेरी कॉपी घर पे है, तो मैम ने बोला ठीक है लेके आना। तो पकड़ा गया था, मैम ने बोला कि अगर तूने भी सच बोल दिया था कि हाँ मैंने कर लिया तो मैं तुझे समय दे देती, अब देख झूठ बोला तुझे पकड़ा गया ना। मेरे को मैम ने बोला कि कभी भी जो तो सच बता देने का, गलती की तो की है, तो मुझे अभी तक याद है।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, मुझे लगता है हम सबको सीखने को मिला होगा है ना।
0: यस दीदी।
1: तो जब हम सच बोलते हैं तो हमें उसका सलूशन मिलता है, बड़ों से हेल्प मिलती है, थोड़ी सी डांट पड़े तब भी काम तो चल जाता है, आगे तो हम बढ़ते हैं। और झूठ सबसे बड़ी बात है बच्चों, एक ना एक दिन तो सामने
0: आता ही है।
1: शशि आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है?
4: हाँ जी दीदी, जब मैं 12वीं में था उसमें एक फ्रेंड था, तो उसके मतलब पढ़ता तो अच्छा था, मतलब मैं भी पढ़ता था, लेकिन एग्जाम हुआ, एग्जाम के टाइम में वो एग्जाम दिया उसने तो कुछ कारण मेरे से वो फेल हो गया, मतलब सप्लीमेंट्री आ गई उसके, तो सप्लीमेंट्री आ गई तो मेरा फ्रेंड बोला अब मेरा सप्लीमेंट्री एग्जाम आने वाला है, अब मैं तैयारी तो कैसे करूँ, मैथ विषय में आई थी उसके, तो बोले मेरे को मैथ थोड़ी कम समझ में आती है तो आप कुछ बता सकते हो? तो मैं बोला कि हाँ बता सकता हूँ। तो मैंने उसको समझाया सिखाया, तो उन्होंने फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया तो वो पास हो गए, अच्छे नंबर लेके आए, तो वो पास हो गए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बोला थैंक यू भैया तुमने मेरे को सिखाया आपने, तो उस कारण से मतलब दूसरों के प्रति अपन को हेल्प करना चाहिए, जिससे अपन को भी सीख मिलती है, उनको भी समझ में आता है और उनको भी कुछ अच्छी सीख मिलेगी।
1: बिल्कुल शशि, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। देखो किसी का एग्जाम टाइम हेल्प की, जब उसे जरूरत हो तब मदद करना, पता है वो लाइफ लॉन्ग आपको कभी नहीं भूलेगा।
4: नहीं भूलेगा जी दीदी,
1: है ना। और हमें भी कितना अच्छा फील होता है ना जब हम किसी की मदद करते हैं।
2: हाँ दीदी, बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आती
1: है ना, क्योंकि यही तो लाइफ की चीजें हैं जो हमें एंजॉय करना सिखाती हैं लाइफ को, जब हम किसी की मदद करते हैं तो अच्छा जो फील होता है। चलो बच्चों, आप लोगों के अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस भी करते हो, तो अभी दृष्टि आप हमें क्या बताने वाले हो?
5: मेरी ना एक फ्रेंड थी, वो सबसे स्वीटली बात करती थी, ऐसा नहीं था कि वो सबसे रूड बात करती थी, लेकिन सब उसको बहुत रूडली बिहेव करते थे। वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी तो उसके नोट्स कंप्लीट नहीं थे, एक बार तो मैम बोल रहे थे कि चेकिंग के लिए दो चेकिंग के लिए दो, अब उसके नोट्स कंप्लीट नहीं थे तो ना वो सबसे बुक मांग रही थी, एकदम स्वीटली बात करती थी, बहुत स्वीट थी, लेकिन ना कोई बुक नहीं दे रहा था कि हम तुझे बुक नहीं देंगे। तो मेरे पास आई बेचारी, रोने ही लग गई कि दृष्टि प्लीज बुक दे दे, मेरा काम कंप्लीट नहीं है। तो फिर मैंने उसको बुक दे दी, लेकिन वो लिखने में थोड़ी स्लो थी, तो फिर मैंने उसका काम फटाफट कर दिया, उसने फिर मैम को दिया, तो मैम ने मेरे को बोला कि आपने उसकी मदद करी, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से बोला। मेरी अभी भी एक फ्रेंड है, वो भी मतलब काम कंप्लीट नहीं कर पाती है इतना जल्दी, हैंड राइटिंग उसकी बहुत अच्छी है लेकिन वो कर नहीं पाती है, और एब्सेंट रहती है तो और प्रॉब्लम होती है। तो फिर क्या हुआ, उसका प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट था, उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं थी उस प्रोजेक्ट में, तो अभी की बात है परसों की, मैंने उसको पूरा प्रोजेक्ट बना के दिया, फिर कि मतलब लिखने का काम उसने कर लिया, ड्राइंग का काम मैंने उसको करके दिया।
1: ओके, मतलब आपने उसकी मदद की, तो बच्चों देखो कमी

0: तो हम सब में होती है कोई ना कोई।
1: हाँ दीदी।
2: हाँ जी।
0: तो बजाय कि हम उसका मजाक उड़ाएं या फिर उसको जाने दें, अगर हम उसकी हेल्प करते हैं तो हमें भी हेल्प कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगी। पता ना, जो हम देते हैं वही तो हमें मिलता है।
3: जी दीदी।
2: जी दीदी।
0: है ना, वैसे तो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करो और भूल जाओ,
1: अच्छे काम करो और भूल जाओ।
0: बिल्कुल, लेकिन रिजल्ट तो हमेशा हमें मिलता है, इसलिए ये वैल्यूज को अपनाते रहो। और इस बारे में हम बात करते रहेंगे, अभी टाइम है छोटे से ब्रेक का, फिर बात करेंगे, बच्चों की दुनिया में वापस आएंगे। रेडियो मधुमन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर वापस आ गए हम लेकर बच्चों की दुनिया, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत समझदार भी हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज उनके अंदर हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम वो अभी तक करते हैं। मुझे लगता है हम सभी बच्चे बहुत समझदार हैं, तो आइए उन लोगों से बात करते हैं और आप लोग भी याद करिए अपने वो इंसिडेंट्स जिसमें आपने किसी वैल्यू को अपनाया हो। तो अभी सैंडी आप कुछ बोल रहे थे।
1: हाँ दीदी, आपने ना हेल्प की बात की ना, तो मैं हेल्प पे बताऊंगा ना। शशि है ना, शशि, इसने अभी एक ना ब्लाइंड स्टूडेंट है, इसकी हेल्प की थी कॉलेज में। हमारे वो दो भाई थे, दोनों ब्लाइंड थे, तो उनके एग्जाम्स थे, शायद उनके कुछ एग्जाम्स होंगे, तो 6 दिन एग्जाम चलने थे, तो कॉलेज में ब्लाइंड तो लिख तो सकते नहीं थे, तो सबसे बोल रहे थे कि आप लोग मेरी हेल्प कर दोगे, मेरा पेपर लिख दोगे। तो कितने लड़के बोले नहीं, मेरे पास टाइम नहीं हो। फिर शशि ने आगे से बुलाया कि भाई आजा, मैं तेरा लिख दूंगा। फिर इसने आगे से बुलाया, जबकि इसका भी एग्जाम आने वाला था। एग्जाम शायद आने वाला था कि नहीं, आने वाला था। हाँ, इसका एग्जाम भी आने वाला था। फिर भी इसने बोला ठीक है, मैं तेरा पेपर लिख दूंगा। फिर इसके कॉलेज दूसरी जगह जाके एग्जाम देना था, तो ये खुद जाता था, उसको लड़के को लेके जाता था, फिर पेपर लिख के आता था। फिर एक बार सर ने ऑप्शन भी उठाया था कि नहीं, सर ने बोला था कि तुम नहीं लिख सकते, तुम तो BSc के हो। और फिर उसने बोला क्यों नहीं लिख सकते सर, जब ये ब्लाइंड है तो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ ना, आपको क्या प्रॉब्लम लिखना, मुझे है, आप मेरे पास बैठ जाओ, ये बोलेगा मैं लिखूंगा। तो उसके एग्जाम का तो ये खुद पढ़ता था। शशि ने बोला कि ठीक है, जहाँ तक तो पढ़ के आया, पढ़ के आना, फिर बुक देना, मैं खुद पढ़ूंगा। तो उसकी ये बुक पढ़ के जाता था और ये खुद उसका पेपर, कम से कम एक महीना इसका शायद पेपर चला था। तो इसने एक महीना खुद ने, उसके लिए इसने खुद ने पढ़ाई किया, उसका पेपर लिखा।
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें सैंडी, कि देखो जिनको वो जरूरत होती है, हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, छोटी से छोटी छोटी छोटी कमी उनके पास है, लेकिन उसके एवज में उनके पास बहुत सारी पावर्स और बहुत कुछ भंडार होता है जो हमें उनसे मिल सकता है।
1: हाँ,
2: जी, जी, जी, जी।
0: लेकिन उनके साथ जब हम रहेंगे, उनसे जब हम सीखेंगे, उनके लिए जब कुछ करेंगे, तभी तो वो हमें भी मिलेगा।
1: हाँ,
0: जैसे कि काइंडनेस है, या बहुत ऐसी क्वालिटीज हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं।
2: जी जी जी।
0: तो ये बहुत अच्छा काम किया शशि ने, और एक बार जोर से ताली हो जाए। और सैंडी ने भी एक अच्छी क्वालिटी शो की, पता है क्या?
1: क्या दीदी, मुझे तो पता ही।
0: दूसरों का प्रेज करना, दूसरों की तारीफ करना। क्या होता है, कभी कभी हम सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं, अपने बारे में बताते
2: और दूसरों के बारे में
0: भूल जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, उनको आगे रखते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है।
2: जी दीदी,
0: ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि ये जो वैल्यूज आप लोगों ने बताए, इंसिडेंट्स आपने बताए, कभी ऐसा भी हुआ कोई ऐसी वैल्यू है आपको पता भी है लेकिन आपने फॉलो नहीं किया, नहीं कर पाए?
2: हाँ, साहस की वैल्यू।
1: मुझे कभी कभी मैं अपने काम टाइम पे नहीं कर पाता हूँ।
0: बिल्कुल, देखो जब हम अपनी नोटिस कर लेते हैं ना बातें, तो बिल्कुल हम उस पर सुधार पे काम कर सकते हैं।
1: हाँ।
0: तो जब हमें कोई काम बताए, अगर हम उसे तुरंत करें, तो हम कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है,
3: मेरे साथ भी होता है ऐसे, बिल्कुल। मम्मी उसी समय कहते हैं और मैं उसी समय भूल जाता हूँ।
2: मैं भी, और कभी कभी मम्मी काम बोलती है, मैं सुनती हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ मम्मी आपने क्या बोला।
0: अच्छा बच्चों, अब देखो इसमें दो चीजें आ जाती है, एक रिस्पेक्ट की वैल्यू और एक टाइमलीनेस की वैल्यू, है ना। जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों को मानते हैं, उनका कहना भी हमें मानना चाहिए।
1: हाँ,
2: जी जी,
0: है ना। और टाइमलीनेस, टाइम पे काम करेंगे तो हमारा काम सही चलेगा एकदम।
2: जी जी।
0: तो ये दोनों वाले उसको अपनाने के लिए मम्मी पापा जो बोलेंगे वो हम कब करेंगे?
2: उसी समय
1: करेंगे सर।
0: बिल्कुल उसी समय करेंगे। अच्छा चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के आइडल्स तो जरूर होंगे, है ना, बिकॉज हम कभी म्यूजिक पसंद करते हैं तो कभी स्पोर्ट्स, हमारे आइडल्स तो कभी स्पोर्ट्स में होते हैं, कभी म्यूजिक में होते हैं, कभी डांस में होते हैं, कभी मूवीज में होते हैं। लेकिन क्या हमारे कोई ऐसे आइडल्स भी हैं जिनकी वैल्यू को हम फॉलो करते हैं, या जिनकी वैल्यू की वजह से हम उन्हें पसंद करते हैं?
1: रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने देश के लिए तो कुछ बहुत कुछ किया, बट उन्होंने जो कभी भी उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा उन्होंने सच ही बोला, और कुछ भी हो जाए और वो सच पे अड़े रहते थे हमेशा।
0: ये बात आपको बहुत पसंद है।
2: और मदर टेरेसा भी, क्योंकि वो हमेशा ही जिन लोग बहुत बीमार होते थे उनकी मदद की है, तो हमें उनसे हेल्पिंग की वैल्यू मिलती है, तो वो मेरे आइडल है।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। मदर टेरेसा तो हम सब की आइडल है, क्योंकि उन्होंने ऐसी सिचुएशंस में लोगों की मदद की।
2: हाँ जी।
0: और पूरी लाइफ अपनी समर्पित की लोगों की मदद करने की।
2: हाँ जी।
0: तो शशि, आपका आइडल कौन है?
1: दीदी मेरा आइडल है ये भीमराव अम्बेडकर जी। वो भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि जाति प्रथा को खत्म किया, समाप्त किया। वो हमारे देश के अंदर बहुत अच्छी फैलती जा रही थी, उनको उन्होंने एकदम जुट करके ऐसा संविधान बनाया जिसमें सबको समान रखा जाए।
0: समानता भी एक बहुत अच्छी वैल्यू है, सबको इक्वली ट्रीट करना, सबको इक्वल समझना। वेरी गुड, आप बताओ यश।
3: भगत सिंह, उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से दान कर दिया और बलि पर चढ़ गए हमारी देश की स्वतंत्रता के लिए।
0: बिल्कुल, साहस जिसको हम कहते हैं हिम्मत,
3: वीरता तो देखो वीरता।
0: उनके सामने तो हम सबका सर नतमस्तक है, है ना?
3: हाँ। जी दीदी।
0: तो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हम उनसे सीखते हैं।
3: दीदी आपको पता है मैं भी आर्मी में जाऊंगा बड़े होके।
0: अरे वाह, मतलब हम अपने आइडल से ये भी सीखते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना है।
3: जी दीदी।
1: जी दीदी।
0: और ये बहुत अच्छी बात है यश, हम सब होप करते हैं कि आपकी ड्रीम फुलफिल हो और बहुत सारे विशेष भी आपके साथ हैं।
1: बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू।
0: और आप सभी इसी तरह वैल्यूज जो आपने धारण की है अभी बचपन से ही, उनको स्टे स्ट्रॉन्ग रहना, उन पे हमेशा कायम रहना।
2: जी दीदी।
3: जी दीदी।
0: और अपनी लाइफ से लोगों के लिए एग्जांपल बनना।
2: जी दीदी।
3: जी दीदी।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग बच्चों की दुनिया के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वैल्यूज को अपनाते रहो और सीखते रहो, सिखाते रहो। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।
1: बाय बाय।
0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज आ गए हम भूल जाओ गम। जी हाँ साथियों, विद्यार्थी मित्रों, आपके लिए हम लेकर आए हैं करियर ऑप्शन में एक बहुत ही खास विषय जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको एक अच्छा जो है जगह बनाने में कामयाबी दिला सकता है। तो आज का हमारा मुख्य करियर का जो विषय है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको अंग्रेजी में CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। अब ये पद पाने के लिए आपको क्या क्या करना है, अगर पद पा लेते हैं तो किस तरह के काम करने पड़ते हैं, इन दोनों विषय को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आइए बात करते हैं मुख्य अधिकारी यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी कंपनी या संगठन का सर्वोच्च पोस्ट होता है ना। तो CEO का काम कंपनी के समग्र संचालन, रणनीतिक योजना और वित्तीय मजबूरी के लिए जिम्मेदार होना होता है। वे बड़े फैसले लेते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और कंपनी को उसके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। ये भूमिका स्टार्टअप से लेकर बड़े बहुराष्ट्रीय नियमों और गैर लाभकारी संगठनों तक में हो सकता है। तो अब देखिए, CEO बनना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि उनके पास जिम्मेवारी ज्यादा होती है। जैसे आप देखेंगे रणनीतिक योजना और निर्णय, ये बहुत बड़ा जो है डिसीशन मेकर भी होते हैं। कंपनी के भविष्य की दिशा तय करना और उसके लिए प्लानिंग करना, ये सब कुछ CEO के हाथ में होता है। दूसरी बात, परिसंचालन प्रबंधन, कंपनी के संचालन, वित्तीय और मानव संसाधन जैसे विभिन्न विभागों को देखरेख करना, ये भी इन्हीं के हाथ में होता है। तीसरी बात आती है हितधारक संचार, यानी अगर कंपनी आपकी बड़ी है उसमें निवेशकों की जरूरत है तो निवेशकों, ग्राहकों, भागीदारी और मीडिया के साथ कंपनी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में भी आपको संवाद करना होता है। चौथी बात आती है कॉपीराइट संस्कृति के बारे में, यानी कंपनी की कुछ विशेष डॉक्यूमेंट्स है या संस्कार है या मूल्य है तो संस्कृति और मूल्यों को परिभाषित करना और उसका सेफ्टी का ध्यान रखना। और आखिरी में आता है निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना, जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको पूरी जानकारी देना, शेयर होल्डर्स के प्रति जवाबदेही होना और उनके साथ एक मुख्य संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते रहना। तो ये सारी चीजें एक CEO के अंदर आता है और अगर इन सारी चीजों को आप बखूबी निभाते हो तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छे कंपनी के अच्छे CEO के रूप में जाने जाएंगे। आप देखेंगे CEO का नाम बहुत ज्यादा कंपनी से ज्यादा उनका नाम होता है। आप देखेंगे गूगल, फिर उसके CEO कौन बनते हैं, उनकी एक जिम्मेवारी होती है इसलिए उनका नाम होता है। तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में उसको रन करने के लिए एक CEO की जरूरत पड़ती है। तो इस कार्य को या इस पद को पाने के लिए आपको क्या क्या करना है ना। तो इस कार्य को करने के लिए आपको कार्यनीति, अनुभव और व्यवसायिक नेटवर्किंग का अच्छा ज्ञान आवश्यक है। उच्च दाव वाले माहौल में काम करने के लिए उच्च स्तर की जिम्मेवारी और दबाव को संभालने की क्षमता महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही आत्मविश्वास, सकारात्मक और उत्कृष्ट संचार कौशल की भी आवश्यकता होती है। जब आप इन चीजों को कर पाएंगे या ये कौशल सीख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हर चीज की पूरी जानकारी होती है। वैसे देखा जाए तो CEO बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है जो कंपनी के समग्र प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। CEO बोर्ड के साथ मिलकर काम करता है ताकि कंपनी की रणनीति और उद्देश्यों को विकसित किया जा सके और समयोजित रखा जा सके। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। और सीईओ बनने के लिए आपको कितना क्वालिफाई होना जरूरी है ना, कौन कौन सी डिग्री आपके पास होना चाहिए। एक तो सबसे पहले आप मास्टर डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA बहुत जरूरी है, और इसके साथ में आपको बिजनेस एंड फाइनेंस डिग्री जैसे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के इकोनॉमिक चीजों में आपने कुछ किया हो तो ज्यादा बेटर होता है। इंजीनियरिंग सीईओ के लिए टेक्निकल रिलेटेड फील्ड में आपने अच्छा आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के साथ इंजीनियरिंग किया है, या इंडस्ट्रियल कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आपके पास सर्टिफाइड या डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास MBA स्पेशलाइजेशन हो, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, लीडरशिप हो, पर्सनल क्वालिटीज हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की एक एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। एचएल में डिग्री या मास्टर डिग्री लेने के बाद पोस्ट मिल सकता है, लेकिन टिके रहने के लिए आपको कंटिन्यू लर्निंग बहुत जरूरी है। ना, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें बात करते हैं रणनीति नेतृत्व की कला के बारे में। अब देखिए, एक सीईओ बनने के लिए आपको जो है अच्छी प्लानिंग, अच्छी सोच तो होना चाहिए, और दूरदर्शी होना बहुत जरूरी है। भविष्य की दिशा तय की जाती है, तो आप दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि भविष्य के रुझानों का अनुभव लगाना, अवसरों को पहचानना और वर्तमान चुनौतियों के बीच में संतुलन बनाए रखना। इसके साथ ही कुछ मुख्य बिंदु है, अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं, जैसे कि दूरदर्शी सोच। इसके लिए कहा जाता है कि आपकी सोच में एक बहुत बड़ा जो है क्या कह सकते हैं, वर्तमान और भविष्य और आने वाले अपॉर्चुनिटीज को देखने का नजरिया होना चाहिए। प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास एक कंपनी को उसके दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर पहुंचाने के लिए, बाजार, ग्राहक और वर्तमान समय में किन चीजों की मांग है, ये सब कुछ आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही एक संतुलन बना के रखना, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और साथ में वर्कर्स, इन बीचों इन लोगों के बीच में, और साथ ही साथ आप मार्केट, ऐसे त्रिकोणी ब्रिज, त्रिकोणी जो ख्याल है, इन सभी को आपको जवाब देना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे इन सभी का भी ख्याल या विचार जरूर होना चाहिए। नवाचार को हमेशा बढ़ावा दें, टीम को एक साथ रख के चले, संसाधन प्रबंधन का जो कला है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो साथियों, मेरे विद्यार्थी मित्रों, अगर आप सीईओ बन भी जाते हैं, लेकिन इन चीजों को आपके पास हमेशा इस तरह की जो कला है, समझ है, ये विकसित करना बहुत जरूरी। अब मैं कहूंगा मेरे बताने से चीजें आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर आपके सोच में ये चीजें आ जाए और आप सीखने लगे, और सबसे अच्छी बात है कि आप सीईओ बनने से पहले किसी कंपनी को असिस्ट कीजिए, ये सबसे सिंपल और अच्छा सटीक तरीका है किसी भी करियर को आप लेते हो। यही नहीं कि भाई सीईओ बनना है, कोई भी पोस्ट पोजिशन आपको पाना है और लंबा समय तक आपको काम करना है या बिजनेस रन करना है, तो आप उस चीज से संबंधित कोई चीजों को आप खुद काम कीजिए, असिस्ट कीजिए। जैसे फिल्मी दुनिया में कोई भी डायरेक्टर को आप पूछ लीजिए तो जरूर उन्होंने कहीं किसी से असिस्ट किया होगा, है ना। जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको अगर पूछेंगे उनके इंटरव्यू में, एक बात जरूर सामने आता है कि पढ़ाई करने के बाद उन्होंने किसी को असिस्ट किया था। जैसे किसी के असिस्टेंट बनते हैं तो आपको सारी टेक्निकल चीजें और लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है और किस तरह से एक चीजें होती है वो आपको जरूर मालूम पड़ जाता है। तो ये आपके अनुभव को बढ़ाता है, और इसी से आप दूसरी जगह जब आप अप्लाई करते हैं, अगर उसमें आप एक्सपीरियंस विद दिस थिंग्स लिखते हैं तो वो सबसे ज्यादा काम करता है और आपको जल्दी से जो है पोस्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका अनुभव ही आपको आगे बढ़ाता है। आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और करियर ऑप्शन के इस जीवन कौशल के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सीईओ बनने के लिए क्या क्या करना है किस तरह के पापड़ बेलने हैं। तो आइए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक संगठनात्मक संस्कृति के बारे में। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा

सामने रखता है, प्रभावित करता है, बल्कि कर्मचारी संतुष्टि और प्रतिधारणा पद पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखेंगे किसी कंपनी में आप जाते हैं तो उनके ड्रेस कोड्स होते हैं, उनके बोलने के तरीके अलग होते हैं और उनके कार्य करने के तरीके अलग होते हैं। जैसे कंपनी विजिट में आप जब जाएंगे तो उनके कुछ नियम होते हैं, आप कंपनी में जाएंगे विजिट करने के लिए तो पहले से कई बार अपॉइंटमेंट लेना होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी अच्छी पहचान है तो आप चले गए, लेकिन वहां जैसे ही गेट पर जाते हैं तो आप वहां पर एक ऑफिसर क्लर्क वगैरह रहता है, वो बातचीत करेगा आपसे, फिर वो फोन करेगा और फिर आपका नाम डिटेल्स ले लेंगे और फिर आपको एक आई कार्ड देंगे, वो आई कार्ड एज ए विजिटर आपको गले में लगाना है और फिर आपको एक बंदा जो आपके साथ दिया जाएगा वो आपको कंपनी के पहले मैनेजर से मिला देगा, ऑफिसर जिससे आपको मिलना है उससे मिला देगा, और अगर आपको कंपनी देखना हो तो फिर वो आपके साथ चल के आपको सारी कंपनी दिखा देगा। और जो बंदा आपके साथ होता है वो किस तरह से बात करता है, कैसे व्यवहार करता है, उससे आपको कंपनी का इम्पोर्टेंस, कंपनी के नियम संयम, कंपनी क्या है वो पता चल जाता है ना। फिर चीजें देखेंगे वो सेकेंडरी है, पहले तो व्यक्ति से मिलते हैं तो वो चीजें काम करती है, इसीलिए कंपनी में संगठनात्मक जो संस्कृति है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो आपके घर भी आप कोई मेहमान आता है तो अगर बच्चे उनके बदतमीजी से बात करेंगे तो मेहमान का लगेगा कि बच्चों में उन्होंने संस्कार नहीं दिया। अगर बच्चे किसी मेहमान के आते ही उनके पैर छू लेते हैं और आपका स्वागत करते हैं और डैडी मम्मी में से कोई हो उनको बुला लेते हैं आंगन में, तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, खुशी होगा, तो है ना। दोनों व्यवहार में जो है बहुत अंतर हो जाता है। अगर किसी अगर आप जाते हैं वहाँ कोई आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है और आप अपनी पहचान बताते जा रहे हैं और उसके बाद आपको बहुत समय के बाद अंदर बुलाया गया या बिठा दिया गया, फिर मिलने भी लेट आ गया, तो ऐसे में आपको जो है अच्छा नहीं लगेगा, दोबारा आप वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वहां पर आपकी ट्रीट जो है वो ठीक से नहीं लगा आपको। तो इसलिए हमारी जो कंपनी है, कंपनी के लोगों को हमने कैसे ट्रेन किया है, कैसे उनको काम करने की विधि बताई है, कैसे मेहमानों का स्वागत सम्मान और उन्हें विधिवत चीजें बताने की तरीका सिखाया है, तो ये सारी चीजें भी कंपनी को प्रेजेंट करता है। तो उन्हीं में से एक ये नाम है संगठनात्मक संस्कृति जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो आशा करूंगा अगर आप सीईओ बनना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें भी निर्धारित करनी होगी, समझनी होगी, तब जाके आप एक अच्छे प्रबंधक, अच्छे सीईओ बन सकते हैं। चलिए कुछ और थोड़ी सी बातें मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इस पे सोचिएगा, चिंतन मनन कीजिएगा, और ये चीजें छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत काम की होती है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, करियर ऑप्शन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का करियर ऑप्शन के इस कार्यक्रम में। आखिरी मोड़ पर हम लोग हैं और जहां पर हम लोग सीईओ कैसे बने इसके बारे में बातें कर रहे हैं। सीईओ की क्वालिटी क्या होती है वो मैंने बताया, डिग्री क्या लेनी चाहिए वो बताया, अब बात करते हैं निर्णय लेना। क्योंकि सीईओ जो है जैसा निर्णय लेता है वैसे कंपनी की तरक्की भी हो सकती है, कंपनी को बैलेंस करने के लिए भी काम आता है। तो कंपनी कभी कभी गलत डिसीजन नीचे भी आ सकता है, तो ये एक सीईओ का बहुत बड़ा रोल होता है डिसीजन मेकर के रूप में। तो कई विकल्पों में ये एक विशेष समाधान चुनने का प्रक्रिया होता है सर्वोत्तम, जिसमें किसी समस्या स्थिति के विश्लेषण करना और फिर उसके आधार पर एक कार्यवाही किया विशेष डिसीजन लेकर उसे चयन करके शामिल करना, और ये एक अनुभवी प्रक्रिया है जो जानकारी एकत्र करके विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद एक ऐसा विकल्प चुनने पर केंद्रित है जो लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद भी करता है। तो निर्णय डिसीजन लेना ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी यहाँ पर है सीईओ को। समस्याओं को पहचानना पहला कदम है, समस्याओं को समझना है, उसकी बारीकी से जांच करना और उसके मूल्य मुख्य कारक को समझना या पता लगाना है। जानकारी एकत्र करने के बाद समस्या से संबंधित प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा कर ले, विकल्पों की पहचान करें, कई संभावित समाधान या विकल्प खोज सकते हैं, विकल्पों का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्रत्येक विकल्प के फायदे और नुकसान का विश्लेषण करें, चयन करना सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, कार्यवाही करना जैसे चुने हुए निर्णय पर अमल भी करना चाहिए। और निर्णय लेने का महत्व ये भी है कि प्रबंधन का ये एक मूल हिस्सा है, समस्याओं का समाधान करने का और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का भी आवश्यकता है। ये संगठनों को स्पष्ट और दिशा प्रदान करता है और जटिलता को कम करता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो सभी संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावित भी करती है। तर्क और मूल्यांकन, मानसिक स्पष्टता, दृढ़ता और विनम्रता, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो आशा करूंगा कि एक सीईओ को डिसीजन लेना कितना जरूरी है और कितना अच्छी तरह से चिंतन मनन करके सीईओ डिसीजन लेता है उस पर कंपनी का सारा कुछ जुड़ा होता है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और फिर मैं यही कहूंगा कि आप अगर एक अच्छा सीईओ बनना चाहते हैं, सीईओ बनकर आप कंपनी को रन करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका डिग्री के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ अनुभवी होना बहुत जरूरी है। छोटे मोटे कंपनियों में भी आप काम करके अपना अनुभव शुरू से जमा कर सकते हैं। और जैसे रतन टाटा की बात करें तो उन्होंने अपना एक साक्षात्कार में ये भी कहा था, तो आज आप देखते हैं कि ये बहुत बड़ी कंपनी है ना, इनके बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज है, छोटे छोटे कंपनीज। तो ऐसे कॉर्पोरेट कंपनियों में जैसे उनको पूछा गया था एक बार कि कैसे आप इतने अच्छे सीईओ बने या कंपनी कैसे रन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने बिजनेस शुरू किया था लेकिन मैं चाहूं तो डायरेक्टली पोस्ट पोजीशन लेके अपना काम शुरू कर सकता था लेकिन पिताजी ने इसके लिए मुझे मना किया था और मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। तो मैंने वर्किंग मतलब एक छोटे नौकर के रूप में काम करते करते करते करते हर वो चीजों को, क्लर्क के रूप में कभी काम किया, कभी नौकरी मजदूर के रूप में काम किया, फिर सीखा उससे, आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते जो है वो चीजें बनती गई। और फिर इससे क्या हुआ कि एक छोटे तबके से लेकर ऊपर तक की जो चीजें हैं वो समझ में आ गई और नीचे वालों का प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आ गया, फिर ऑफिसर्स की क्या प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूटिव्स की क्या प्रॉब्लम है वो समझ में आ गया और उनका समाधान क्या है, और फिर हायर पोजिशन पे सिर्फ डिसीशन ही तो लेना आपको। तो ऊपर में जाना अनुभव से जाते हैं तो वो लंबा समय तक टिकते हैं, और बिना अनुभव के आप जाते हैं तो हो सकता है कि आपको घड़ी घड़ी कंपनी हटा भी सकती है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप नीचे से शुरू करें, आराम से थोड़ा टाइम ले लें, पढ़ाई के बाद 3-4 साल काम करें, उसके बाद आप एक अच्छे पोजीशन पर आ जाएंगे और अच्छे सीईओ बन सकते हैं। तो चलिए आशा करूंगा आपको आज की मेरी बातें आप तक अच्छी लगी हो, जरूर कमेंट करके मैसेज करके बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, करियर के लिए सजाग रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं, सलाम नमस्ते, हमाल नवीसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे? अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: बाप पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना। बाप पुरानी बड़ी सुहानी, फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, व्हेरेवर एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वांट, सो देन इट्स माय चॉइस, सो नाउ इट्स योर चॉइस। आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकता है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप उन्हें कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनीरी आवाज।
1: ओ, रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
1: पुणेरी आवाज
0: ऐकत रहा 107.8 FM
1: आनंदी रहा आणि आनंद
2: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हम रिश्तों को देखते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट की बात में जब रिश्ते सामने आए, तो एक नए अंदाज से हमने देखने का प्रयत्न किया कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि हर रिश्ते में मुझे आपसे कुछ चाहिए, या वो रिश्ता मुझे क्या दे रहा है, व्हाट इज इट दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, नथिंग, दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग। मैं हर बार ये कहती हूँ कि इस रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर पिछली कड़ी को देखें तो कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि रिश्ते से मुझे कुछ नहीं लेना, बल्कि मुझे रिश्ते को क्या देना है, और जब मैं देना शुरू करूंगी तो सबसे पहले वो मुझे ही मिलेगा, यानी मैं खुद ही अपने आप को देने की कैपेबल हूँ। आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके कि ये संभव कैसे होगा। जब रिश्तों में सिचुएशंस आती हैं, तब कई बार ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से छूट रही हैं बातें। और इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। एक नई लहर पर तो आप ले गए हमें, अगर पिछली कड़ी को देखते हैं कि अभी तक ये था कि इस रिश्ते ने मुझे क्या दिया, ये रिश्ता मुझे क्या दे रहा है, या इस पे मुझे बहुत खुशी मिल रही है, आपके साथ होने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जन्नत में हूँ। लेकिन जब देखा, इस नज़र से देखा, स्पिरिचुअलिटी में हमें समझ में आया कि वो सब कुछ जो हो रहा है मेरे साथ, या मुझे अच्छा फील हो रहा है, बुरा भी फील हो रहा है, वो मुझसे होकर गुजर रहा है, मैं क्रिएट कर रही हूँ। सिचुएशन एक लेते हैं, मेरे हस्बैंड आए, ऑफिस से आए, और वो मेरे बारे में कोई भी बात थी, मुझे बुरा भला कहने लग गए। अब हो सकता है वो उनकी पेन, वो जो भी करके आए थे, लेकिन वो जो हर्ट मुझ तक आया, वो मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, कैसे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं।
1: Now you're laughing. See, hurt मुझ तक आया। हर्ट कहाँ से मुझ तक आया? लेट्स बी वेरी क्लियर, मुझ तक क्या आता है?
0: कमेंट आया,
1: वर्ड्स आए। हर्ट मुझ तक नहीं आया, वर्ड्स मुझ तक आए। डेफिनेटली वर्ड्स आए, एक्शन आया,
0: एनर्जी भी तो आई,
1: एनर्जी आई। लेकिन हर्ट किसने क्रिएट किया?
0: मैंने किया।
1: सी, इट्स लाइक इंग्रेडिएंट्स, ठीक है? वही इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई एक बहुत अच्छी डिश भी बना सकता है, और कोई बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ भी कुछ बहुत खास बना नहीं सकता। डिपेंड्स ऑन हाउ गुड द कुक आई एम। तो यस, ये इंग्रेडिएंट्स आए हैं, वर्ड्स आए हैं, एक्शंस भी आए हैं, एनर्जी भी आई है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन एक अच्छा कुक
0: उन्हीं में से कुछ बना देगा। ओह यस, वी कैन मेक अ गुड पकौड़ा।
1: वही इंग्रेडिएंट्स, दैट इज फंडामेंटल, कि वही इंग्रेडिएंट्स से अलग अलग लोग अलग अलग डिश बनाने वाले हैं, राइट? ये याद रखें कि हाँ, अब मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स तो आ गए हैं, लेकिन अब मुझे क्या क्रिएट करना है, उसका पावर फिर भी किसके पास है? मेरे पास है। जब हम दो लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो जो सबसे पहली चीज जो इंटरैक्ट करती है, वो है एनर्जी फील्ड। वर्ड्स बाद में करते हैं, कई बार एनर्जी कुछ और होती है, वर्ड्स तो कुछ और ही निकल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो यू नो, लाइक वी नो दैट एवरीवन कैरीज एन ऑरा, एक एनर्जी फील्ड है। तो सपोज यू एंड मी मीट टू पीपल, दोनों का एक एनर्जी फील्ड है। अब कई बार हम कहते हैं इनके साथ तो मेरी बहुत अच्छी
0: है,
1: और इनके साथ इतना अच्छा नहीं है। सो वॉट इज हैपनिंग, जिनके संपर्क में मैं आई, दे कैरी अ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फील्ड। किसी की एनर्जी फील्ड बहुत प्योर हो सकती है, बहुत पॉजिटिव, किसी की दूसरी क्वालिटी की तरफ भी जा सकती है। जैसे ही मैं इनके कॉन्टेक्ट में आती हूँ, अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो है, तो क्या होगा, इनकी एनर्जी फील्ड मेरे ऊपर ओवर पावर कर देती, एंड देन आई से मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही मैं इनसे मिली तो मेरा मूड भी खराब हो गया, या मुझे भी गुस्सा आ गया, या मैं भी उदास हो गई। दैट्स लाइक सेइंग कि मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इनकी बीमारी को मैंने पकड़ लिया, लेकिन मैंने इनकी बीमारी को एक्चुअली इसलिए पकड़ लिया क्योंकि मैं कमजोर हूँ। बिल्कुल ठीक जो होगा वो बीमारी को कैच नहीं करेगा। हाँ, अभी मैं बीमार नहीं थी, लेकिन मेरा इम्यूनिटी सिस्टम तो वीक था ना, इसलिए उनकी एनर्जी फील्ड ने मेरे ऊपर ओवर पावर किया। जब मैं अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करती हूँ, अपनी इमोशनल हेल्थ पर, जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते, तो जैसे मैं अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करती हूँ, मेरा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता जाता और एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है कि औरों का एनर्जी फील्ड मुझे ओवर पावर नहीं कर पाता। आई एम एबल टू रिमेन इन माय स्टेबिलिटी, मे बी नॉट वेरी पॉजिटिव, बट डेफिनेटली डोंट गो डाउन। So basically, I'm just able to take care of myself.
0: लेकिन अगर हम देखें सिस्टर शिवानी, तब तक मेरा एनर्जी फील ठीक रहता है. अगर रिलेशनशिप में रियली देखते हैं, अगर मेरे सपोज हस्बैंड आए या मेरे फादर आए, जब तक वो पर्सनल नहीं होता, तो वो जब वो होना शुरू होता है देन इट स्टार्ट्स गोइंग इन, और तब मुझे वो दिखना विखना सब बंद हो जाता है. देन ऑल ऑफ माई यू नो सारी जो फैकल्टीज हैं वो काम करनी बंद कर देती है जब वो मेरे साथ पर्सनल मुझ पर अटैक होने लगता है. सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट एक रिश्ते में जब हम देखते हैं कि जब तक उनका किसी और के प्रति नाराजगी थी, किसी और से गुस्सा कर रहे थे, मुझे बुरा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि वो नेगेटिविटी हो रही है, लेकिन आई वॉज एबल टू टेक इट एंड आई वॉज एबल टू हेल्प हिम आउट ऑल्सो कि ठीक है आप कोई बात नहीं, इतना गुस्सा मत करो, पानी पी लो, ये करो. लेकिन जब वो मेरी तरफ टारगेट हुआ और वो मुझे ही पर्सनली हिट करने लगे, वो पुरानी पुरानी बातें जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि उन्होंने याद रखी होंगी, अपने साथ रखी होंगी. सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये मुझे डाइजेस्ट कर पाना इतना आसान नहीं हो पाता. So either I react, and if I don't react, I go into so much of deep hurt.
1: Now, when we say reaction, तो reaction पहले कहाँ होता है? ठीक है ना? आपने जो कहना है वो आप कह रहे हैं. कई बार ये होता है कि मैं चुप रह जाती हूँ, मैं बोलती नहीं, तो मुझे लगता है मैंने react नहीं किया. मैं कहती हूँ मैंने चुप करके सुन लिया, मैंने चुप करके सुन लिया. लेकिन कितनी बार भी चुप करके सुनो, इनका तो चलता ही रहता है, ये बार बार ये सब बोलते रहते हैं. एंड देन वी से हम कब तक फिर ऐसे चुप करके
0: सुनेंगे? एक बार तो मैं चुप रह ली, अगली बार मैं नहीं रहूंगी चुप. कितनी बार ये भी
1: लेकिन हमें अपने आप से ये पूछना होगा, क्या सचमुच में मैं चुप रहे? चुप मींस नो क्रिएटिंग ऑफ नेगेटिविटी. थॉट्स तो आएंगे बट नो क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी, तब हम कह सकते हैं. अभी क्या हो रहा है, हमें रिजल्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हम क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद कई लोग कहते हैं, आप लोगों ने कहा कि दूसरा अगर गुस्सा करे आप चुप रहोगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा. नाउ दे टेक हाफ द फॉर्मूला, टेक द फुल फॉर्मूला.
0: एंड दे से कि चेंज नहीं होता.
1: एंड देन दे से मैं तो चुप रही लेकिन वो चेंज तो हुआ ही नहीं. फंडामेंटल बात, पहली बात, हम चुप रहते हैं उनको चेंज करने के लिए नहीं. अगेन द थॉट इज नॉट कि मैं चुप रहूं ताकि वो चेंज हो जाए. मैं चुप रहूं पहले ताकि मैं चेंज हो जाऊं, मैं प्रोटेक्टेड रहूं. एंड चुप रहना मतलब क्या? यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना कि हाँ वहां से एंगर आ रहा है, वहां से दर्द आ रहा है, लेकिन पहले मुझे अपना ध्यान रखना है. क्योंकि जो रिएक्शन क्रिएट होता है वो यहाँ नहीं क्रिएट होता, पहले यहाँ क्रिएट होता है. जैसे आपने अभी कहा कि इतनी पुरानी बातें कई बार किसी को याद आ जाती हैं, वो कहेंगे पिछली बार भी आपने ये कहा, एक साल पहले आपने ये किया था. ये क्या हो रहा है? यू कैन एक्चुअली मेक आउट कि जो कबर्ड है
0: वो खुल गया,
1: और सारा कुछ जो उसके अंदर स्टफ किया हुआ था वो सारा बाहर निकल रहा है.
0: फिर मैं भी अपना कबर खोल देती हूँ कई बार तो,
1: और सडनली वो जो एक्सचेंज होता है. तो इसका मतलब कि हमने बहुत समय से वो बहुत कुछ सोच कर अपने कबर के अंदर दबा कर बंद रखा होता है. आप देखो कभी हम किसी के घर जाते हैं तो घर बाहर से बहुत सुंदर होता है, सब नीट एंड क्लीन, लेकिन कबर अगर खोलो
0: सब कुछ ऊपर गिरेगा आपके.
1: ऐसे ही कई बार हमारे रिलेशनशिप्स में हो जाता है कि बाहर से तो बहुत साफ दिख रहा है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा बोलना, लेकिन कबर्ड में शायद बहुत सारा ऐसा कुछ रखा है. और जैसे ही ऐसी सिचुएशन आती तो वो कबर्ड एकदम खुल जाता. और जैसे घर का भी कबर्ड होता है, आप जैसे खोलो यू हैव नो कंट्रोल आफ्टर दैट कि वो क्या क्या क्या क्या एक के बाद एक निकल कर गिरता जाएगा. फिर आप उसको रोकने की भी कोशिश करो तो वो रुकता नहीं है. संभाल कब करनी थी कि रखते टाइम ही क्या रख रहे थे और किस तरह से रख रहे थे. इसी तरह जब हम बोलना शुरू करते हैं, इस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमारे मुख से क्या निकल रहा होता है, कई बार बाल में खुद को हैरानी होती है क्या बोला मैंने.
0: वेरी ट्रू. यू नो
1: व्हाट वाज आई सेइंग टू दैट अदर पर्सन, एंड देन इमीडिएटली आई से आई एम सॉरी आई डोंट मीन टू से दैट. अब व्हाट आर वी ट्राइंग टू से कि मेरा एक्चुअली कहने का भाव नहीं था लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गए, इन्होंने ऐसा किया. और उस टाइम हम दर्द में गए होंगे जब वो सिचुएशन हुई होगी, और हमने उस दर्द का जिम्मेवार आपको समझा है, और इसलिए हमने उस बात को पकड़ कर रखा है. और अब आप फिर से जब ट्रिगर करोगे मुझे तो मैं वो सारी बातें बाहर निकालूंगी. तो ये जो रिएक्शंस होते हैं इसमें क्या हो जाता है, सिचुएशन तो इतनी थी लेकिन वो सारी कहीं की कहीं यू नो बढ़ जाती है. तो द नीड ऑफ द आवर इज आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ ताकि सिचुएशन डजंट गो out of control. Lekin how do I protect myself? Ab aapne ek bahut sundar example diya. I don't know whether you realized what you were saying. You said ki agar wo ऑफिस के बारे में गुस्सा कर रहे हैं, इधर उधर के लोगों के बारे में गुस्सा कर रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हम उनका ध्यान रखते हैं, उनको पानी पिलाते हैं. व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट इन पेन. तो बिकॉज आई एम नॉट इन पेन, मैं आपका ध्यान रख सकती हूँ. सी, एंड फंडामेंटल रिश्तों में क्या है कि हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है, कि अगर दूसरा दर्द में चला गया, मुझे उसका ध्यान रखना है. जैसे अगर कोई बीमार हो तो हम उसका ध्यान रखते हैं ना, लेकिन अगर कोई इमोशनली बीमार होता है तब क्या होता है, हम उसकी बीमारी को कैच कर लेते हैं. और जैसे ही हमने उसकी बीमारी को कैच कर लिया, हम बीमार हो गए. और जैसे ही हम बीमार हो गए, हमने उसका ध्यान रखना, हमें तो अपना ही नहीं ध्यान रखना आता उस टाइम, तो आपका ध्यान मैं क्या रखूंगी. और तब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि ये जो वायरस आ रहा है ना मेरी तरफ, ये वायरस आना बंद हो जाए, तब मैं ठीक हो जाऊंगी. बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू हील माई सेल्फ एंड आई डोंट नो हाउ टू हील यू. तो जैसे हमने कहा कि अगर वो कोई और बात पर गुस्सा कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिमिलरली अगर वो मुझे भी कुछ कह रहे हैं, यू नो पर्सनली आई एम गेटिंग अफेक्टेड, लेकिन अगर वो मुझे भी कुछ कह रहे हैं, मेरे बारे में भी कुछ कह रहे हैं, कैन आई गिव माई सेल्फ अ थॉट कि एक्चुअली वो मुझे नहीं, अभी भी वो अपना दर्द ही बाहर निकाल रहे हैं, कारण कुछ और होगा. फ्रस्ट्रेशन उनकी अपनी है, इमोशनल चोट उनकी अपनी है. टॉपिक तो कुछ भी हो सकता है. They can shout about the children, he can shout about me, he can shout. Because when I go into a reactive mode, logic
0: doesn't hold. Yes.
1: You know, sometimes we tell each other, kya bol rahe ho? Ye kya bol rahe ho aap? Kyunki hum expect karte hain ki itna illogical kaise baat kar raha hai ye vyakti. Lekin we have to remember ki anger kab se logical hone laga. Reaction logical kab hota hai? Us samay to hum totally out of कंट्रोल हो जाते हैं. तो जब हमें ये पता है कि इस समय ये व्यक्ति दर्द में है, अंदर से हर्ट है, तो इसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा? रिएक्टिव ही होगा. उस समय उससे लॉजिक एक्सपेक्ट करना, डोंट. उस समय एक्सपेक्ट करना कि वो राइट और रॉन्ग का डिफरेंस समझे, डोंट. तो उस समय तो सिर्फ मुझे किसका ध्यान रखना होगा? अपना ध्यान रखना होगा कि ये मुझे नहीं कह रहे हैं, और अगर कह भी रहे हैं तो ये उनका पर्सपेक्टिव है. मुझे पहले किसका ध्यान रखना है? मुझे अपना ध्यान रखना है कि मुझे हर्ट नहीं होना है, क्योंकि हर्ट अपने आप को मैं करती हूँ, वो नहीं कर रहे. हाँ वो कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं वो इतना कुछ कह रहे हैं. हाँ वो इतना कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप को जो कहना है वो चॉइस किसके पास है?
0: But it goes deep in me, you know, like वो जो वो sentences होते हैं, they stay and then they'll always bombard you, पूरा टाइम आपके कानों में वो गूंजते रहते हैं.
1: तो हमारा नुकसान पहले ज्यादा कौन कर रहा?
0: हाँ हम खुद.
1: yes. हम खुद कर रहे हैं. हम दूसरे को तो ब्लेम कर रहे हैं कि आपने मुझे ऐसा कहा, आपने मुझे ऐसा कहा. हम अपने आप को क्या कहते हैं सारा दिन? उन्होंने अगर एक सेंटेंस कहा भी तो एक बार कहा, हम अपने आप को कितनी बार कहते हैं वो सेंटेंस? उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, कितनी बार कह सकते हैं? 5, 10, 20, 50 बार भी अपने आप को बोल सकते हैं. ज्यादा नुकसान कौन कर रहा? दिस इज कॉल्ड टॉर्चरिंग योरसेल्फ. अपने आप को तकलीफ देना, अपने आप को चोट पहुंचाना, अपने आप को दर्द देना, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन. अपने आप को अब्यूज कर रहे हैं हम इमोशनली. एक है फिजिकल अब्यूज, लेकिन एक है इमोशनल अब्यूज. दूसरे ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जो कहना था, जो बोलना था, वो अपना फेंका बाहर, लेकिन अपना दर्द मैंने क्रिएट किया. एट दैट टाइम डू आई हैव द पावर टू जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ कि अभी भी चॉइस मेरे पास है.
0: आई डोंट हैव अ चॉइस जो है वो लाइन.
1: आई हैव अ चॉइस कि मुझे कैसा फील करना है. लेकिन वो अवेयरनेस तब क्रिएट होगी, वो पॉजिटिव थॉट तब क्रिएट हो पाएगा अगर वो सारा दिन में क्रिएट किया होगा. नहीं तो मुझे सिर्फ उन्हीं की थॉट्स सही लगेंगे. वो कह रहे हैं मैं अच्छी नहीं हूँ, मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ. वो कह रहे हैं कि मैं अपना काम ठीक से नहीं करती, मतलब मैं अपना काम ठीक से नहीं करती. तो इट्स नॉट अबाउट वो मुझसे नफरत करते हैं, इट्स अबाउट मैं अपने आप से करने लग जाती
0: हूँ कि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ? अच्छा, देन आई लास्ट 10 पीपल, यू नो व्हाट ही सेड, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी हूँ?
1: I need a verification certificate.
0: No, but we do it with so many people, you know. The hurt goes so deep and then we'll call 10 people, you know, what she said, what he said. Aur aapko lagta hai kya main aisi hu? क्या मैं ऐसी करती हूँ?
1: देखो ना वो कैसे हैं, वो ऐसे बोलते हैं. आई नीड एन अश्योरेंस फ्रॉम पीपल. व्हाई? बिकॉज आई डोंट नो माई सेल्फ. व्हाई डोंट आई नो माई सेल्फ? बिकॉज आई डोंट हैव अ रिलेशनशिप विद मी. मेरा अपने आप के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है,
0: मैं दूसरों की नजरों से अपने आप को देख रही हूँ एक्चुअली.
1: तो मैं आपकी हर बात को सच मानकर अपने ऊपर वो लेबल लगाना शुरू कर देती हूँ. तो अगर आप मुझे आकर कहते हैं आप बुरे हैं, मैं सच मानती हूँ. अगर आप कहते हैं आप कोई काम के नहीं, आपसे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं सच मानती हूँ. अगर आप आकर कहते हैं आपका कुछ नहीं होगा आगे भी जाकर, मैं सच मानती हूँ.
0: हाँ, इतना हर्ट और डर.
1: तो मैं आपकी हर बात को लेती हूँ, उसको स्वीकार कर लेती हूँ, सच भी मानती जाती हूँ और अपने आप को बार बार वो रिपीट भी करती जाती हूँ. सो हु इज क्रिएटिंग द पेन एंड देन वी से उनकी वजह से दर्द.
0: ओह, आई एम डूइंग सो बैड टू माय सेल्फ.
1: It's to myself. तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, एंड दिस हैज टू बी एक्सपेरिमेंटेड विद, लेट्स से इट हैपेंस टुडे इवनिंग और टुमारो, इमीडिएटली फर्स्ट थॉट, क्योंकि तूफान देखो आता हुआ दिखाई तो देता है. इट्स लाइक
0: अब तो दिखने लग गया, अब तो दिखता है.
1: हाँ, स्टॉर्म दिखाई तो दे रहा है, कोई भी स्टॉर्म ऐसे ही नहीं आ जाता, थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो रहा है, वो दिखाई देता है. जैसे ही आपको स्टॉर्म बिल्डअप दिखाई दे रहा है, तुरंत अपने आप को बोलो ओके रेडी. You have to first take care of yourself. Then we will take care of other people. अभी हमें तुरंत लगता है let me take care of them. उनको चुप करा दो, उनको ठीक करा दो, अपने आप को चुप करा दो. इधर
0: हाँ, कितनी बार हमें लगता है जब वो कोई चिल्ला रहा होता है कि वो सिचुएशन खराब हो जाएगी, ही शुड नॉट शाउट, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए. बट आई थिंक समवेयर जो मेरे अंदर की आवाज है, जो मेरे अंदर जो चल रहा है, और इसमें सचिवानी वो जो 1 hour के बाद 1 minute है,
1: राइट, That makes all the difference.
0: Yes.
1: Because 1 hour के बाद 1 minute stop करके positive thought create करना, मतलब अपने mind को एक practice दे देना positive thinking करने की. हम क्यों कहते हैं हर एक घंटे के बाद 1 minute? क्योंकि हर एक घंटे में हम बहुत सारी situations में, तो हमारा मन यहाँ वहाँ बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहा है. तो it's like a car which is driving in the fourth or the fifth gear, and then suddenly 1 minute. तो हम 1 minute मतलब हम चेक करते हैं कि गाड़ी की ब्रेक कैसे है. अगर वो 1 minute भी वो परिस्थिति और लोगों के बारे में सोचने में चला गया, इसका मतलब आपने ब्रेक लगाई तो थी लेकिन ब्रेक लगी नहीं, दैट मीन्स द कंट्रोल सिस्टम इज नॉट वेरी गुड. इसको प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, गाड़ी की ब्रेक को ठीक करते रहना. अब क्या होगा, जैसे ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं, सडनली stop and a positive thought. Not stop thinking, but stop all those ordinary thoughts and a positive thought. I am a powerful being. ye practice hai sara
0: Actually,
1: din.
0: It gives you a lot of power, you know.
1: Now this is practice jab koi tufaan nahi. This is practice jab koi tufaan nahi chal raha. Ab aaya tufaan. Aaye yahan se log ya koi situation aur kisi ne kuch keh diya. Mujhe practice ho gayi hai. Dekho hum gaadi ki brake kab check karte hain? Jab road par कोई नहीं है, हम फास्ट चलाते चलाते तुरंत ब्रेक करते हैं ताकि हमें पता है कि ब्रेक ठीक चलती है. चेकिंग की हुई है तो जब एक्सीडेंट के टाइम पर पहुंचे तो तुरंत ब्रेक लगाए, बच गए. लेकिन अगर ब्रेक पहले नहीं चेक की हुई है तो फिर उस टाइम तो लगाने की भी कोशिश की तो कहां की कहां गाड़ी पहुंच जाएगी.
0: जिसको ब्रेक लगानी आती है वही लगाएगा, नहीं तो एक्सीलेटर पर पैर दब जाता है. आई रिमेम्बर somebody जो गाड़ी सीख रहे थे और उन्होंने ब्रेक लगानी थी लेकिन गलती से एक्सीलेटर पे लगा और बहुत तेज चली गई.
1: दैट इज अ वेरी गुड वन. तो जब सिचुएशन आती है तो यहाँ स्टॉप करने के बजाय हमारा भी तो एक्सीलेटर ही चल जाता है और नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स. सो दिस प्रैक्टिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अब जब यहाँ से सिचुएशन आती है ना, आई हैव प्रैक्टिस्ड, I am a positive being. I am a powerful being. This only will come if we have practiced many, many times. And agar hamara focus right hai, ki mujhe pehle apna dhyan rakhna hai. This is not being selfish. Kai baar log kehte hai, bahut selfish nahi hai.
0: And why it is important? I think somewhere we really need to know that why it is important that I remain.
1: Kyunki jaise aapne kaha abhi, ki jab wo auron ke baare mein chilla rahe the, तब मैं उनकी मदद कर रही थी. क्यों? क्योंकि तब मैं ठीक थी. इसी तरह अगर वो मेरे बारे में भी शोर मचा रहे होंगे, अगर मैं ठीक होंगे तो मैं क्या कर सकूंगी? उनकी मदद कर सकूंगी.
0: आई कांट बिलीव दैट कि कोई मेरे बारे में इतना नेगेटिव कह रहा है या इतना कहता जा रहा है, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ. बट यस, इफ यू आर सेइंग
1: मदद करना मीन्स क्या करना?
0: उनकी हेल्प करना.
1: किस तरह से उनकी हेल्प? फर्स्ट चीज तो ये होगी कि मैं स्टेबल रहूंगी. क्योंकि जैसे ही मैं स्टेबल रही, नॉट हियर हियर, जैसे ही मैं यहाँ स्टेबल रही, इट्स ओके, इट्स ओके, वो कोई दर्द में है, आई एम नॉट कंज्यूमिंग द पेन, आई एम ओके, वो भी ठीक हो जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जैसे हम अपना ध्यान रखते तो कौन सी एनर्जी वहां फ्लो होगी.
0: एक्चुअली मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा. जहां मैं स्टेबल होगी, जहां उन्होंने देखा कि मैंने रिएक्ट नहीं किया. सी ही विल से 5 sentences और शी विल से 5 sentences. उसके बाद व्हेन ही रियलाइजेस कि इन्होंने तो रिएक्ट ही नहीं किया, द काइंड ऑफ रिएक्शन ही मस्ट बी एक्सपेक्टिंग, ही विल आल्सो टेक अ पॉज.
1: अभी क्या होता है, यहां से सिचुएशन आई, मैं भी अपसेट हुई, फिर मैं ये इनके लिए सिचुएशन बन जाती है, फिर ये अपसेट होते हैं, फिर ये मेरे लिए सिचुएशन बन जाते हैं, एंड द गेम जस्ट गोज ऑन.
0: वही तो मैं कह रही हूँ, उनका क्लोजेट खुला, साथ साथ मेरा भी तो खुलता है उसी वक्त. मेरे पास भी तो उतना लंबा वो बॉक्स होता है.
1: इट नीड्स वन पर्सन. सिर्फ ये है कि कई बार हम कहते हैं व्हाई डू आई हैव टू बी दैट वन पर्सन, दैट्स द क्वेश्चन. कि वो हर टाइम बोलते रहे आई हैव टू बी दैट पर्सन. यस, यू हैव टू बी दैट पर्सन इफ यू लव योरसेल्फ, एंड यू हैव टू बी दैट पर्सन इफ यू लव द अदर पर्सन. क्यों हम क्लेम करते हैं ना, वी लव ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, बट फर्स्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देन यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द अदर पीपल.
0: वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. अगर हम रियलिटी में देखें तो कहीं ना कहीं हम कहां पर खड़े हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है.
1: सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट आई नीड टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. जैसे आपने बहुत बार देखा होगा व्हेन वी ट्रैवल बाय एयर, तो यू नो द सेफ्टी रेगुलेशंस जो बताए जाते हैं सबको, उसमें एक बहुत स्पेसिफिक होता है कि इफ देयर इज अ टर्बुलेंस एंड एयर प्रेशर कम होगा, द ऑक्सीजन मास्क विल फॉल
0: डाउन.
1: एंड वो यू नो हम देखते हैं कि द ऑक्सीजन मास्क जस्ट कम्स डाउन. लेकिन उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है कि ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले अपने को लगाना है. बच्चों का ध्यान या आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका ध्यान बाद में रखना है, पहले अपने ऊपर लगाना है. अब जैसे ही हम ये सुनते हैं विल बी से इजंट दैट बीइंग सेल्फिश, कि पहले ध्यान अपना रखना है. नो, बट इट्स लॉजिकल कि जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे आप दूसरे का ध्यान कैसे रख
0: पाएंगे? आप एक्चुअली खुद तो ब्रेथलेस है और दूसरे को मास्क कैसे लगा पाएंगे?
1: सी इट्स बिकॉज फिजिकली हम उसको बहुत इजीली देख सकते हैं कि अगर आई एम नॉट ब्रीदिंग प्रॉपरली, यू नो आई जस्ट हैव टू क्रिएट दैट सीन इन फ्रंट ऑफ मी कि इफ आई एम नॉट ब्रीदिंग प्रॉपरली आई एम गेटिंग सफोकेटेड, विल आई बी एबल टू पुट द ऑक्सीजन मास्क. मेरा हाथ ही हिल जाएगा, इन द प्रोसेस दोनों का नुकसान हो जाएगा. इसलिए तुरंत सबसे पहले अपना ध्यान रखें. आप कितने औरों का ध्यान रख पाएंगे उसके बाद, यही चीज हमें उस टाइम करनी है कि जैसे ही तूफान आएगा, आता है तूफान, मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क किसको लगाना है? अपने आप को लगाना है, बिकॉज आई कैन कैच द स्टॉर्म. यस, टर्बुलेंस हो रही है, सब आसपास एनर्जी हिल रही है, मुझे अपना ध्यान रखना है. एंड जैसे ही मैं अपना ध्यान रखा, मतलब आई एम एबल टू ब्रीद प्रॉपरली, मैं अंदर सफोकेट नहीं हो रही, फिर मेरे पास मार्जिन है आपका ध्यान रखना. फिर रिलेशनशिप्स कैसे हो जाएंगे? लेट्स क्रिएट दिस सीन. आप अपने सामने एक सीन लेकर आए जब लास्ट आपके साथ किसी के साथ ऐसा झगड़ा हुआ या व्हाटएवर आर्ग्यूमेंट हुई. Rewind that scene and look at yourself responding in another way. Not जो आपने कल respond किया था.
0: बच्चे के साथ ही अगर हम देखते हैं कि बच्चे ने ये कुछ खाना है जिसको हम कह रहे हैं कि नहीं खाना है ये, और हम ये जो नो नो नो करते जाते हैं because we're doing it for that child only. लेकिन वो जहाँ हमने किया कि नहीं, हम क्या कहें फिर, यहाँ खा लो.
1: No, it's not कि आप उसको, अगर आपको लगता है कि something is not good for him, कि आप करने दो. लेकिन you know the energy, I think everyone should be able to understand कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, that is the energy that gets created at that time. It doesn't mean आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, आपको टीवी देखना है आप टीवी देखो. No, we're not saying that. Because बच्चे को right direction में लेकर जाना, ये भी हमारे
0: actually हम एक बार firm हो जाए ना कि नहीं खाना है, लेकिन हम उसके साथ क्रिएट जो है, हम एक्चुअली गुस्सा भी हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, 5 चीजें और साथ में जोड़ते हैं. तुम हमेशा यही कहते हो, तुम हर बार यही करते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम वो नहीं करना चाहिए, उसके साथ हम 4-5 चीजें और जोड़ देते हैं.
1: तो एनर्जी क्या हो जाती है उस टाइम एक, क्योंकि हर सीन की एक एनर्जी होती है. बिकॉज वी सेड दिस इज ड्रामा, we are actors and there is an energy flow. तो एक होता है dialogue, लेकिन एक होता है energy of the scene. तो dialogue तो हमें जो हमें उस scene के लिए right लगता कि no you have to study or you don't have to go down to play or whatever. लेकिन energy turbulence की जरूरत तो नहीं है ना हर scene के अंदर, क्योंकि scene तो हर थोड़ी देर के बाद scene आने वाली है.
0: अच्छा, और वो तो करेगा ही. हम क्या कहते हैं कि वो फिर हमारे साथ नाराज हो जाता है या वो हमारे साथ गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो तो करेगा ही, वो उसका पर्सपेक्टिव.
1: लेकिन उसका वो पर्सपेक्टिव भी चेंज करने के इंस्ट्रूमेंट कौन बन सकता है?

0: आत्मा को दर्द से निकाल कर एम्पावर करना, ये किसकी जिम्मेवारी है?
1: या तो हम उसे बिगाड़ देते हैं या हम उसको दर्द में ले जाते हैं. वेरी ट्रू.
0: तो अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, चलो ठीक है, बट मैं अगर आपके ऊपर इतना जोर जोर से चलाए तो आप तो और दर्द में चले जाएंगे. फिर आप भी रिएक्ट करें, फिर मैं भी करूँ. सो व्हाट इज हैपनिंग, बोथ ऑफ अस गोइंग इन पेन. तो माय फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक केयर ऑफ माई सेल्फ हियर एंड टेक केयर ऑफ यू फर्स्ट हियर. मेरी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड रिलेशनशिप टू एम्पावर द सोल. आप आत्मा को एम्पावर कर दो, वो राइट डिसीजंस तो अपने आप ही ले लेंगे, अपने आप ले लेंगे, या एटलीस्ट वो सक्षम होंगे हमारी बात सुनकर उसको यू नो फॉलो करने के लिए. लेकिन अगर वो ऐसे डिप्लीट होते जाते हैं तब उनको हमारी कोई भी बात कैसे अच्छी लगेगी?
1: एक्चुअली यही हो रहा था, हमें पता भी तो नहीं चल रहा था कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं. तो वेरी ट्रू सिस्टर शिवानी, जिस तरह से आज हमारे सामने बात आई है, खासकर जब भी कोई सिचुएशन आती है. लेकिन अभी कुछ ऐसी भी बातें हैं रिश्तों में जहाँ सिचुएशंस नहीं है, जहाँ सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी एक वैक्यूम, एक खालीपन, ऐसा लगता है कि दिस नो कनेक्टिविटी बनती नहीं है हमारी, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है. सो वो क्या है, क्या उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है? हम एक्सप्लोर करते रहेंगे आने वाली कड़ियों में. लेकिन आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. हो सकता है कोई बात आपके मन में हो आज के इस एपिसोड से जुड़ी हुई, या अदरवाइज जो हम सीरीज कर रहे हैं, या जीवन से जुड़ी हुई, आपका हम स्वागत करते हैं. आपसे हर बार की तरह यही कहना चाहेंगे कि पूरी श्रृंखला, पूरा प्रोग्राम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी एक ऐसा मंच है जो आप ही के लिए है. हम आप साथ मिलकर ही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जिंदगी को किस नजरिए से देखना है. तो आप हमें फोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 09993446 09873666555 09997445. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org.

अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें हम एक्सप्लोर करेंगे, रिश्ते को नए नजरिए से देखेंगे। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

पुणे की आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद रामा कुमारी में आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप साथ साथ चल रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर याद हो पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो गुजर गया, जो बीत गया, उसे छोड़ना जरूरी है अपनी हीलिंग के लिए, अपनी खुशी के लिए, और माफ करना जरूरी है। जिस दिन मैं माफ करना सीख जाऊंगी, क्योंकि जब हमने बात की थी तो समझ में आया था कि हम क्यों नहीं माफ करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन अपने आप को कितना दर्द दे रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये समझे तो माफ करना आसान हुआ। आगे बढ़ते हैं, मुझे किसी से माफी मांगनी है तब क्या करो। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं रामा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, माफ करना तो मेरे हाथ में था, मैंने कर दिया, लेकिन मुझे किसी से माफी मांगनी है। अब जब इतने अवेयर हो गए, इतने सजग हो गए, लगा कि मुझसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं गलत था या थी, और बहुत वक्त भी गुजर गया है, लेकिन वो साथ साथ चल रहा है, तब क्या करें?
1: तो बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट रेज किया है कि जब हम माफी नहीं मांगते तो उस बोझ को लेकर के घूम रहे, और वो बोझ हमें तकलीफ देता है, शरीर पर भी इफेक्ट होती है, मन पर भी इफेक्ट होती है। अब प्रश्न यह है कि अगर नहीं मांग सके माफी, तो ये समझना चाहिए कि अगर मेरे पर बोझ है, रियलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है, फिर भी मैं माफी नहीं मांग सकता हूं, तो ये मेरा ईगो है। बस ये समझ ले कि ये मेरा अहंकार है कि मैं माफी नहीं मांग पा रहा हूं, और उस अहंकार को मुझे खत्म कर देना।
0: Why do I feel guilty? See, उस वक्त जब मैंने किया था मैं सही थी, और उसके बाद क्योंकि मैं अपने आप को गलत नहीं मानना चाहती, मैं अपने आप को बहुत सारे वो देती जाती हूँ लॉजिक कि मैंने इसलिए किया था, ये हुआ, इसलिए हुआ था, इसलिए मैंने ऐसे बिहेव किया था, इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया था, उस वक्त रिएक्ट करना जरूरी था या ये जरूरी था ऐसा। लेकिन अब जब अवेयर हो रहे हैं तो समझ में भी आ रहा है कि यही वो चीज है शायद कि जो मैंने क्रिएट की, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। अब ये गिल्ट है, कैसे जाऊं मैं, नहीं जा पा रहे।
2: देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। कुछ एक परिस्थितियां ऐसी होती है जहां मुझे उस समय लगता है कि जो मैंने किया वो सही है। इनफैक्ट हमेशा ही हमें लगता है कि जो हमने किया वो सही है, लेकिन थोड़े समय के बाद हमें लगता कि नहीं, मेरा वो कर्म, मेरा वो एक्शन सही नहीं था। दैट इज वन प्लेस वेर आई कुड फील गिल्टी एंड मैं सॉरी कहता हूँ। लेकिन कुछ एक सिचुएशंस ऐसी भी होती है जहां मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। ओके, अभी भी, उस दिन भी, आज भी, और शायद हमेशा मेरा वो बहुत एक्यूरेट बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, जो मैंने किया वो सही था। लेकिन कई बार मेरा कुछ सही भी उस बात की वजह से किसी और के अंदर दर्द चल रहा है। भले हमें ये समझ में आ रहा है कि उनका हर्ट वो खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वन थिंग आई अंडरस्टूड इज दैट आई एम नॉट क्रिएटिंग समबडी एल्सेस हर्ट, नो वन कैन हर्ट मी, आई कांट हर्ट समवन, लेकिन समवन कैन यूज व्हाट आई हैव डन टू हर्ट देमसेल्व्स। तो भी कहीं ना कहीं मेरा कर्म स्टिम्युलस तो बना ना, वो कर्म मेरे लिए सही था। सपोज मैंने आपको कुछ कह दिया, ऐसा मेरे हिसाब से मैंने सही कहा, लेकिन आप उस बात को लेकर अगर हर्ट हो रहे हैं, तो जितनी देर आप हर्ट हैं, वो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी किसकी तरह ट्रैवल होगी, मेरी तरफ ट्रैवल होगी। अब मैं सही हूं, फिर भी क्या मैं सॉरी कह सकती हूँ? और क्या मुझे सॉरी कहना चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सही हूँ, जो मैंने कहा वो सही है, क्या मुझे सॉरी कहना चाहिए? दिस इज वेरी
0: इम्पोर्टेंट। बिकॉज वी से कि मैं तो सही हूँ।
2: अब क्या होगा अगर हम नहीं सॉरी कहते हैं? एंड सिर्फ कहने की बात नहीं है, जो एनर्जी हम एक्सचेंज करते हैं उनसे कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी हमें मिलती जाएगी, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम गलत थे, हम सोचते हैं कि हम सही हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, और ये सॉरी अपॉलोजी इसीलिए अटक जाती है बीच में बात, कौन सही है कौन गलत है, सॉरी कहूँ या नहीं कहूँ, सॉरी कहूँ तो वो ऊपर से कैसे रिएक्ट करेंगे, सॉरी कहूँ तो क्या वो मुझे कमजोर तो नहीं फील करेंगे, सॉरी कहूँ तो क्या वो फॉरगिव करेंगे। कईयों के अंदर ये बहुत डर है, चलो मैं तो सॉरी कह दूँ, लेकिन क्या वो फॉरगिव करेंगे? मैं उन्हें सॉरी कहने जाऊं, वो वापस मुझसे कैसे बात करेंगे? तो ये सारे डाउट्स जब मन में चलते हैं, देन वी स्टॉप आवरसेल्फ फ्रॉम फिनिशिंग दैट नेगेटिव कार्मिक अकाउंट। ये एक नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज है, ब्लॉकेज है जिसको हमें स्मूथ करना है. नीड टू थिंक अबाउट दिस. बट
0: अगर ये नहीं हुआ, अगर सॉरी नहीं हुआ, चाहे मैं गलत हूं या नहीं हूं, ये रियलाइजेशन है मुझे दोनों बातों में, अगर मैं सही हूं तब तो मैं कई बार कहता हूं कि सवाल ही नहीं उठता कि मैं सॉरी कहूंगा. लेकिन अगर मैं गलत हूं तब भी मैं सॉरी नहीं कह पा रहा, इसी कारण से कि वो मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे, या उनका अपर हैंड हो जाएगा, यू नो, वो मुझे दबा पाएंगे. तो ये जो गिल्ट है या ये जो है, ये मेरे को क्या तंग कर रहा है?
1: कि ये बात भी जो शिवानी बहन ने कही वो अच्छे से समझनी चाहिए कि चाहे मैं ये समझ रहा हूं कि मैं सही हूं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हुआ है, तो मैं समझ लू उनको हर्ट तो हुआ, मैं सही सिर्फ मेरे नजरिए से था, उसके नजरिए से तो मैं गलत था. तो अगर मैं वहां पर I put my foot in his shoes and then see कि भी कहां हर्ट हो रहा है, तब मुझे रियलाइज होगा कि भी हर्ट तो हो रहा है, और मुझे माफी मांगने से अगर वो हर्ट दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. और दूसरी बात कि अगर मैं नहीं मांगता हूं तो उनसे नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे कंटिन्यूअस मिल रहे हैं, वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, और इससे भी मुझे हार्म होगी अल्टीमेटली, क्योंकि वो ऑरा मेरे तक पहुंचता है और मुझे उसका नुकसान होगा, इसलिए भी मुझे माफी मांगनी है. और ये छोटी सी बात है वास्तव में तो.
0: लेकिन मैं गलत ही नहीं.
2: जब आपको अपोलोजाइज करना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कर दो, ये नहीं है, दिस इज नो चीटिंग ईच अदर. मैं किस बात के लिए अपोलोजाइज कर रही हूँ? मैं अपोलोजाइज जो मैंने किया उसके लिए नहीं कर रही हूँ. मैं अपोलोजाइज इस बात के लिए कर रही हूँ कि आप हर्ट हैं. टू थिंग्स आर डिफरेंट. आप दर्द में हैं, उस बात के लिए मैं आपको सॉरी कहती हूँ. नॉट जो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ किया, ये कांच टूट गया इतना बड़ा, ये टेबल आपके लिए बहुत वैल्यूएबल थी लेकिन मेरी गलती से टूटी, आई डिडंट डू इट डेलिबरेटली, सो बट यू आर नाउ सो मच इन पेन. सो आई अंडरस्टैंड दिस कि मेरे किसी एक्शन ने आपके अंदर ये दर्द क्रिएट किया. तो आई एम सॉरी नॉट फॉर ब्रेकिंग द टेबल, बट आई एम सॉरी फॉर हैविंग बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर यू टू एक्सपीरियंस सो मच पेन. वो तो सत्य है ना, वो तो झूठ नहीं है ना. हाँ, ये ठीक है, ये मेरी गलती नहीं थी, ये हो गया, या मेरे को लगता है ये सही था, वट एवर, लेकिन आप दर्द में है, इज दिस अ फैक्ट. सो आई एम सॉरी फॉर यू हैविंग टू गो थ्रू सो मच पेन. दिस कैन बी से सॉरी टू इच अदर. भले आई वॉज राइट, बट यू हैव इन, यू आर इन पेन, आई एम सॉरी फॉर दैट.
0: लेकिन वहां से फिर रिजल्ट नहीं आता है.
1: नहीं, रिजल्ट आएगा. देखो, कभी करके देखिए, जब हम सॉरी कहते हैं तब आप देखेंगे कि जो वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे. सबसे पहले तो कई बार ये होता है, सामने वाले व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं आपकी तो गलती थी नहीं, तो सारी चीज रिजोल्व हो गई, आप ही उस बोझ को लेकर के घूम रहे थे. दूसरी बात कि वो व्यक्ति रोने लगेगा, तो भी हुआ कि उन्होंने माफ कर दिया, हो सकता है कि अभी हंसने भी लगे. और चलो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, आप कहेंगे कि भाई उसने माफ नहीं किया, लेकिन आपने तो माफी मांग ली, आप तो हल्के हो गए, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है.
0: अगर नहीं मांगी माफी, अगर गिल्ट में हूं मैं या ये सब कुछ चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, व्हाई आई नीड टू डू दिस,
1: तो अंदर तो आपके वो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं ना. सूक्ष्म में वो इफेक्ट हो रही है, जिससे टॉक्सिक इमोशंस का काबल उससे थोड़ी कम, परंतु वो इफेक्ट हो रही है, और वो इफेक्ट सारे बॉडी ऑर्गन्स पर हो सकती है, क्योंकि अंदर में आप बोझ को लेकर के घूम रहे हैं, खुशी का अनुभव नहीं करेंगे.
0: डॉक्टर, अभी आपने कहा कि आप उस कर्म के लिए सॉरी नहीं हो अगर, लेकिन उस इमोशन को आपके अंदर क्रिएट करने का जो इंस्ट्रूमेंट आप बने हैं, उसके लिए सॉरी हो सकते हैं. तो जो, जैसे मैं माफी मांग रही हूँ, वो तो उम्मीद करता है कि आप उस कर्म के लिए आई शुड फील सॉरी.
2: लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग. अपने आप को थोड़े समय पहले देखते हैं, जब हमें ये नई समझ में आया था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, तब हम ये फील करते थे कि उन्होंने जो कहा उससे मेरा हर्ट क्रिएट हुआ. नेक्स्ट प्रोग्रामिंग ये हुआ करती थी कि वो सॉरी कहेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा. होता था ना, इसी प्रोग्रामिंग के साथ हम चल रहे थे कि मैं बुरा भी तब फील करता हूँ जब कोई कुछ कहता है, अच्छा भी तब फील करता हूँ जब कोई उसको चेंज करता है. दैट्स द पावर ऑफ सॉरी. पीपल आर एक्चुअली वेटिंग टू हियर दैट सॉरी. उनकी कोडिंग अंदर ये हुई हुई है कि जैसे ही ये सॉरी कहेंगे आई विल फील फाइन. ये बहुत डेफिनेट है, डेफिनेट कोडिंग हमारी हुई हुई है. वो ये नहीं रियलाइज कर रहे कि पहले उनके सेंटेंस को मैंने लिया हर्ट क्रिएट करने के लिए, अब उनके सॉरी को मैं लेता हूँ अपने आप को बेटर फील कराने के लिए. सॉरी इज वर्क्स एज अ स्टिम्युलेंट, प्रोवाइडेड यू आर नॉट जस्ट सेइंग इट ऊपर से, यू रियली फीलिंग इट. कई बार आप कुछ लोगों के साथ देखेंगे, आप उनको सॉरी कहें, वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं लगता आपने रियलाइज किया है. आप कहेंगे रियली आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड. नो आई डोंट थिंक, मेरे को लगता है आप ऊपर ऊपर से कह रहे हैं. यू नो व्हाई? अभी उनका दर्द नहीं गया. जब तक उनका दर्द नहीं जाएगा आपका सॉरी सच्चा नहीं था. आप चार बार, पांच बार, दो महीने के बाद फिर से, छह महीने के बाद फिर से कहो, द डे दे आर हील्ड दे विल से नाउ यू हैव रियलाइज्ड बिकॉज नाउ आई एम हील्ड.
0: अच्छा, इट डजंट मैटर कि सामने वाला
2: शायद छह महीने पहले ही रियलाइज कर चुका था कि वो सॉरी है, लेकिन मेरी हीलिंग नम जब तक नहीं होती ना, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है. इतना डीप मेरी प्रोग्रामिंग ये है कि जिस दिन वो रियलाइज कर लेगा मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, बिकॉज मैंने ये कभी नहीं समझा था कि मेरा दर्द मैं खुद ठीक करती हूँ. वी कीप ऑन, देयर आर टाइम्स व्हेन वी कीप ऑन डिमांडिंग सॉरीज फ्रॉम पीपल. सॉरी बोलो, सॉरी बोलो फॉर व्हाट यू हैव डन. व्हाई? आप सॉरी बोलेंगे आई विल फील बेटर. दिस इज अ वेरी सटल वे कि जिससे हम अपने आप को ठीक कर पाते हैं. अब वो अपने को कैसे ठीक कर रहे हैं, वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड. वी नीड टू अंडरस्टैंड हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने को भी फ्री करने में और सामने वाले को भी फ्री करने में.
0: नो, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि हम वेट करते हैं. हम भी तो वेट कर रहे होते हैं.
2: हम तो वेट
0: कि वो सॉरी कहे.
2: Yes.
0: और एक्चुअली हम कई बार वेट करते हैं कि उसको रियलाइजेशन भी तो हो.
2: हाँ, तो रियलाइजेशन कब? जिस दिन मेरा दर्द खत्म हो गया उस दिन आपको रियलाइजेशन हो गया. दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज गोइंग. हाउ डू आई कम टू नो कि आपके अंदर रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा मुझे?
0: सी, वंस यू रियलाइज, अगेन सॉरी कोई ऐसे नहीं कह देता. मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया, तो देन आई विल कम एंड हैव अ टॉक विद यू मे बी कि व्हाई आई डिड दिस, और या ऐसे मैंने किया था तो ये सही नहीं था. आई शुडंट हैव डन दिस.
2: नेक्स्ट मंथ यू माइट डू इट अगेन. आपने रियलाइज किया? नहीं. आप फील कर रहे हो कि हाँ आई एम सॉरी. नेक्स्ट मंथ यू माइट रिपीट द सेम थिंग एब्सोल्युटली ऑल ओवर अगेन, क्योंकि आपके हिसाब से वो गलत था ही नहीं. वो आपके हिसाब से गलत नहीं था, या वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, वो आपकी संस्कार बना हुआ है. रियलाइजेशन मीन्स स्टॉप, चेक, चेंज, गॉन. कितनी चीजें हम इतनी जल्दी चेंज कर पाते हैं? नहीं, हम रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं किया इट्स नॉट अ रियलाइजेशन. लेकिन आपका वो एक सॉरी मुझे हेल्प कर देता है टू फ्री माई सेल्फ ऑफ अ लॉट ऑफ पेन.
0: एंड इज इट देन यूजुअली वी आर सेइंग सॉरी जस्ट बिकॉज, सॉरी फॉर क्रिएटिंग हर्ट टू यू, नॉट बिकॉज आई एम रॉन्ग?
2: या मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड फील, बट वी आर नॉट अवेयर कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. आप एक बच्चे को देखो, बच्चे ने कोई गलती कर दी, मदर गुस्सा होकर बैठ गई या मदर रोने लग गई, बच्चे अपने गलती के लिए नहीं सॉरी कह रहा होता. बच्चा अपनी मदर को ऐसे देख रहा होता है ना कि मेरी मदर, मेरी ये बात की वजह से मेरी मदर रो रही है. वो अपनी मदर को चुप कराना चाहता है. बच्चा कई बार रो रहा होता है, मदर चाहती है कि बच्चा चुप कर जाए. मदर बच्चे को कहती है, बच्चे आई एम सॉरी मैंने तुमको ऐसा. व्हाई? शी वॉन्ट्स दैट द चाइल्ड शुड गेट हील्ड. द चाइल्ड वॉन्ट्स दैट द मदर शुड गेट हील्ड. सो वॉट इज इट, वॉट आर वी डूइंग विद ईच अदर? हम एक दूसरे को दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं. कर्म के बारे में तो एक्चुअली हम बहुत ज्यादा सोच भी नहीं रहे होते.
0: लेकिन अगली बार हमारे सामने वो कर्म आता है, हम दो बार सोचते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू हर्ट माई मॉम.
2: या बिकॉज इट्स गोइंग टू हर्ट माई मॉम, नॉट बिकॉज द कर्म इज राइट और रॉन्ग. सी, दैट इज द थिंग. आप अपने बच्चे को कुछ एक चीज, उसको सपोज आपने अपने बच्चे को कहा कि स्कूल बंक करके नहीं जाना चाहिए, ही माइट स्टिल लाइक दैट थिंग. उसको अभी भी अच्छा लग रहा है वो आइडिया, लेकिन इट माइट हर्ट माई मॉम. दैट इज वाई आई विल नॉट डू इट. इक्वेशन इज वेरी डिफरेंट. आई हैव नॉट रियलाइज दैट द एक्शन इज रॉन्ग. मेरा उस पर नहीं है रियलाइजेशन. अभी मेरे को सिर्फ टेम्पररी, क्योंकि कुछ एक दिन पहले ही ये हुआ था, थोड़े दिन के बाद जब मुझे वो हर्ट वाला सीन भूल जाएगा, आई विल स्टिल थिंक ऑफ बंकिंग स्कूल एंड गोइंग. तो मेरी रियलाइजेशन एक्शन के बारे में नहीं, मेरी रियलाइजेशन कि आपको दर्द हुआ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए सॉरी. दो बातों में काफी फर्क है.
1: पहली बात अगर हो जाए, मुझे रियलाइज हो कि मेरी एक्शन गलत थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, तो सुपीरियर है. तो सदा के लिए खत्म हो जाएगा.
2: देन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ना. देन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन हम जो रो देते हैं एक दूसरे को इमोशनली, गिल्ट में फील, बच्चे ने गलती की, पेरेंट्स क्या करते हैं, बात करना बंद कर देंगे. दिस इज अ वे ऑफ पनिशिंग द चाइल्ड कि मैं नहीं बात करूंगा. बच्चे के लिए पेरेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, स्पेशली जब बहुत छोटे, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति मेरे से नाराज है. वो गोल गोल गोल गोल घूमता रहेगा सॉरी सॉरी सॉरी कहते हुए. व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू टीच हिम अ लेसन, बट दिस इज नॉट द वे. वी आर टीचिंग हिम द रॉन्ग इक्वेशंस इन लाइफ. एक्चुअली उसको उस एक्शन के प्रति लेके जाने की बजाय उस कर्म में क्या गलती हुई, उसका क्या रीजन था, वी जस्ट शोड हिम आई एम हर्ट एंड यू हैव टू से सॉरी. आपका सॉरी बोलने से आई विल बिकम बेटर एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इवन आफ्टर वी ग्रो अप. द इक्वेशंस जस्ट गो ऑन टू बीइंग द सेम थिंग. हम एक दूसरे को हर्ट देखते हैं, फटाफट सॉरी बोलते हैं ताकि आपका मूड ठीक हो जाए. भले मैं गलत था या नहीं था, मैं सॉरी बोल दिया ताकि आप ठीक हो जाओ, मतलब आप अपसेट नहीं हो इतना. That's all that we're doing. But we need to understand कि this does make a difference to other people. And most important, मेरे लिए बहुत useful है वो, provided I'm feeling it from inside. Feel करके करे. आजकल कई बार हम सिर्फ ऐसे ही sorry बोल देते हैं ताकि आप ठीक हो जाओ. Then it won't work.
0: नहीं तो feel करके हम क्या कर्म पे काम करेंगे फिर भी?
2: दोनों बातें हैं ना. अगर कर्म आपको लगा कि गलत है तो आप कर्म पे काम करेंगे, या ये आपको लगा कि कौन सा कर्म से किसको दर्द क्रिएट होता है तो आप उस बात पर काम करेंगे. लेकिन कुछ तो काम करेंगे ना, कहीं तो अटेंशन रखकर अपने अंदर परिवर्तन लेंगे. सॉरी को सिर्फ एक शब्द की तरह यूज करके रिश्तों में एक्सप्लॉइट तो नहीं करेंगे ना. यू विल रियली वर्क ऑन व्हाट यू आर सेइंग टू ईच अदर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कई भाई बहने ऐसे मिलते हैं, दे आर गिल्टी कि उन्होंने कोई अपने पेरेंट के साथ या कोई भाई बहन के साथ कुछ ऐसा किया था एंड देव लेफ्ट द बॉडी. कहते कुछ ऐसा करवा दो जिससे हम एक बार उनको सॉरी कह सके. यू नो इतना गिल्ट दे कैन कैरी एंड उससे उनकी पूरी प्रेजेंट एंड फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है जस्ट बिकॉज टाइम रहते हमने वो सॉरी नहीं कहा था. वो गिल्ट इतना बर्डन आपके साथ चल सकता है. सो इट कैन बी वेरी डैमेजिंग टू द एंटायर पर्सनैलिटी.
0: वही पूछा जा रहा है कि जो अब ये जो सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, चाहे वो गिल्ट की है, हर्ट की है, ये अगर हम कैरी करते जाते हैं, अगर लेट को नहीं किया है, सो वेयर डज इट लीड फिजिकली आल्सो?
1: फिजिकली आल्सो इट विल हैव द सिमिलर. जो भी ऑर्गन वीक है उस पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी, या स्पेसिफिक जो ऑर्गन पर उसकी इफेक्ट होनी है वो स्पेसिफिक ऑर्गन पर भी होगी. जैसे गिल्ट की जो फीलिंग है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर हो सकती है. इवन नो गिल्ट कैन अफेक्ट योर एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल, क्योंकि उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो उस प्रकार की बीमारियां आपको होगी.
0: सप्रेस्ड फीलिंग्स या गिल्ट जो है, ये एक जो हम चुप हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि, और ये जो एक डर कि मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, तब हम शायद चुप रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं. उसको उसको कैसे ओवरकम करें?
1: लेकिन हमने तो बोल दिया, एटलीस्ट हम तो हल्के हो गए. अगर वो व्यक्ति माफ नहीं करता है फिर भी भले हमें नेगेटिव इफेक्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आएगी, परंतु हमारी ओर से तो हम हल्के हो गए. एटलीस्ट 50% बेनिफिट हुआ. अब 50% उस व्यक्ति की गलती है, नहीं कर रहा है बोले फिर से भी कहो.
0: पश्चाताप की जो बात है सच बात, पश्चाताप में जो रोना और पश्चाताप में जो हम अपने आप को वन गिल्ट में रख के बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, वो बहुत डैमेजिंग कई बार होता है, क्योंकि उसमें हम बहुत अपना लो सेल्फ एस्टीम में भी जाते हैं.
2: दो बार गलती हो रही है ना. एक बार जब मैंने वो किया तब गलत एनर्जी क्रिएट की. सपोज मैंने आपको गुस्सा कर दिया, बहुत जोर से अभी आपको कुछ कह दिया, तो अभी गलती हो गई. अब उसके बारे में मैं 4 दिन गिल्ट में रहूं, हाँ मैंने इस तरह से बात कर दी, मैंने उस तरह से बात कर दी, तो वो गलती एक बार नहीं हुई, कितनी बार हो गई. सो गिल्ट इज वेरी वेरी डैमेजिंग. आज हम बहुत सारी बातों की वजह से गिल्ट में हैं. गिल्ट इज नॉट द सोल्यूशन. पश्चाताप इज नॉट द सोल्यूशन. ट्रांसफॉर्मेशन इज द सोल्यूशन. हाँ मैंने पिछली बार ऐसे बात की, ये गलत थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन. मेजोरिटी टाइम वी सी कि सपोज मैंने आज आपसे गुस्सा किया, जोर से किया, कई दिनों तक मैं गिल्ट में भी रही, बुरा भी लगा, लेकिन अगली बार मेरे मुख से फिर उस तरह से बात निकल जाती है. क्यों? क्योंकि जितनी देर मैं पश्चाताप में भी रही, मैं एनर्जी कौन सी क्रिएट कर रही थी? नेगेटिव. तो आत्मा की शक्ति और भी कम होती जा रही थी. जैसे स्टिम्यूलस फिर से आया, मुझे फिर गुस्सा आ गया, फिर मैं अगले कुछ दिन फिर पश्चाताप में रही. आई सीन सो मेनी पीपल जो कहते हैं, जैसे हस्बैंड का वाइफ पर हाथ उठ जाता है, कहते हम नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। बहन आपको नहीं पता जब हम करते हैं हमें इतना बुरा लगता है, हम पक्का करते हैं हम नहीं, फिर अगली बार फिर वही होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। नेक्स्ट टाइम वो नहीं हो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ताकत चाहिए। ये सारी नेगेटिव थिंकिंग तो मेरी ताकत को और भी कम कर देती है। मेरी गलती बार बार रिपीट हो रही है। पश्चाताप मीन्स जो गलती मैंने की उसको मैंने अब रिपीट नहीं करना है, फुल स्टॉप। उसके बारे में सोचना सोचना सोचना इज एक्चुअली उस गलती को बार बार रिपीट करना। जितनी बार मैं उसके बारे में सोचूंगी, मैं वही नेगेटिव एनर्जी खुद को भी और आपको भी भेज रही हूँ। सो इट्स जस्ट वन थॉट कि आई विल नॉट डू इट अगेन, चेंज माय थिंकिंग, फिर आप स्टिमुलस चाहे कुछ भी दो।
0: बट वी ऑलवेज से विल नॉट डू इट अगेन।
2: हाँ,
0: नॉट टू इवन अदर्स,
2: नॉट टू योरसेल्फ, टू योरसेल्फ।
0: अपने आप को भी कहते हैं कि हम नहीं करेंगे।
1: पश्चाताप करना अच्छा है लेकिन एक ही बार करो और टोटल चेंज।
2: मतलब इट हैज टू फिनिश।
0: वो कैसे करें? नहीं हो पाता ना,
2: क्योंकि हमने अपने थॉट को नहीं चेंज किया।
0: क्योंकि वही बात है ना कि कर्म को चेंज करना तो चाहा हमने कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम गंदा नहीं बोलेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, हो नहीं पाता।
2: कहीं ना कहीं हम अभी तक जस्टिफाइड है अपने उस कर्म के लिए। सी दैट्स व्हाई इट्स कमिंग डाउन अगेन टू द सेम थिंग। मैं चाहती हूँ ये रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन उस समय जब मुझे गुस्सा आया था मेरे अंदर एक और थॉट है जो कहता है लेकिन मुझे गुस्सा तो इसलिए आया था ना क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था। तो एक्चुअली तो मेरा गुस्सा जस्टिफाइड था। तो मैंने अपने बिलीफ को नहीं बदला, थॉट नहीं बदली, मैंने सिर्फ अपने आप को कहा अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन बिलीफ सिस्टम, थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन नहीं बदला, वो एक्शन में फिर से आ जाएगा।
1: स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन नहीं किया।
2: बिलीफ सिस्टम ये कि उन्होंने भले कहा, गुस्सा मैंने किया था। आई हैव अ चॉइस कि आई कैन चेंज माय रिस्पांस टू एनी सिचुएशन।
0: ये गुस्सा करना मेरे लिए अच्छा नहीं है।
2: नहीं, बट माय चॉइस, माय चॉइस ऑफ क्रिएटिंग द रिस्पांस इज टोटली इन माय हैंड, इंडिपेंडेंट ऑफ द सिचुएशन। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मेरा रिस्पांस मैं क्रिएट करती हूँ। ये प्रोग्रामिंग मुझे बार बार अगर मैं करूँ, नेक्स्ट टाइम मेरा रिस्पांस मेरे कंट्रोल में होगा। तब मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ ये बात अब फिर से नहीं होगी।
1: उन्होंने गलती की लेकिन मैं गुस्सा करके दूसरी गलती कर रहा हूँ ना,
0: क्योंकि मैं क्रिएट कर रहा हूँ।
1: हाँ, मैंने क्रिएट भी किया और दूसरी गलती, एटलीस्ट मुझे तो गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए भी मुझे गुस्सा नहीं करना, इसलिए मैं सही बात को चूज करूँ।
0: डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि हमने खुद ये रिस्पॉन्स क्रिएट किया। अगर हम चाहते हैं तो उस बिलीफ सिस्टम पर जाना पड़ेगा। और कौन सी ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे को आगे बढ़ने में रोकती हैं?
1: ये वास्तव में तो जो भी आज हम है, हम सब में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। उन सब को अगर हम देखें तो उसके रूट में कुछ बिलीफ सिस्टम होती, एक भी हो सकती है, शायद दो तीन भी हो सकती है। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अगर सभी करें तो हम टोटली रूट को अच्छे से समझ सकते हैं कि एक झाड़ का चित्र बनाए और फिर आज हमारे में जो भी चीजें हैं कि कुछ अच्छाई है, जैसे भी मेरे में नम्रता है, एकाग्रता अच्छी है, मैं हार्डवर्किंग हूँ, ये अच्छी बातें। कुछ बुराइयां भी हो सकती कि मेरे में आलस है, गुस्सा है, गिल्ट फीलिंग है, वो पूरी लिखे और फिर ये ढूंढे कि इन सब के रूट में एक या दो कोई बातें हैं। देखो, एक दो उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करता हूँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनको डिप्रेशन लगता था, या तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ। वो एक बैंक में थे लेकिन मुझे प्रोजेक्ट देते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है और लोग तो जल्दी कर लेते हैं। रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, वाइफ वॉज वेरी गुड, स्टिल ही फेल्ट कि भी मैं उनकी संभाल ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ। एक बेटी थी, उसका ध्यान नहीं रख रहा हूँ। ऐसे सारे उसके सिम्टम्स लिखे। जब फादर की डेथ हुई तो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैंने कहा, देखो सारा ये परिवार है वह भी आपके साथ है और सब लोग आपको इतना सहयोग दे रहे हैं। जब यह बात क्लियर हो गई कि मैं अकेला नहीं हूं तो एकदम ठीक हो गए। उनकी दवाइयां भी चल रही थी, छूट गई 3-4 महीने। तो ऐसे एक बार वो रूट को अगर हम समझ ले तो सब कुछ दूर हो सकता है।
2: इमोशनल ब्लॉक्स,
1: जैसे
2: हार्ट में ब्लॉक्स, वैसे
1: इमोशन ब्लॉक्स है।
0: तो इमोशन ब्लॉक्स को समझा अगर, देखा, तो फिर उसको ठीक भी अपने आप कर पाएंगे क्या?
1: हाँ बिल्कुल, फिर से आत्मा के साथ ही काम करना है।
0: अपने आप को पॉजिटिव दिखाना है,
2: डिटैच होकर, जैसे औरों को बताते हैं अपने को बताना है। अगर ये किसी के साथ भी और होता, कोई भी व्यक्ति उनको ये बता सकता, देखो आपकी वाइफ कितनी अच्छी है, यू हैव टू जस्ट बी एबल टू से इट टू योरसेल्फ, लेकिन उसके लिए अपने दर्द से डिटैच होना पड़ता है. दैट इज व्हाई सोल कॉन्शियसनेस हेल्प्स. ये सारी चीजें हम बहुत इजीली कर पाएंगे जब हम अपनी परिस्थितियों से डिटैच हो पाएंगे. हमें परिस्थिति ऐसे दिखाई देगी जैसे वो किसी और की परिस्थिति है. वील बी एबल टू गिव द राइट थॉट्स टू अवर सेल्फ. लेकिन इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है वी स्पेंड सम टाइम विद आवर सेल्फ. यू नो, हमारा क्या हो रहा है, दर्द है, ब्लॉकेज है, नुकसान हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, चलते जाओ. बहुत हम लगता है ये नेचुरल है मुझे, मैं ऐसा ही हूं करके. वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट इट डाउन, फाइंड योर ब्लॉक, क्लीन योर ब्लॉक. दोनों काम हमें ही करने हैं.
0: रिजॉल्व करने की जो बात है कि जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आ पाएगी.
1: कि आपको समझ में आ जाए तो भी वो रिमूव हो जाए.
0: तो ये रियलाइजेशन हमें अपने आप ही अपने आप को देखते देखते होगा. देखने की आदत तो होती जा रही है, समझ भी रहे हैं तरीका. सिर्फ ये नहीं पता था कि ये ब्लॉक्स जो हैं ना सिर्फ जीवन के हर सुख से, अगर शरीर के सुख देखें उससे भी हमें दूर कर रहे थे. सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच. कोई बात मन में है आप हमें ईमेल या फोन पर संपर्क करें. हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे. ओम शांति.

0: इतनी ही खुशी है यहाँ की जो दो बूंद पानी में बह जाती है। जानते हो अगर हम शहर में होते तो चाहे आंधी तूफान या बारिश जो कुछ भी आ जाता हम लोग मजे से उसी क्या क्या रेस्टोरेंट में डांस कर रहे होते। लेकिन यहाँ
1: अच्छा अब देखो

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। चल, चल,

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: स्वराज का अधिष्ठान रखकर सन 1857 में प्रारंभ हुए रण यज्ञ का संकल्प लेने वाले राजाओं में एक थे मध्य प्रदेश के शाहगढ़ के राजा बखत बली। उन्होंने अपने आसपास के इलाकों के बुंदेलों को संगठित करके 1857 के जून महीने में क्रांति का शंखनाद किया था। राजा बखत बली ने बुंदेलखंड के तमाम इलाकों को अंग्रेजों से छीनकर अपने कब्जे में ले लिया था। राजा की विजय पताका मानो अंग्रेजों को मुंह चिढ़ा रही थी। 1858 तक बखत बली अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बने रहे, मगर उसके बाद अंग्रेजों ने भारी तैयारी के साथ उन पर हमला बोला और गोला बारूद के कहर से उनकी सेना के पैर उखाड़ दिए। 8 जुलाई 1858 को मदनपुर में हुए निर्णायक युद्ध में शिकस्त के बाद राजा बखत बली को गिरफ्तार करके लाहौर जेल भेज दिया गया। अंग्रेजों ने उनके सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और सजा के बतौर शाहगढ़ को बुरी तरह तहस नहस कर दिया। आजादी के इस मतवाले को 15 सालों तक जेल में अमानवीय यंत्रणाएं सहनी पड़ी। अंत में 19 सितंबर 1873 को उन्होंने लाहौर जेल में हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया।

0: अरे राजू जरा चाय लेके आओ जल्दी से।
1: और सुनाओ गजबी दादा, आजकल क्या फंडा चल रहा है?
2: बेटा अपना फंडा तो बस जनता की सेवा है।
3: जनता की सेवा या अपनी मेवा?
1: बिना मेवा खाए जनता की सेवा के लिए हिम्मत और ताकत कहाँ से आएगी है?
2: अब बेटा ये तो तुम जानो, हम तो इतना जानते हैं कि ईमानदारी से सब अपना अपना काम करें, मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, तो जल्दी ही देश बड़े देश की कतारों में शामिल हो जाएगा।
1: दादा आप भी पता नहीं किस दुनिया में रहते हो।
2: बेटा हमारे लिए तो यही जमीन और यही दुनिया है, पर तुम लोग कौन सी दुनिया में हो हमारी समझ से बाहर है।
3: दादा आज दुनिया तेजी से बदल रही है, अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, यानी दुनिया के एक होने का जमाना है।
2: अरे ये कैसी दुनिया के एक होने का जमाना है, सब अच्छी अच्छी बातें कम हो रही हैं, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, आदमी के चेहरों पे मुखोटा दर मुखोटा चढ़ रहा है, असली चेहरे का तो पता ही नहीं चलता।
1: पर दादा असलियत जानना कौन चाहता है, दुनिया समाज और जनता कोई
3: और
1: नहीं।
3: जनता तो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखती है दादा, किसी भी तरह किसी भी कीमत पर अपना काम होना चाहिए बस।
2: तुम क्या चाहते हो, सनसनी, मौज मस्ती की खुली छूट, चुटकी बजाते ही कामयाबी, किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से चोटी पर पहुंचने का जादुई फंडा?
1: देखो दादा हर चीज का एक वक्त होता है, एक हवा होती है, आज वैश्वीकरण का जमाना है, दुनिया के एक होने की हवा है, तो हर युवक ग्लोबल वैश्विक बन जाना चाहता है, ग्लोबल हो जाना चाहता है। वैश्विक बनना आज सक्सेस यानी सफलता की निशानी है।
2: बेटा जरा ये तो बताओ कि ये किस दुनिया का आदमी होना है जिसमें हम अपनी जमीन, अपनी विरासत, अपने संस्कार, अपने देश, अपनी राष्ट्रीयता से कटते जा रहे हैं, अरे अपने बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं।
3: दादा आजादी यानी पूरी आजादी, सारे संबंधों से मुक्ति, और ऐसे में अपनी जमीन, अपनी विरासत, अपने बुजुर्गों या पुराने घिसे पिटे आदर्शों से चिपके रहना तो मूर्खता ही कहलाएगी ना।
1: हाँ, अब दादा को कौन समझाए, ग्लोबल फंडे में अपने देश प्रेम राष्ट्रीयता आदि फंडों के लिए जगह कहाँ बसती है कुमाई?
3: हाँ सही कह रहा है तू।
1: हाँ और ना ही इनका कोई समय ही है।
2: बेटा ये बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े शब्द तो हम नहीं जानते, पर ये जरूर जानते हैं देश प्रेम और राष्ट्रीयता की कोई ऋतु नहीं होती, ये भावना देश पे मर मिटने के जज्बात हर समय हर व्यक्ति में हर कहीं होना चाहिए। एक बात और, ये देश के अमर शहीदों की कथा जो हम तुम्हें सुनाते हैं वो इसलिए कि तुम लोगों के दिल में, नई पीढ़ी के मन में देश प्रेम की भावना जागे, कल के जवानों के मन में देश को गुलामी से आजाद कराने की चाहत और जुनून हो, आज के नौजवानों के मन में देश को आगे बढ़ाने, अगली पंक्ति में बिठाने के जुनून लगन की जरूरत है।
3: लगता है दादा आप तो नाराज हो गए। नाराजगी की तो बात ही है, दादा की बात में दम है। दादा सुनाओ आज आप किसकी जीवन कथा हमें सुना रहे हैं?
1: हाँ सुनाओ दादा सुनाओ, अब तो आजादी के दीवानों की कहानियां सुनने की आदत हो गई है, सुनाओ दादा सुनाओ।
3: सुनाओ ना दादा।
2: तो आज हम आपको धुन और जुनून के पक्के शाहगढ़ रियासत के राजा बख्त बली की कहानी सुनाते हैं। तीन जून 1842 को राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु के बाद बख्त बली शाहगढ़ रियासत का राजा बना। स्वर्गीय राजा अर्जुन सिंह की पत्नी का भाई जवाहर सिंह राज्य का मंत्री था, इसलिए यह जरूरी था कि बख्त बली उसके खिलाफ न जाए, उसे साथ लेकर काम करे।

0: राजा साहब, वैसे तो आपने युवावस्था के प्रारंभ से ही जीजा श्री अर्जुन सिंह से शासन प्रबंध की तालीम लेना प्रारंभ कर दी थी, पर इस समय रियासत में हालात जरा नाजुक चल रहे हैं। यही कहलाने बहुत संभल कर काम काज करने पर है।
1: मामा साहेब, आपके होते हुए हम तो पूरी तरह से निश्चित हैं। हमें तो आपके मार्गदर्शन में ही काम करना है। वैसे हमें अंग्रेजों की चाल बहुत कुछ समझ में आ रही है। उनकी नजर अपनी रियासत पर है।
0: आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। बरतानिया सरकार के पॉलिटिकल एजेंट का फिर से शिकायत भरा पत्र आओ है। वह कहते हैं कि कई चेतावनियों के बाद भी रियासत का शासन प्रबंध ठीक से नहीं चल पा रहा है। कृपया ऊपर ध्यान दें।
1: मैं समझता हूँ बरतानिया सरकार बुंदेला विद्रोह के कारण खिसियाई हुई है। अरे, वो इसे भूल नहीं पा रही है।
0: आपने बिल्कुल सही समझो है। सांची बात तो ये है, जीजा श्री अर्जुन सिंह ने इस विद्रोह में भाग नहीं लो थो, पर शाहगढ़ रियासत में पनाह लेने वाले विद्रोहियों के प्रति वे सख्ती नहीं बरत पाए। यही कारण है कि बरतानिया सरकार हमसे नाखुश है।
1: यानी बुंदेला विद्रोह के विद्रोहियों की मुश्किलें कसकर हम बरतानिया सरकार की नाराजगी को दूर कर सकते हैं।
0: राजा साहब, यदि हम और ऐसा कर सके तो निश्चित बरतानिया सरकार हम पर मेहरबान हो जाए।
1: मामा साहेब, मुझे रोशनी की एक नई किरण नजर आ रही है।
0: का मतलब?
1: मतलब ये कि यदि हम बुंदेला विद्रोह के किसी बड़े सरगना की गिरफ्तारी करा दें, तो क्या ब्रिटिश सरकार हमें हमारा खोया गढ़ाकोटा का इलाका सिंधिया से वापस दिला देगी?
0: राजा साहब, जब हम ब्रिटिश सरकार की मदद करें तो बदले में हम अपनी मदद के लिए उन पर जोर सोई डाल सकते हैं, और उन हालात में बहुत मुमकिन है कि वे हमारी मदद करने को तैयार हो जाएं।
1: मामा साहब, आप ब्रिटिश सरकार को रुक्का भिजवा दो कि बुंदेला विद्रोह का प्रमुख विद्रोही राजा हृदय शाह हमारी गिरफ्त में है। इसे कहां और किसे सुपुर्द करना है? और हाँ, इसे अमली जामा पहनाने के लिए हमें क्या करना है, वो तो आप समझ ही गए होंगे।
0: हाँ राजा साहब, हम आपका इशारा समझ गए। हुकुम की तामीर हुई है। अच्छा, मैं चलत हूँ।
2: आखिर 22 दिसंबर 1842 को हीरापुर के राजा हृदय शाह और उसके परिवार को शाहगढ़ के राजा बखत बली ने पकड़वा कर कर्नल एली के सुपुर्द कर दिया। गढ़ाकोटा का इलाका सिंधिया से वापस पाने का बखत बली का सपना सपना ही रहा। अंग्रेजों ने उसका साथ नहीं दिया।
1: जवाहर सिंह जी।
0: हाँ महाराज।
1: ये अंग्रेज तो बड़े धूर्त निकले।
0: अरे धूर्त का, एक ही नंबर के एहसान फरामोश है। जानते हैं पॉलिटिकल एजेंट ने हमारी विनती के जवाब में क्या बात कही है?
1: हाँ, हमें बताया गया है।
0: अरे बे बोला, सिंधिया हमारा भोट फेट फुल राजा होता, हम किसी कीमत पर उस पे दबाव डालने सकता। तुम समझो गढ़ाकोटा कंपनी सरकार के पास है।
1: वो तो हमने समझ लिया, गढ़ाकोटा अंग्रेज सरकार के पास है। जवाहर सिंह जी,
0: हाँ।
1: मुश्किल की बात तो ये है, हम जानते हैं अंग्रेजों से गढ़ाकोटा छीनना मजाक नहीं है, ये अकेले हमारे बूते की बात नहीं है। समझ में नहीं आता आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा सपना पूरा हो सके।
0: राजा साहब, ये तभी संभव है जब हमें कोई ताकतवर सहयोगी मिल जाए। फिर तो हम इन फिरंगियों को बुंदेला विद्रोह भूलने नहीं दें।
1: आपने ठीक कहा, हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सहयोगी ढूंढना होगा।
2: तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। खिमलासा के डाकू हंसा के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए बखत बली ने दबाव बढ़ाते हुए उसे अमझेरा के घाटी में घेर लिया। उसने देखा घाटी में पहले से ही एक अन्य सैन्य दल घेरा डाले हुए है।
1: जवाहर सिंह जी।
0: हाँ महाराज।
1: घाटी में ये दूसरा सैन्य दल किसका है?
0: महाराज, बानपुर के राजा मर्दन सिंह मदनपुर के डाकू मधुकर को पकड़वे के लाने घेरा डाले हुए हैं।
1: बानपुर के राजा मर्दन सिंह?
0: हाँ महाराज।
1: हम उनसे मिलना चाहेंगे।
0: जैसी महाराज की आज्ञा, हम अब भी संदेश भिजवा दो।
2: दोनों राजाओं की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करने की बात सिद्धांतः मान ली। इस सहयोग का उन्हें जल्दी ही चाहा परिणाम भी मिला। दोनों ही डाकू पकड़े गए, उन्हें ललितपुर के डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया।
1: बधाई हो राजा साहब।
3: आपको भी बधाई, आखिर हमारा मेल काम आया।
1: जी हाँ, यही मैं कहता हूँ, यदि हम मिल जाएं तो क्या नहीं कर सकते।
3: बखत बली जी, ये कोई शुभ संयोगी है कि हम इस तरह मिले। मेरा मन कहता है कि मैं आपसे अपने दिल की बात कह सकता हूँ। फिलहाल मेरी समस्या है कि सिंधिया से चंदेरी का इलाका वापस लेना।
1: और हमारी समस्या है अंग्रेजों के पट्टू सिंधिया से गड़ाकोटा का इलाका वापस लेना।
3: भाई वाह राजा साहब, क्या ये भी एक सुखद संयोग नहीं कि फिलहाल आपका और हमारा दुश्मन एक ही है? यानी हमें खूब सोच समझकर योजना बनानी होगी और उसे सफल बनाने के लिए पुख्ता तैयारियां करनी होंगी।
1: आप बिल्कुल ठीक समझे। सच तो ये है कि हमें अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए भी तैयार रहना होगा।
3: यानी विद्रोह?
1: जी हाँ, इसके पहले चारों ओर से समर्थन और सहयोग जुटाना भी जरूरी होगा।
3: आपकी बात मुझे समझ में आ गई है। हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। हाँ, पहला कदम शाहगढ़ की सेना सिंधिया से चंदेरी को छीनने के लिए आपके साथ होगी। हमारे पास कोई 2000 सैनिक और 10 तोपे हैं। आपका इशारा पाते ही वे चंदेरी विजय के लिए कूच कर देंगी।
1: इस सहयोग के लिए मैं और मेरी जनता दिल से आपकी शुक्रगुजार रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बानपुर के 1500 सैनिक और 5 तोपे हर समय आपकी सेनाओं के सहयोग के लिए तैयार रहेंगी।
2: बेटा, जब मर्दन सिंह बखतबली की सेनाओं ने चंदेरी को घेर लिया तो सिंधिया के प्रबंध अधिकारी जसवंत राय के सामने संधि करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। चंदेरी के किले पर बानपुर के राजा मर्दन सिंह का झंडा लहराने लगा। चंदेरी से लौटते समय रास्ते में सेनाओं ने तालबेहट को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस सम्मिलित अभियान की कामयाबी ने दोनों राजाओं के हौसले सातवें आसमान पर पहुंचा दिए। पर अभी शाहगढ़ के राजा बखतबली का गड़ाकोटा वापस पाने का भी सपना पूरा होना बाकी था। तभी झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु का संदेश मिला और सभी शासक शोक संवेदना प्रकट करने के लिए झांसी पहुंचे, जहां बखतबली और मर्दन सिंह को आगे की योजना बनाने के लिए मुलाकात का एक और मौका मिल गया।
3: राजा साहब, यदि आपको अपने पूर्वजों का खोया हुआ गड़ाकोटा का क्षेत्र वापस पाना है तो आपको ब्रिटिश सरकार से जूझना ही पड़ेगा। सौभाग्य से तात्या टोपे जी भी यहां मौजूद है, हम उनसे भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
1: मर्दन सिंह जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं।
3: जी।
1: कि मैंने ब्रिटिश सरकार से जूझने का पूरा पूरा मन बना लिया है।
3: तो फिर इसके लिए हमें संगठित होकर काम करना होगा।
4: मर्दन सिंह जी ठीक कह रहे हैं, अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए काफी सोच समझ कर योजना बनानी होगी और सबसे पहला कदम होगा अपनी शक्ति बढ़ाना और चारों ओर से समर्थन जुटाना।
1: ये बात मेरे जहन में है तात्या टोपे जी, इसलिए मैंने बांदा के नवाब से बात कर लिए। उन्होंने भरपूर मदद देने का वादा भी किया है।
4: ये काम आपने ठीक किया। इसके अलावा सागर और दमोह के जागीरदारों, उबारीदारों, सरदारों और माल गुजारों से भी संपर्क कीजिए। इस क्षेत्र में ये लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने को उतावले हो रहे हैं। इनके पास करीब करीब 2 सशस्त्र सैनिक हैं, जो हमेशा मरने मारने को तैयार रहते हैं।
1: जी हाँ, इन्हें संगठित करने का काम मैंने अपने वरिष्ठ मंत्री जवाहर सिंह को सौंप दिया है।
4: एक काम आप और कर सकते हैं, वो ये कि 12वीं और 42वीं रेजिमेंट तथा तीसरी अनियमित घुड़सवार सेना के जिन बागियों को सेना से निकाल दिया गया है उन्हें आप नौकरी दे दें।
1: हाँ, ये काम मैं प्राथमिकता से करता हूँ। यदि ये सभी काम पूरे हो जाते हैं तो फिर हम ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे सकते हैं।
4: चुनौती भी हमें पूरी योजना बनाकर देनी होगी मर्दन सिंह जी।
1: जी,
4: ताकि अंग्रेज सकते में आ जाएं।
2: बानपुर के राजा मर्दन सिंह, बांदा के नवाब और सागर जिले के जागीरदारों, उबारीदारों का समर्थन और अंग्रेज विरोधी रुख ने बखत बली का साहस इतना बढ़ा दिया कि उसने चंदेरी के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन गार्डन को मिलने के लिए बुलावा दे दिया।
5: हाँ, गुड मॉर्निंग राजा साहब।
1: गुड मॉर्निंग। आइए कैप्टन साहब, विराजिए।
5: ओह थैंक यू, धन्यवाद। राजा साहब ने हमें कई से याद किया।
1: कैप्टन गार्डन, हमने आपको इसलिए बुलाया कि आप बर्तानिया सरकार को याद दिला दें कि अब तो उन्हें हमारा गढ़ा कोटा इलाका हमें लौटा देना चाहिए।
5: क्या बोलता आप, हम इस तरह ब्रिटिश सरकार को ऑर्डर देने को सकता?
1: मतलब फिर आप ही बताएं, हम ब्रिटिश सरकार को कैसे कहें?
5: देखो, तुम इसे एक दोस्त का सलाह की तरह मानो। चंदेरी पे कब्जा हो ठीक, पर अब तुम जो चाहता है वो होने को नहीं सकता।
1: यानी आप चाहते हैं हम अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत कर दें?
5: ये कदम तो एकदम सुसाइडल होगा। ये तुम उसे एक दोस्त का सलाह मानो, ये कदम एकदम खुदकशी माफिक होगा। तुमको समझाना हमारा काम, बाकी तुम्हारा मर्जी। फिर भी जो तुम चाहो, मैं तुम्हारा मैसेज, तुम्हारी बात ऊपर पहुंचाने को सकता।
2: बखत बली की मांग तो पूरी होनी ही नहीं थी, पर बखत बली अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की ठान चुका था। तो जुलाई 1857 की शुरुआत में ही उसने आसपास के इलाकों पर आक्रमण कर उन्हें अपने कब्जे में करके अंग्रेजी सरकार को चुनौती देना शुरू कर दिया। आखिर अंग्रेज अधिकारियों की आंखों की नींद उड़ना स्वाभाविक ही था।
5: लेफ्टिनेंट हैमिल्टन, तुम्हें हमने मेजर सोगन के साथ मिलकर विनायका में विद्रोहियों पर काबू पाने के लिए बुलाया है।
6: क्या हुआ विनायका में सर?
5: दरअसल इधर कुछ दिनों से शाहगढ़ के राजा बखत बली ने बागी रुख अख्तियार किया हुआ है।
6: सुना है भानपुर का राजा मर्दन सिंह भी उसके साथ मिल गया है।
5: हाँ, इन दोनों ने साथ मिलकर इधर कई वारदातें की है, जैसे चंदेरी ताल बेहद के बाद अब पंचमगढ़ और खुराई के थानों पर अधिकार कर लिया है।
6: सुना है खुराई में तो लंबरदार करुण सिंह और गणेश चू ने गद्दारी की थी।
5: हाँ, इन दोनों को पकड़ने के लिए तो हमने भारी इनाम की घोषणा किया है। वहाँ विद्रोही 1000 की संख्या में और 2 तोपे लेकर आए था।

नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज. सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में.
3: ओम शांति.
2: मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा पहले.
3: शर.
2: एक बहुत सुंदर लाइन मिली मुझे, मेक एंगर सो एक्सपेंसिव दैट नो वन कैन अफोर्ड इट एंड योर हैप्पीनेस सो चीप दैट पीपल कैन गेट इट फॉर फ्री.
3: हाउ ब्यूटिफुल.
2: आप ब्यूटिफुल कह रही हैं, मैंने भी यही कहा, लेकिन ये सब मुझे लगता है सब किताबों में और ये क्या कहते हैं ऐसे इंटरनेट में और लिखी हुई बातों में. ठीक है, प्रैक्टिकली मैंने ट्राई किया कि मुझे पता मेरे मन ने क्या बोला. मुझे कहा कि देखो भैया, तुम एंग्री तो हो, एंगर कर रहे हो, लेकिन किस लिए कर रहे हो? भलाई के लिए, काम के लिए, बच्चों से करते तो उनके प्यार के लिए. तो आप इंटेंशन तो आप अपना देखो, आप एंगर एंगर क्यों कर रहे हो? एंगर के बिना होता भी नहीं, सुनते भी नहीं.
3: सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हम कर रहे हैं उसके फायदे कितने, नुकसान कितने. तो गुस्से के तो हमने पहले भी देखा कि मन पर असर, राइट, शरीर के हेल्थ पर असर, रिश्तों पर असर, एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है, हमारी जो एनर्जी है प्यार की, वो ब्लॉक्ड हो जाती है.
2: मतलब
3: एक टाइम पे हमें ये मालूम है कि हम बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं, 25 to 30 थॉट्स पर मिनट हमने देखा, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही थॉट ना, एक टाइम पे एक थॉट,
2: हम एक समय पर
3: एक ही थॉट क्रिएट कर सकता है. इवन इफ इट इज के हर सेकंड थॉट बदल रहा है सपोज, लेकिन एक सेकंड में एक ही थॉट, एंड विच मीन्स एक सेकंड में एक क्वालिटी ऑफ थॉट, राइट. एक सेकंड में दो क्वालिटी ऑफ थॉट नहीं हो सकता, वन टाइम वन थॉट, राइट. अब गुस्सा जब आता है तो कम से कम 5, 10, 15 मिनट चलेगा, राइट. बाहर चाहे 2 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, लेकिन अंदर उसका इम्पैक्ट कम से कम 15-20 मिनट चलेगा. अब 15-20 मिनट में हम कितने थॉट्स क्रिएट कर लेंगे? जितनी देर हम गुस्सा करते हैं, हमारी एनर्जी ऑफ लव, ऑफ केयर, ऑफ कंपैशन, ये ब्लॉक्ड हो जाएगी.
2: अच्छा, मैं थोड़ा क्लियर होना चाहूंगा. जब मैं कोई भी थॉट देता हूँ तो वो थॉट के साथ वो एनर्जी जाती है.
3: थॉट ही एनर्जी है ना. थॉट
2: अच्छा,
3: के
2: तो
3: साथ एनर्जी नहीं जाती.
2: अच्छा, अलग अलग नहीं है.
3: नहीं, थॉट मीन्स जो हमने पहले भी देखा, इट्स द एरो. थॉट वो तीर है जो हम,
2: मैं क्या समझ रहा था, एनर्जी अलग है, थॉट अलग है.
3: नहीं, आत्मा सोल पावर एक थॉट क्रिएट करती है. थॉट की एक क्वालिटी है, राइट. अभी मैं आपके बारे में जो सोचूंगी वो मैं सोचूंगी, फील करूंगी. दिस हैज वाइब्रेशन, यानी एनर्जी हैज वाइब्रेशन. आपको वहां बैठे एक फीलिंग आएगी, या तो वो एक अच्छी फीलिंग होगी, या कई बार हम कई लोगों से मिलते हैं या जब उनका मूड अच्छा नहीं होता तो कहते हैं नॉट गेटिंग अ वेरी नाइस वाइब्रेशन, अच्छी फील नहीं आ रही है. मीन्स जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो एक फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं, एंड वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी रेडिएट करती है. जिस क्षण जिन लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर हम उनके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं. हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी आदतें, उनकी बातें, उनका व्यवहार, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा लगता है, राइट. तो जो हमें पर्सनालिटी या जो व्यक्ति मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर हमें अच्छे लगते हैं, मतलब उनकी मोस्ट ऑफ द बातें, आदतें, संस्कार हमें अच्छी लगते हैं, ऐसे आई लव बीइंग विद दिस पर्सन, ये मुझे अच्छे लगते हैं. अब इसमें अगर हम एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में देखें, एक स्ट्रांग अटैचमेंट है, बचपन से ही एक बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है, एंड वी लाइक एवरीथिंग अबाउट द चाइल्ड, ऐसे आई लव माई चाइल्ड. लेकिन जिस क्षण गुस्सा आया तो बच्चे ने कुछ किया है, कोई गलती की है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, या हम उसको बार बार कुछ कह रहे हैं वो कहना नहीं मानता, या वो हमें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसका उसके जीवन पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो करियर में है, चाहे कभी शादी का डिसीशन है, बिजनेस में है, एनीथिंग. अब ये देख देख कर हम थॉट्स क्रिएट करेंगे, वो स्टिम्यूलस है ये रिस्पॉन्स है। जब बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जिसको हम कहेंगे गलत, या जिसमें हमें लग रहा है कि उसका अपना ही नुकसान हो रहा है, आपने कहा इंटेंशन प्यार की है, राइट? क्योंकि हमारी इंटेंशन होती है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके साथ कभी कुछ गलत
2: ना हो,
3: होना ही नहीं चाहिए, उनको कभी दुख ना हो, उनका कभी कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। दिस इज द हाईएस्ट प्योरेस्ट इंटेंशन। लेकिन उस टाइम, वो दो तीन मिनट, पांच मिनट, हम उनके बारे में जो थॉट्स क्रिएट करते हैं वो कैसी वाली थॉट्स होती है? जिस क्षण एंगर है, गुस्सा है, उस समय थॉट्स जो होंगे वो किस टाइप की थॉट्स होंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्या सोचेंगे हम उनके लिए?
2: कितना बेकार है, सुनता नहीं है, सब कुछ देते हुए भी, इंटेलिजेंस रखते हुए भी पढ़ता नहीं है, खेलता रहता है, स्कूल में जो है सब लोग आगे बढ़ते हैं और ये पीछे रह जाता है, इतना सब मैं इसके लिए करता हूँ फिर भी नहीं सुनता है, कितना सताता है मुझे,
3: इसका
2: दुख देता है मुझे।
3: अब ये हो गई कोई बड़ी बात। अगर कोई छोटी बात है कि हाथ से कुछ गिर गया, कोई नुकसान कर दिया, या कुछ आता था फिर भी गलत बोल दिया, उसका बात करने का तरीका ठीक नहीं लग रहा है, तो भी हम कैसे थॉट्स क्रिएट करेंगे? अब ये जब हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, एक एक थॉट, और ये बहुत फास्ट क्रिएट होंगे ना, इतनी जल्दी जल्दी जल्दी हम उसके बारे में क्रिएट, सपोज दिस इज ओनली एंगर इनसाइड, अभी तो शब्दों में भी नहीं आया, लेकिन जितनी देर ये थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ एनर्जी,
2: आपसे बात करते करते मुझे लग रहा है कि मैं प्यार नहीं कर रहा हूँ, आई एम बीइंग क्रिटिकल, इज दिस लव और क्रिटिसिज्म?
3: सी, इंटेंशन पेरेंट फॉर चाइल्ड इज लव, राइट? लेकिन सिर्फ उस क्षण, जितनी देर, ऐसा नहीं है कि नहीं देन मेरा प्यार खत्म हो गया या कम हो गया, सिर्फ उतनी देर के लिए, चाहे वो दो मिनट, पांच मिनट, कई बार पंद्रह मिनट, कई बार पूरा दिन नाराज है, तो उतनी देर जो थॉट क्रिएट हो रही है, अगर वो थॉट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उस क्षण हम उसके लिए इंटेंशन अच्छे, लेकिन हम उस क्षण अच्छा नहीं सोच रहे हैं,
2: करेक्ट,
3: वो सुनता नहीं है, ये अच्छी थॉट नहीं है, इसका क्या होगा, ये अच्छी थॉट नहीं है,
2: पढ़ता नहीं,
3: कितना भी बोलो मानता नहीं है, अपने ही चलाता है। आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए, इनको अच्छी राय दो, इनको समझ में नहीं आती है, इनको अपनी दोस्तों की बातें ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब इस क्षण बैड कंपनी, मतलब इस क्षण ये अच्छा नहीं है, ये बच्चा ही अच्छा नहीं है इस क्षण, क्योंकि मेरी एक एक थॉट क्या कह रही थी, इट वॉज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब जिस क्षण ये वाली थॉट्स हैं, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये अप्रिसिएशन नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये केयर नहीं है, ये कम्प्लीटली एक ऑपोजिट पैकेज है, इवन अगर हम कहें कि इंटेंशन अच्छी है, तो जितनी देर, अब नाउ दिस आई हैव टू चेक कि मैं ऐसी वाली थॉट्स अपने बच्चे के लिए, देन वी कैन अप्लाई द सेम रूल, हर एक के लिए सेम रूल हो जाएगा।
2: पति पत्नी, पत्नी पति के साथ भी करते हैं, आप ऊंचा बोल रहे हो, आप कम बोलिए, आप ज्यादा बोल रहे हो, आप मत बोलिए, आप दिल की बात मत बोलो, आप घर की बात मत बोलो, बाहर वाले हैं, आप कैसे कपड़े पहने हो, क्या हो, नॉन स्टॉप ये रहता है ना एक दूसरे का, ये क्या प्यार है, कंसर्न है?
3: आप ऊंचा बोल रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, कैन बी वन थॉट,
2: लोग क्या कहेंगे,
3: ये भी कैन बी वन थॉट, लेकिन एक है, आप हर टाइम ही ऐसे बात करते हो, आपको पता ही नहीं है कैसे बोल,
2: सामने बात करना आता ही नहीं आप,
3: टू थिंग्स आर डिफरेंट, सी दैट इज व्हाई वी हैव टू सी द क्वालिटी ऑफ द थॉट, कौन सी थॉट केयर की एनर्जी है और कौन सी थॉट एंगर की एनर्जी, मतलब कौन सी थॉट एक पॉजिटिव थॉट है,
2: दोनों जगह सिस्टर प्यार है।
3: एक है, सपोज आप अभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और करते करते वो गलत हो गया, कुछ भी काम गलत हो गया, अभी आप जो छोटा बात, बड़ा नहीं, छोटी बात है, कुछ कर रहे हैं वो गलत हो गया। एक है आपको ये कहना कि आपने ये जो अभी किया, ये जो किया वो ठीक नहीं हुआ, ये गलत हो गया। एंड दूसरा है, आप गलत है। दो चीजों में कोई फर्क,
2: और थोड़ा ऊंचा बोले तो हमेशा आप ये गलत करते ही रहते हैं, और ऊंचा जाना, तो मैंने आपको कितनी बार बोला, और मैं कई बार सोच रही थी या सोच रहा था ये कहने के लिए आपसे, कि आप हमेशा यही करते रहते हैं, मैंने सोचा कि आप सीख जाओगे, लेकिन अपने गलती से आपने सीखा नहीं, तो मुझे मजबूरन आपको बोलना पड़ रहा है, मतलब पूरी हिस्ट्री,
3: एंड कितनी बार बोला भी है तो भी आपको समझ ही नहीं आता,
2: कितनी बार आपसे ये गलती हो चुकी है
3: एंड आप ये बार बार जब ये करते हैं तो मुझे कितना दुख होता है, हमारे पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है, आप करते ही जाते हैं इस तरह से। वो जो गलती थी वो अलग, जो गलती हुई वो तो गलती हुई, एंड जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनका रोल भी है ना, क्योंकि इंटेंशन बहुत अच्छा है कि ये जो गलती हुई ये नहीं होनी चाहिए थी, ये ठीक होना चाहिए था। लेकिन अभी जो हमने सारी बातें की वो उस गलती के बारे में नहीं थी, वो उस व्यक्ति के बारे में थी जो इस समय गलत लग रहा है। दोनों बातों में हम कहेंगे एक ही बात है, ये एक ही बात नहीं है। सपोज ये कंप्यूटर ही आपके हाथ से अभी गिर जाए, तो कंप्यूटर गिर गया, कंप्यूटर उठाएं, उसको ठीक करें, लेकिन एक है आपसे पकड़ा ही नहीं जाता ठीक से, मतलब जब देखो आपके हाथ से चीज ही गिर जाती है, आप ऐसे ही करते हैं, महंगी महंगी चीज हर टाइम टूट जाती है आपसे, आपके हाथ में ही नहीं देना आगे से कुछ भी। दिस इज डिफरेंस एंड ये बहुत बड़ा डिफरेंस है,
2: बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फिर ये श्योर है कि ये प्यार नहीं है,
3: उस क्षण प्यार नहीं है, क्योंकि उस क्षण
2: मेरे अंदर नहीं होता। अगर प्यार नहीं है तो क्या है फिर?
3: See, that's what we said. जिस क्षण गुस्सा
2: तो इसका मतलब मेरा प्यार नहीं है, एंगर है?
3: नहीं, उस क्षण सिर्फ, उतनी देर वही हमने कहा उतनी देर वो प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाएगी। इट्स नॉट दैट ऑलवेज, सिर्फ उतनी देर, क्योंकि प्यार है मतलब मेरी थॉट्स आपके लिए बहुत एक अलग क्वालिटी की चलेंगी, लेकिन जितनी देर गुस्सा आया है तो मेरी थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाती है। अब मेरी थॉट्स एक होता है गुड विशेस, ब्लेसिंग्स, जैसे सपोज फिर से ये कंप्यूटर गिरा, तो एक है ये कंप्यूटर गिर गया, आपको तो नहीं चोट लगी ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, ये है गुड विशेस, ये है क्लीन थॉट। अभी भी कंप्यूटर गिरा है, टूटा भी है, जो हुआ वो गलत भी हुआ, लेकिन आपके प्रति क्रिटिकल नहीं, गलती आपकी नहीं, गलत जो आपने किया, मीन्स द एक्ट एंड द पर्सन, द एक्ट दैट यू परफॉर्म्ड वॉज रॉन्ग, बट नॉट दैट यू आर अ रॉन्ग पर्सन।
2: हाउ कैन यू कॉल एन एक्सीडेंट एन एक्ट आई परफॉर्म्ड?
3: ओके, लेट्स से इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स एन इंटेंशनल एक्ट।
2: ओके,
3: दैट ऑल्सो, सपोज आपने झूठ बोला, जान पूछ कर, सोच समझ कर झूठ बोला, ठीक है, बच्चे ने झूठ बोला, किसी ने भी झूठ बोला, नाउ वी हैव टू टीच द चाइल्ड, इंटेंशन भी बहुत अच्छी है कि इसका झूठ बोलने की आदत ना पड़ जाए। एक्ट जो है, कर्म जो है कि झूठ बोला, एंड दूसरा है व्यक्ति जिसने वो कर्म किया, दोनों को सेपरेट करना होगा। ये एक्ट चाहे गलती से हुआ, एक्सीडेंट, चाहे एक इंटेंशनल एक्ट है, दोनों अलग है ना, लेकिन आपने जो किया, आपने जो बोला, और एक है आप द पर्सन। जब गुस्सा आता है हम एक्ट के बारे में कम बात करते हैं, हम व्यक्ति पर अटैक करते हैं, एंड फिर हम व्यक्ति पर सिर्फ उस एक्ट के लिए अटैक नहीं करते हैं, फिर तो हम बहुत सारी पास्ट की बातें भी निकाल देते हैं, एंड बहुत सारे बैक रेफरेंसेस कर देते हैं, एंड इट्स मोस्टली यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दिस, यू आर नो गुड, यू कांट डू इट, हाउ मच शुड आई एक्सप्लेन टू यू, तुम्हारी वजह से घर में कितनी प्रॉब्लम है, तुम्हारी वजह से घर में सब परेशान है,
2: यू आर द कॉज ऑफ ऑल,
3: यू, इट्स नॉट व्हाट यू डिड, इट इज यू। एंड जब व्हेन आई हिट ऑन द यू, Not on what you did. अगर जो आपने किया उस पर अटैक करे तो आप पर नहीं अटैक हो रहा,
2: तो फिर प्यार कहाँ हुआ बेस?
3: जबकि if you attack the person, उस क्षण तो प्यार नहीं है,
2: पहले था, आप कहाँ गायब हो गए?
3: See, every thought की quality change, energy change.
2: तो basically मतलब आपके अंदर प्यार है और नहीं भी फिर?
3: Absolutely. अब इसकी percentage को हमें बढ़ाते जाना होगा ना, अब इसको हर थॉट में लेकिन चेक करना होगा, हर थॉट में चेकिंग है। कई बार पेरेंट्स भी बच्चे के साथ ये कर सकते हैं, क्योंकि अंडर

0: अंडरस्टैंडिंग आई, रियलाइजेशन आई कि नहीं, अब क्रिटिकल नहीं होना है, एक्सेप्ट करना है, भले वो जो भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट, कीप क्वाइट एंड से ओके, आशीर्वाद, कोई बात नहीं,
1: अंदर से भले रोते रहो,
0: चेकिंग यहाँ है, चेकिंग यहाँ नहीं है, चेकिंग यहाँ नहीं है, चेकिंग यहाँ है कि क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, एंड इम्पोर्टेंट है जब गुस्सा आ रहा है माई एनर्जी ऑफ लव इज गेटिंग ब्लॉक्ड, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. अब जो एनर्जी ब्लॉक हो रही है मेरी, वो उन तक तो नहीं पहुंच रही ऑब्वियसली, मतलब उनको प्यार नहीं मिल रहा इस क्षण, माई एनर्जी ऑफ लव इज ब्लॉक्ड, लेकिन इम्पोर्टेंट इज माई एनर्जी इज गेटिंग ब्लॉक्ड, नुकसान उनका कम, मेरा ज्यादा होने वाला है. इट्स लाइक द फ्लो ऑफ ब्लड, नेचुरल, एक नेचुरल है प्यार फ्लो करना हमारे से, लेकिन कुछ क्षणों के लिए माई फ्लो ऑफ ब्लड गेट्स ब्लॉक्ड, सपोज सप्लाई टू द हार्ट गेट्स ब्लॉक्ड,
1: सांस रुक जाए.
0: हाँ, उस तरह से क्यों आज हम अनकंफर्टेबल हैं? हम कहते हैं ना, सब कुछ होते हुए हम खुश क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लॉकेज ये बढ़ती जा रही है.
1: बहुत अच्छी बात
0: है ना, जैसे पूरा दिन में अगर एक बार गुस्सा आया सपोज, लेकिन सारा दिन नेचुरल है, नेचुरल एनर्जी फ्लोइंग है, काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल. सोल की जो नेचुरल एनर्जी है वो है प्यार, हैप्पीनेस, शांति. जितनी देर वो इस नेचुरल एनर्जी में होगा, वील फील कंफर्टेबल, और जितनी देर हम नेचुरल से हटेंगे, वी आर गोइंग टू फील अनकंफर्टेबल. जब हमारी नेचुरल एनर्जी ब्लॉक होती है, उतनी देर हमें अच्छा नहीं लगेगा, मन को भी नहीं, शरीर को भी नहीं. जैसे जैसे ये फुट है, पैर है, लेकिन वो ब्लड सप्लाई रुक जाए, उसको गया ही नहीं, तो हम कहते हैं मेरा पैर सो गया, सुन्न हो गया, नंब हो गया. नंब हो गया मीन्स द नेचुरल फ्लो इज नॉट देयर. अब वो है, लेकिन वो अपना नेचुरल काम नहीं कर सकता जब तक हम वो सप्लाई को फिर से नहीं ठीक करें. हम हैं, रिश्ते हैं, करियर है, सब कुछ है, बिजनेस है, लेकिन जब नेचुरल सप्लाई जो एनर्जी का है वो जब ब्लॉक होने लगता है, तो सारी चीजें होते हुए भी ठीक वर्क नहीं कर रहे हैं. अब इसको हमने कहा कि नहीं, ये तो नेचुरल है, गुस्सा तो आता ही है, ये तो करता ही है, लेकिन जितनी देर हम ये कर रहे थे, हम अपनी नेचुरल सप्लाई को ब्लॉक कर रहे थे. अब अगर ये दिन में एक आधी बार हो तो भी इट्स ओके. लेट्स से मेरा पैर दिन में एक आधी बार सो जाता है, नंब हो जाता है पूरा, तो एक दिन में 5 मिनट के लिए नंब हो जाए, तो मैं बैठू, उसको ठीक करू, ऐसे करू. अब 1 घंटे में एक बार होने लग जाए, तो थिंग्स विल गेट लिटिल डिफिकल्ट. अब हर आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए ये ऐसे होने लग जाए, इट्स गोइंग टू गेट टफर, क्योंकि उतनी देर अगर सप्लाई ब्लॉक होती गई, और फिर धीरे धीरे वो 5 मिनट के लिए नंब होता है, लेकिन क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट होता है, हर आधे घंटे बाद होता है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी सिस्टम की डाउन हो रही है, तो वो 5 मिनट का इफेक्ट भी थोड़ी ज्यादा देर चलता है. एंड धीरे धीरे हम कहते हैं ये मेरा मूड था, लेकिन धीरे धीरे वो मूड काफी लंबा चलता है, उतनी देर में कोई और परिस्थिति आती है, फिर वो नंब हो जाता है, फिर वो, एंड धीरे धीरे हम कहते हैं ये मूड ही ऐसा रहता है अब इनका. जब ऐसे होने लगता है, यू नो, जैसे कई लोगों का मूड अशांत रहने का रहता है, कई परेशान, मतलब परेशान होंगे तो ऐसे ही परेशान रहेंगे, कोई भी मैटर नहीं मिलेगा परेशान होने के लिए, तो पास्ट की कोई बात निकाल कर, कोई
1: टीवी देख के शुरू हो जाते हैं, देखो इन्होंने क्या कर दिया, देखो उन्होंने क्या कर दिया, मतलब न्यूज देख देख के टेंशन लेते हैं,
0: परेशान, ये परेशान, गुस्सा,
1: देश का क्या होगा.
0: अच्छा, कोई उदास तो उदास, उदास है बस कोई ना कोई बात लेकर, दुखी तो दुखी. अब जितनी देर ये लंबा चलेगा, 1 मिनट के लिए आया गया तो भी इट्स ओके, 2 मिनट आया गया ओके, लेकिन जब ये लंबा चलता जाएगा, ज्यादा देर चलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, लेट अस अंडरस्टैंड उतनी देर मेरा नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी ब्लॉक हो रहा है. अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो अब अगर हमें अपने गुस्से को कम करना है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो नेचुरल फ्लो है वो ब्लॉक ना हो. जितना नेचुरल फ्लो रहेगा, ये दूसरा संस्कार जो अनकंफर्टेबल है ये कम हो जाएगा. इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये, और ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है करना, कि जब भी कोई बात आने वाली है, चाहे वो छोटी सी गलती है, चाहे वो कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ा डिसीशन है, फोकस अपने मन का फोकस उस एक्ट पर रखेगा, व्यक्ति पर नहीं। और ये हर एक के साथ करना है, सेपरेट द एक्ट फ्रॉम द पर्सन। ये कर सकते हैं,
1: कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी मेरे घर में कांच का दरवाजा बिटवीन किचन एंड खाने का हमारा, वो टूट गया।
0: ओके,
1: एक शब्द मैंने नहीं बोला, आया और मैंने कहा चलो लकड़ी का लगवा देते।
0: ठीक है,
1: बड़े बड़े प्रॉब्लम में मुझे कुछ नहीं होता है, ये छुट फुट छुट फुट छुट बर्तन गिरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फोन पे मैं खाना खा रहा हूँ तो किचन में चींची चींची चल रहा है। जब किचन के बाहर हम आते कितनी देर है खाने के लिए, आधा घंटा लंच, उस आधे घंटे में अगर स्टाफ डिसिप्लिन नहीं रहेगा वहाँ चिड़चिड़ होती है।
0: लेकिन
1: तोड़ तोड़ दिया परवा नहीं,
0: लेकिन उसमें भी जो वो कर रहे हैं कि वो आवाज कर रहे हैं,
1: वो कर नहीं रहे हैं, वो है ही ऐसे।
0: ये
1: क्योंकि क्योंकि 10 बार बोला है, 100 बार बोला है, जिस चीज के लिए आप पैसे लेते हो आप वो नहीं करते हो तो मतलब क्या है?
0: और अपने आप को, एक मिनट, अपने आप को 10 बार 100 बार बोला है कि गुस्सा नहीं करना, खुशी जा रही है,
1: मेरा प्रोफेशन नहीं है वो, मैं उसके
0: मेरे
1: लिए पैसे नहीं ले रहा,
0: जीवन का लक्ष्य है, मेरी हेल्थ है, मेरे रिश्ते हैं, उस चीज के लिए भी मैं अपने को नहीं बदल सकता। उनका तो सिर्फ प्रोफेशन है, मेरे तो वो जीवन का पर्पस है, कितना फर्क है।
1: अगर आपको इतना ही बोला गया है कि हम लोग खाना खा रहे हैं तब आप शांत करो, फोन भी ठिक ठिक भी, लड़ाई
0: क्यों कर
1: भी
0: रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनका संस्कार
1: है।
0: उनका संस्कार है ना ऐसा,
1: हाँ, वो तो
0: वो संस्कार,
1: संस्कार है या वैसे हैं, एक ही तो बात हुई।
0: हाँ वही तो, वो उनका संस्कार है, हम बार बार उनको संस्कार को चेंज करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम एनर्जी किसके प्रति क्रिएट कर रहे हैं,
1: उस आदमी के,
0: वो ऐसे है, अब वो नहीं चेंज हो रहे। क्या हमने कभी अपने आप को देखा कि हम क्या कर रहे हैं? इट्स सो इजी टू से 10 बार बोला 100 बार बोला तो भी नहीं समझ में आता, अपने आप को 10 बार बोला 100 बार बोला दिन में 10 बार बोला तो भी नहीं हमें समझ में आ रहा। ये है एम्पथी, ये है कंपैशन, कि हाँ संस्कार चेंज करना इतना इजी नहीं होता है कि बोला और हो जाएगा, उनका भी संस्कार चेंज करना इतना इजी नहीं होने वाला है, बोला और हो जाएगा।
1: सपोज यहाँ पर हम शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्टाफ, ये 3 कैमरा लगे हुए हैं, ये लोग को मालूम है कि हम शूटिंग कर रहे हैं तब बात नहीं करना है, तो नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए शूटिंग हो रही है ना। अगर एक दूसरे से करने लग जाएं तो ये संस्कार का क्या, ये तो डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। जब उनको बोला गया हम खाना खाते हैं तब आप चिल्लाएंगे नहीं, तब आप बर्तन नहीं धोएंगे, आप खड़फड़ नहीं करेंगे, फोन पे बात नहीं करेंगे, हम 10 मिनट खाना खा के चले जाएंगे, आप जो करना है करो। तो फिर ये तो डिसिप्लिन है,
0: ये डिसिप्लिन,
1: बिकॉज यू बीइंग पेड फॉर इट, आई डोंट एग्री कि इसमें मेरी,
0: ये डिसिप्लिन है
1: और मैं आपको इसी शर्त पे रखा हूँ,
0: ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, लेकिन हर टाइम मेंटेन होगा इज नॉट नेसेसरी,
1: और हर टाइम नहीं मेंटेन होगा वो नेसेसरी है।
0: नहीं, वी आर नॉट सेइंग कि जो वो कर रहे हैं वो राइट है, बट कैन आई अफोर्ड टू गेट डिस्टर्ब एवरी टाइम। यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि उनको कैसे चेंज करना है, नहीं, मुझे अपने संस्कार को कैसे चेंज करना है व्हेन दे आर इनडिसिप्लिन्ड। अगर फिर मैंने जस्टिफिकेशन ही दे दी तो फिर तो मेरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा ना,
1: ये तो सही,
0: ये तो मेरा प्रोसेस रुक गया ना, फिर मेरा प्रोसेस रुक गया। नो, इट्स नॉट इजियर फॉर मी टू चेंज, इट इज आई वॉन्ट टू एंड आई हैव टू चेंज। आज एक स्टाफ है, कल दूसरा होगा, परसों ड्राइवर होगा, उसके अगले दिन बेटा होगा, उसके अगले दिन बहू होगी, उसके अगले दिन ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उसके बाद स्टाफ होगा। कितने लोग मेरे आसपास मेरी तरह से चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे,
1: तो बर्दाश्त करता रहूं?
0: बर्दाश्त नहीं, इम्पोर्टेंट है मैं अपने ऊपर अटेंशन रख रहा हूं, उनके ऊपर नहीं। लोग, वी हैव टू रिमेम्बर दिस, वी आर डीलिंग विद पीपल, वी आर नॉट डीलिंग विद मशीन्स। मशीन भी हमेशा उसी तरह नहीं चलती है, ऑन किया ऑन, ऑफ किया ऑफ, रखा तो रखा, उठा तो उठा, ये मशीन्स होती है।
1: हाँ, कंप्यूटर को भी मैं देखता हूँ ना, ऑफ करने के बाद वो पूरा टाइम लेता है।
0: हाँ, आज तो हम मशीन के साथ भी इरिटेट हो जाते हैं, इतना स्लो क्यों है, इंटरनेट क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है, इंटरनेट में कुछ स्पीड कनेक्टिविटी वो क्यों नहीं।
1: मैं कभी कभी कंप्यूटर से भी चिढ़ जाता हूँ, मैं जब बंद करना चाहता हूँ वो बोलते हैं अपडेट कर रहा हूँ।
0: व्हाट इज द संस्कार? मोबाइल लगा रहे हैं क्यों नहीं लग रहा है, नेटवर्क कैच क्यों नहीं कर रहा है, विच मीन्स जो मुझे चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है, हर टाइम जो लाइन है, अंडरलाइन है, वो ये कंप्यूटर टू फास्ट, ये कंप्यूटर टू स्लो, कैसी स्पीड चाहिए जो मुझे ठीक लगती है। ये व्यक्ति गाड़ी बहुत फास्ट चलाता है, कितने पे चला रहा है, 120, टू फास्ट। दिस पर्सन कितना स्लो गाड़ी चलाता है, कितने पे चला रहा है, 80। आपको कितनी चाहिए, राइट स्पीड कौन सी होती है, 100। किसने डिसाइड किया, मी।
1: तुम इतना धीरे बोलते कुछ सुनाई नहीं देता है। हाँ। तुम इतना जोर से बोलते
0: कान फट जाता है। दिस इज इट। हम चाहते हैं कि हरेक हमारे आसपास, यहाँ तक कि मशीनरी भी,
1: तो इसका मतलब है मैं ही नहीं जानता मुझे क्या चाहिए।
0: नहीं, हम जानते हैं हमें क्या चाहिए।
1: फिर?
0: हमें चाहिए वो जो एग्जैक्ट 100 पर गाड़ी चलाए।
1: तो वो कैसे रीड करेगा?
0: हमें चाहिए वो, अगर वो रीड भी कर लिया, आपने कहा आई हैव पेड देम एंड आई हैव टोल्ड देम कि उन्हें ये करना है, लेकिन वो ह्यूमन बींग है।
1: अगर ये भी तो ह्यूमन बीइंग है, मेरे कैमरा डिपार्टमेंट में रख लो, ये आपका यहाँ जो बैठे,
0: हाँ, इसका मतलब
1: नहीं कर रहे हैं।
0: हाँ, तो कुछ लोग कभी कभी मेरी बात मानेंगे।
1: मेरी बात नहीं, इनका प्रोफेशन है।
0: हाँ, तो प्रोफेशन है ना, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाएगा, जो डिसिप्लिन की डेफिनेशन आप क्रिएट करेंगे, वो कुछ लोग कभी कभी मानेंगे, सब लोग भी कभी कभी मानेंगे, लेकिन सब लोग हर टाइम हर बार मेरी हर बात मानेंगे।
1: मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी पायलट है तो पायलट प्लेन चलाएगा ही ना।
0: गुस्सा हमें तब आता है जब चीज मेरे अनुसार सही नहीं होती है।
1: मैं मेरे अनुसार नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसके प्रोफेशन के अनुसार उसको सही करना है।
0: आप देखो, वो लोग किचन में हैं, आप बाहर खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पर, वो आपस में बात कर रहे हैं, यही बात आपकी फैमिली में किसी और को उतनी तकलीफ नहीं देगी। कहेंगे तो क्या हुआ, लोग है ना किचन में खाना बना रहे हैं, थोड़ी बातें की आपस में तो क्या होगा। अच्छा, उसको भी अगर उन्हें करेक्ट करना है तो कहेंगे थोड़ा धीरे बोलेंगे आपस, या आप ऐसा करेंगे 15 मिनट के बाद बात कीजिएगा आप।
1: लेकिन डेली बोलते हैं।
0: हाँ, डेली
1: बोलते हैं, पहले उठ के एक रूल बना लेते हैं, उनको लिख के दे देते हैं।
0: आप रूल बना के भी लिख कर दे देंगे, नॉट नेसेसरी इट विल बी फॉलोड। दिस इज अ वे ऑफ लिविंग। हम हर बात के लिए अपनी एनर्जी को ब्लॉक
1: नहीं कर सकते हैं।
0: वी आर नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग कि वो लोग सही हैं या नहीं हैं, डिसिप्लिन है या नहीं है, राइट है या रॉन्ग है। मैं अपनी एनर्जी को नहीं ब्लॉक कर सकता ना, मेरा सप्लाई रुक रहा है। अब अगर मेरा सप्लाई इतनी छोटी छोटी चीजों में रुकेगा,
1: तो वही जैसे आपने कहा था, पांव सो गया
0: हर छोटी बात में,
1: हर 15 मिनट में, फिर तो पांव ही बंद हो जाएगा चलना, मतलब जैसे बॉडी को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा।
0: थोड़ी देर भी बंद हो जाता है अगर ऑक्सीजन,
1: फिर 1 घंटे में 1 सेकंड, फिर बाद में 1 घंटे में 10 सेकंड, फिर 1 घंटे में मिनट, हर मिनट में 1 सेकंड, तो फिर तो हाथ।
0: और जैसे ही थोड़ा ज्यादा देर अगर ब्लॉक हो गया ऑक्सीजन, देन आई हैव टिप्ड ऑफ। जब ये एनर्जी ब्लॉकेज ज्यादा ज्यादा ज्यादा होने लग जाता है, तब जाके वो डिप्रेशन की एक्सट्रीम स्टेज, क्रॉनिक बीमारी, और तब वो ब्लॉकेज सिर्फ यहाँ ना रहकर, जब वो ब्लॉकेज यहाँ भी मैनिफेस्ट होता है। किसी का भी शरीर में ब्लॉकेज पहले नहीं होता है, जिनके मन में ब्लॉकेज नहीं है उसके शरीर में ब्लॉकेज नहीं हो सकता है।
1: वंडरफुल सिस्टर, दैट वाज अ लवली लाइन, कि मन में ब्लॉकेज है तो शरीर में है, और फिर एनर्जी में भी है, थॉट में भी है, बिहेवियर में भी है, तो इस ब्लॉकेज को हम रोकते हैं, और फिर अगले एपिसोड में और आपसे पूछेंगे कि इस ब्लॉकेज को कैसे दूर किया जाए।
0: थैंक यू,
1: नमस्कार।
2: When we create a thought, it is followed by a feeling. This energy is experienced by us and also radiates to the person for whom it is created. Love means acceptance. When we get critical or angry, we create negative energy of rejection. There is no appreciation, motivation, or respect in those moments. Our intention for family and friends are good, but in moments of anger, our positive energy of love gets blocked and we radiate negative energy. Frequent blocking of our natural feelings affects our emotional and physical health and our relationships. When someone makes a mistake, talk about the mistake. Don't criticize the person. Separate the act from the person. Do not make past references about the person. Discuss only what needs to be done

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लग गया नी,
0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लग गया नी,
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी,
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी।
0: ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी, न सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी, दिल में यही है तुझे।

0: कार्यक्रम।
1: झूठी बातें हैं बलम,
0: ले लो प्यार की कसम।
1: झूठी बातें हैं बलम,
0: ले लो प्यार की कसम। प्यार हमेशा से है अकल गंवाने वाला, फूल समझ कर शोल

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं दान की ईश्वरीय विधि। दान का अर्थ क्या होता है इस पे आज हम चर्चा करते हैं। दान अर्थात क्या होता है? देना। इससे सारी सृष्टि चल रही है। अगर सृष्टि का नियम देने की जगह लेना अगर कर दिया जाए तो सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। परमात्मा पिता ज्ञान गुण और शक्तियों के सागर हैं, परंतु जब वे इनका दान विश्व को देते हैं तभी वे रघुपाल पालनहार और भगवान कहलाते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? भगवान नाम से हम गाए जाते हैं। वो देने का अर्थ है सफल करना। देने का अर्थ क्या होता है? सफल करना। कोई भी वस्तु शक्ति सफल करने पर ही प्रतिफल देती है। किसान एक दाना बीज बोकर सफल करता है तो बदले में कई दाने पाता है। जो बीज सफल ना की जाए वह विफल ही सड़ जाती है। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति सोचकर काम ना करे कि इससे उसके पास ताकत जमा होकर वह हाथी जैसा बलशाली हो जाएगा तो यह भ्रम है। वास्तविकता यह है कि उसका शरीर और ही निष्क्रिय एवं आलसी हो जाएगा। यदि कोई बुद्धि को चिंतन और सीखने में प्रयोग ना करे तो यह कुंद हो जाएगी। संबंधों को परस्पर प्रेम व्यवहार से सफल न किया जाए तो उनमें मनमुटाव और निरस्ता पैदा हो जाएगी। धन को भी उपयोग प्रयोग और सहयोग करके सफल न किया जाए तो वह भी क्या होता है? अभिशप्त हो जाता है। वह संपन्नता की अनुभूति की जगह लोभ और तृष्णा का बोझ बन जाता है। उपयोग में निज काम में आता है, प्रयोग में कार्यों को सिद्ध करता है और सहयोग में क्या होता है? जगहित द्वारा पुण्य जमा करने का साधन बन जाता है। नहीं तो लोभी के प्राण उसके धन में बस जाते हैं। वहीं लोभ उससे अन्याय और शोषण कराता है। किसी जमाने में लोभ के कारण लोग क्या करते थे? ना धन कहीं गाड़कर छुपा देते थे। पुराने लोगों की ऐसी क्या होती थी? मान्यताएं रहती थी कि ऐसे गाड़े हुए धन पर नाग बैठे रहते हैं, तो उस धन को पाने वाले व्यक्ति को चैन से जीने नहीं देते। अब समझा जा सकता है कि गड़े हुए धन के ऊपर जमीन के अंदर, अगर जमीन के अंदर तो कोई नाग नहीं रह सकते। उसे लोभी की लोभ वृत्ति ही नकारात्मक ऊर्जा के रूप में नाग की तरह धन में बसी रहती थी। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हमारा आज का विषय है दान की ईश्वरीय विधि। तो बिना सोचे समझे किया गया दान कई बार बुराई के खाते में आ जाता है। विवेकशील जो व्यक्ति होते हैं अपना समय, संपत्ति और शक्ति सूझबूझ से शुभ कार्यों में सफल करता है। सरकार भी आज क्या जोर देती है कि अनावश्यक भिक्षावृत्ति को बढ़ावा न दिया जाए। आपराधिक तत्वों द्वारा बलपूर्वक बच्चों या कमजोर लोगों द्वारा भिक्षावृत्ति कराना, सक्षम होते हुए भी कुछ न करने की प्रवृत्ति के कारण निम्न बुद्धि वाले लोगों द्वारा अपने ही बच्चों को भिक्षावृत्ति में लगा देने की प्रवृत्तियां आज क्या हो रही है, समाज में बहुत बढ़ चुकी है। अच्छी भावना रखने के बाद भी बिना सोचे समझे किया गया दान कई बार पुण्य की जगह बुराई के खाते में ही चला जाता है। हालांकि कई बार समाज सेवी संगठन ऐसे पिछड़े और बेसहारे लोगों को शिक्षित करने, उन्हें भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी सेवाएं भी कर रही है, जिससे स्थितियों में काफी सुधार भी हो रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग ऐसे प्रयास क्या करते हैं, उनके जो ऐसे प्रयास होते हैं बुद्धिजीवी लोगों के, ये सराहनीय भी है। लेकिन ऐसा तब संभव है जब सभी अपनी इच्छा से और सोच समझ कर कार्य करें। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को

नमस्कार, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और हमारा आज का विषय है दान की ईश्वरीय विधि। एक सफल करने की भी विधि होती है। हाँ, सफल करने की सर्वश्रेष्ठ और अनोखी विधि है। समय की मांग देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा पिता हमें क्या करते हैं, सफल करने की सर्वश्रेष्ठ और अनोखी विधि सिखाते हैं, जिससे परिणाम भी सर्वश्रेष्ठ आते हैं और जीवन ही क्या होता है, जीवन ही पुण्यशील बन जाता है, आत्मा महान सौभाग्यशाली बन जाती है। हाँ, आत्मा क्या होते है, सौभाग्यशाली बन जाती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन काल भी 10,000 लोगों को भोजन कराता है। इसके लिए उसने काफी परिश्रम किया और लोगों की दुआएं भी ली। कोई भी व्यक्ति खुशी से भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाता। दुर्भाग्यवश उसे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। आत्मा अपने बुरे संस्कार और कर्मों के कारण अपनी पुण्य और शक्तियों की पूंजी गवाकर भाग्यहीन और लाचार होकर दूसरों पर निर्भर हो जाती है। परमात्मा हमें ऐसी सेवा करना सिखाते हैं जिससे मनुष्य का दुर्भाग्य, पूरे संस्कार व बुरे कर्म समाप्त हो जाए। वे गुणों की धारणा कराकर जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। व्यसन, जुए, दुश्चरित्र आदि बुराइयों से में जो फंसा हुआ व्यक्ति है, परमात्मा का सत्य परिचय पाकर परमात्मा से संबंध जोड़कर अपनी सारी बुराइयों को त्यागने में सक्षम हो जाता है, एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर लेता है। उसके साथ उसका परिवार भी है। जीवन बदलने के बाद अब वो क्या होता है, मोहताज होकर उसे दो रोटियां नहीं जुटानी, बल्कि वह मेहनत से अपना और सारे परिवार का पेट भरता है। ऐसा जो होता है, ऐसी सेवा का पुण्य कितने भूखे लोगों को भोजन कराने के बराबर हो गया। पूरे परिवार को ही भूखे रहने और मांगने की दुर्गति से बचा लिया। साथ ही उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गया। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से, और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए, हाँ, आज का हमारा विषय है दान की ईश्वरीय विधि। कम समय में बिना स्थूल धन खर्च किए भी ज्ञान धन का दान देकर सहज ही कितना पुण्य अर्जित किया जा सकता है, इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। हाँ, जो मनुष्य आत्माएं पुण्य की यह श्रृंखला शुरू करके अपनी सेवाओं द्वारा इसका विस्तार करती जाती है, वे पदम पदम भाग्यशाली बनती जाती है। इससे दीप से दीप जलाते चलो की पंक्ति साकार हो रही है। हमारा सभी मनुष्य आत्माओं से निवेदन है कि वे इस अनोखे भाग्य के खजाने को जमा करने की विधि सीख ले, जिसका एक ही विधि है राजयोग। राजयोग विधि सीखने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अवश्य जाएं और वहां जाकर जरूर राजयोग की विधि सीखें। जो भी पुण्य कर्म और सामाजिक सेवाएं आप कर रहे हैं, उनके साथ साथ परमात्मा द्वारा दी गई श्रीमद् प्रमाण आध्यात्मिक सेवा से भी अपना जीवन सफल करे। बस याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम योग की अनमोल जो ये घड़ियां हैं, अब अपनी पूर्णता के चरण तक आ पहुंची है और समय बहुत थोड़ा है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का कार्यक्रम यही समाप्त करती हूँ, और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से सहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: क्षमा का सद्गुण। पात्र परिचय: वेदांत, आदित्य, आदित्य प्रकाश, यश, दृष्टि, उन्नति। लेखिका: सुधापुरी।
1: पकड़ लिया।
2: हा हा, अब मैं पकड़ूंगी। सब भागो। दीदी आप भी तो खेलो।
3: ठीक है, तुम सब भागो और मैं पकड़ती हूँ। रुको रुको, ठहरो, बहुत खेल लिया ये पकड़म पकड़े का खेल। आओ कुछ नया खेलते हैं।
1: और क्या खेल सकते हैं?
3: क्रिकेट खेलें।
2: क्रिकेट? और हम लड़कियाँ?
3: हाँ क्यों नहीं, मैं तो बहुत खेलती हूँ क्रिकेट।
4: और क्या, तुम लोग भी खेलना हमारे साथ, प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे चलकर लड़कियों की टीम बनाना।
1: कोई बॉल, बैट या रैकेट तो है नहीं हमारे पास।

0: ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: दादाजी और नवीनीकरणीय संसाधन। पात्र परिचय, दादाजी के रूप में पंकज, राहुल के रूप में आदित्य और रिया कृष्णा।
3: दादाजी आप पौधा लगा रहे हैं?
4: हाँ, पौधा लगाने से पर्यावरण तो स्वच्छ होता ही है, साथ ही नवीनीकरणीय संसाधनों का भी विकास होता है।
2: ये संसाधन क्या होता है दादाजी?
4: ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो समय के साथ प्राकृतिक या जैव वैज्ञानिक रूप से बदले और जरूरत के हिसाब से दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं, उन्हें नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं।
3: ये कौन कौन से होते हैं?
4: इन नवीनीकरणीय संसाधनों में पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, सूर्य का प्रकाश आदि सभी आते हैं, जिन्हें समय के साथ दोबारा प्राप्त करके लाया जा सकता है।
2: लेकिन दादाजी, इन्हें नवीनीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं?
4: राहुल, इन वस्तुओं का प्रयोग अनेक बार विभिन्न रूप से किया जा सकता है, इसलिए इन्हें नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के रूप में पेड़ पौधों को ही ले सकते हो, ये हमें फल फूल तथा सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो देते ही हैं, इनकी लकड़ियों द्वारा फर्नीचर तथा कागज आदि भी बनाए जाते हैं।
3: दादाजी, नवीनीकरणीय संसाधनों से और क्या क्या लाभ है?
4: नवीनीकरणीय संसाधनों से बायोप्लास्टिक, बायो एस्फॉल्ट, बायोफ्यूल, बायोगैस आदि भी प्राप्त होते हैं।
3: वाह, फिर तो हमें इन संसाधनों का खूब प्रयोग करना चाहिए।
4: रिया, लेकिन इनके अत्यधिक प्रयोग से इन वस्तुओं के विलुप्त होने की भी संभावना उत्पन्न हो सकती है।
2: मैं कुछ समझा नहीं दादाजी।
4: राहुल, उदाहरण के रूप में तुम मछलियों के प्रयोगों को ही ले सकते हो। समुद्र की मछलियों को जितनी अधिक मात्रा में पकड़ा जाता है, उतनी अधिक मात्रा में वह शीघ्र ही पुनः उत्पन्न नहीं हो पाती, इसलिए उनकी मात्रा में कमी आती जा रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो मछलियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त भी हो सकती है।
3: इसका मतलब हमें नवीनीकरणीय संसाधनों का प्रयोग भी करना चाहिए, लेकिन खूब सोच समझ कर, जिससे संसाधनों को हमें लाभ भी प्राप्त होता रहे और इन संसाधनों को क्षति भी ना पहुंचे।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: कर रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ छोड़ दो असल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या

0: एक्सक्यूज मी, हम पहले कहीं मिले नहीं?
1: सॉरी, डोंट रिमेम्बर।
0: तुम, मेरा मतलब है आप रमा से नहीं?
1: शी इज डेड। माय नेम इज रोजी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

आप जानते हैं कि मैं कई बरसों से अपनी कलाकृतियों से, अपनी तस्वीरों से लोगों को आनंद देने की कोशिश कर रहा हूं। दरमियान में एक दौर गुजरा, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि आपकी सेवा करने की मेरी इच्छा, मेरी तमन्ना शायद मुझे छोड़नी पड़ेगी। मेरे पिछले चित्र दो आंखें बारह हाथ के आखिरी दृश्य में बैल से लड़ते वक्त मेरी आंख को जबरदस्त धक्का लगा और उससे यह डर पैदा हुआ कि मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी हमेशा के लिए। आप ये कहेंगे कि मैं मेरा अपना दुख आप सबको क्यों बताने लगा। मैं जानता हूं कि दुख और सुख ऐसे हैं जिन्हें दूसरों को जितना बताएं, जितना बांटे, ये उतने ही बढ़ते हैं। मैं यहां जो आया हूं अपना दुख बांटने के लिए नहीं, बल्कि मुझे उस दुख में जो सुख का अनुभव हुआ वो बांटने के लिए। वैसे तो अब मेरी आंखें बिल्कुल अच्छी हो गई हैं, लेकिन उस समय जब आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे बैठना पड़ा तब मुझे मनुष्य जीवन की और नई अनुभूति हुई, जिंदगी के और नए नए रंग दिखाई दिए। वो रंग हजारों लाखों थे, उनमें से जीवन के कुछ रंग आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं।

0: तुझे भी सबका छोड़ेगा, लेकिन क्या बिगाड़ा मैंने नहीं, सब कुछ उसी ने बिगाड़ा है मेरा।
1: घबरा
0: क्या बताऊ, सब किस्मत के फेर है बेटा, लेकिन यही मेरे पास नौकर था, आज मैं इसका कर्जदार, इसे छुपा छुपा फिरता हूँ।

चरम हो जाए।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मिलोगे समझे,
0: अज समझे।

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान पुठी जो कहर की नजर उस नजर

लगता है कि यहाँ

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

0: मेरे लिए?
1: अगर आप कबूल करें तो।
0: मेरी जरूरत नहीं कि इनकार करूं, आइए। लेकिन अचानक मुझे कैसे इस लायक समझ लिया?
1: आपने मुझे जिंदगी का मुकाबला करने की हिम्मत दी, बदले में ये बहुत छोटा तोहफा है।
0: खोल के देख सकता हूँ?
1: जरूर।

0: शालिनी देवी, अगर आप मुझे अमर बनाना चाहती हैं तो ये आपकी भूल है। अगर आप मेरे साथ इसलिए मुलाकात बढ़ाना चाहती हैं कि मुझ में आपका अमर नजर आता है, तो आप समझ सकती हैं कि मेरे आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचेगी। अगर मैं आपको अमर की याद दिलाता हूं तो आपसे दूर रहना पसंद करूंगा। हाँ, अगर अमर को भुलाने में आप ही कुछ मदद कर सकूं तो मुझे अपना साथी समझिए।
1: गलती से मैं आपको अपना दोस्त समझ